100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन शनिवार, आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:55 और 38 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा प्रारंभ हो रही है।

नव ऊर्जा, नव सृष्टि सृजन, नव हो उमंग, पवित्र हो मन। नित्य नव दिवस का शुभारंभ भक्ति भाव की पुष्पांजलि।

उगते सूरज की स्वर्णिम किरणों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वर करे आपका आज का दिन सुख शांति स्वास्थ्य और मंगलमय आशीर्वाद से भर जाए। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम पुष्पांजलि और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन। जहां हर सुर में श्रद्धा है, हर शब्द में आस्था है और हर भजन में परमात्मा का दिव्य संदेश समाया है, तो आइए कुछ पल संसार की भागदौड़ से दूर होकर अपने मन को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें और भक्ति के मधुर रस में डूब जाएं। कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से आज का प्रथम पुष्प भगवान गणपति के चरणों में। ओम श्री गणेश।

भक्ति वह दिव्य मार्ग है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। सच्ची भक्ति मन को शांति, हृदय को प्रेम और जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु का स्मरण करता है, तब उसके भीतर सकारात्मक विचार, धैर्य और आत्मबल का विकास होता है।

भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा आधार है श्रद्धा और सरलता। भोलेनाथ अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। वे बाहरी आडंबर नहीं बल्कि निर्मल मन, सच्ची आस्था और निष्काम प्रेम से प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि उन्हें आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।

प्रातः के 6:26 का समय हो चुका है। आप सुन रहे हैं पुष्पांजलि आज अपने दोस्त रतन के साथ। भगवान शनिदेव न्याय, कर्म और सत्य के अधिष्ठाता माने जाते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए शनिदेव की भक्ति हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में सदैव सत्य, ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम का मार्ग अपनाना चाहिए। शनिदेव की सच्ची आराधना केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, बड़ों का सम्मान करना और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण पालन करना उनकी उपासना का महत्वपूर्ण स्वरूप है। सच्चे मन से की गई भक्ति मन में धैर्य, आत्मविश्वास और संयम का विकास करती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

भक्ति जीवन को सरल बना देती है। जहां भक्ति होती है वहां हृदय निर्मल होता है और जीवन में आनंद अपने आप बरसता है। भक्ति वो चाबी है जो ईश्वर के हृदय का द्वार

ज्ञान दिशा देता है और भक्ति गति देती है। जब दोनों साथ होते हैं तो जीवन आध्यात्मिक पुष्प की तरह खिल उठता है। ये संगम ही मोक्ष की राह को सरल बना

ईश्वर की महिमा शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। वह करुणा का सागर है, क्षमा की पराकाष्ठा है और प्रेम का अनंत आकाश है। उनकी छोटी सी कृपा जीवन को संवार देती है। ईश्वर की कृपा हम सब पर इसी प्रकार बनी रहे, इसी कामना के साथ अब आज की पुष्पांजलि से अपने दोस्त रतन को दीजिए जाने की अनुमति। और आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला कार्यक्रम सदाबहार गीत बिल्कुल तैयार है आपके लिए। न्यूज ब्रेक के बाद आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM रेनबो।

नमस्कार, प्रातः के साथ बच चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और कुशीनगर जिले को 1283 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। श्री योगी कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वह कार्यक्रम स्थल के पास विकास प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री गोरखपुर में 4 लेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अब प्रदेश की सभी चीनी मिले किसानों को केवल प्रमाणित और गुणवत्ता परीक्षण से गुजरे उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व और कीटनाशक ही उपलब्ध करा सकेंगी। उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त मिनिस्ट्री एस ने इस संबंध में प्रदेश की सभी चीनी मिलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक बैच के कृषि निवेश की गुणवत्ता की जाँच NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराना अनिवार्य होगा। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कीटनाशकों का वितरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि किसी भी किसान को उसकी मांग और स्पष्ट सहमति के बिना कोई कृषि निवेश उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया द्वारा आयोजित वाइल्ड विजडम ग्लोबल चैलेंज 2026 के माध्यम से कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को समुद्री जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय चुनौतियों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने सभी जिलों को 15 अगस्त तक अधिकतम पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने और प्रतियोगिता में व्यापक सहभागिता कराने के निर्देश दिए हैं। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, प्रकृति संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। नॉर्वे की राजदूत एलिन स्टेनर ने कल अमरोहा के गांव सिहाली जागीर में बच्चों के लिए निशुल्क पुस्तकालय की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ न्यायाधीश प्रियदर्शनी भी मौजूद रहीं। उद्घाटन के दौरान नॉर्वे की राजदूत ने कहा कि ज्ञान की ताकत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। न्यायाधीश प्रियदर्शनी ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि किताबें हमें दुनिया को देखने और समझने का एक नया नजरिया देती हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM Rainbow।

0: वही दोस्ती की खुशबू मोहब्बत के मुंह में,
1: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
0: सितारों भरे आंचल कटारी की गोट,
1: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
0: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
1: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
0: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
0: 100.7 FM रेनबो।
3: सात रंग का इंद्रधनुष है,
4: सात सिरों की सरगम है,
5: सात जन्म है सात समंदर,
3: साथ हमारा हरदम है,
5: जिंदगी के सतरंगी रंग
4: FM रेनबो के संग।

7:04 मिनट का समय, प्रोग्राम सदाबहार गीत, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। स्वागत है आप सभी का FM रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, 7:08 का समय हो चुका है और इस प्यारी सी मॉर्निंग में मैं रतन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ और आशा ये कर रहा हूँ कि इस बारिश के मौसम में आप ज़रूर इस बारिश का आनंद ले रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो इस वक्त सोए हुए होंगे अपने बेड पर और बारिश की बूंदों को देखकर ये आशा कर रहे होंगे कि बस ये यूं ही बरसती रहें और हम आज उठे ना, बस यूं ही इसका आनंद लेते रहें।

बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो इस बारिश के मौसम में भी उठकर पूरी तरह से फ्रेश होकर अपनी डेली रूटीन को जैसे वो रोज प्रारंभ करते हैं वैसे उन्होंने प्रारंभ भी कर दिया। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस वक्त अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार कर रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी माताएं हैं, बहुत सारे ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों का रोना धोना देख कर उनको स्कूल जाने के लिए मना रहे होंगे कि बेटा चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ, छुट्टी हो जाएगी। बहुत अच्छे ये दिन होते हैं जब हम अपने बच्चों के साथ ये पल गुजारते हैं, और वाकई में दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब कुछ इस तरह की बातें हमारे दिल में हमारे जहन में होती हैं। बहुत खूबसूरत एहसास होता है उन सब बातों का जिन्हें हम महसूस करते हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि बारिश का ये मौसम हमें बहुत कुछ याद दिलाता है, बहुत सारी बातें याद दिलाता है, बहुत सारे वो पल याद दिलाता है, बहुत सारी यादें होती हैं जो हमने कभी जी हैं, और वाकई में बारिश का ये पल बस यूं ही थम जाए, यूं ही रुक जाए और हम इस पल में कहीं खो जाएं। ऐसा ही एहसास होता है ना, हमें भी होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चलिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए इंतज़ार कर रहा है, आप सब तक पहुंचने के लिए इंतज़ार कर रहा है, तो इस प्यारे से गीत को एंजॉय कीजिए हमारे साथ, यानी कि 100.7 FM रेनबो के साथ। आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन आपके साथ है, और भी बहुत ढेर सारी बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन अभी ये गीत आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, रफी साहब की प्यारी सी आवाज और उनका साथ निभा रही थी लता जी। और इस गीत के जो लिरिक्स, वाकई में बहुत ही खूबसूरत से लिरिक्स इस गीत के, और बहुत अच्छा सा ये यादगार सा समय, बहुत खूबसूरत सा ये गीत अभी आपने सुना आपके अपने प्यारे से शो सदाबहार गीत पर। दोस्तों, ये सुबह का जो मौसम है ना, वाकई में बड़ा दिल को चैन और सुकून देता है। जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और हमारे तन बदन को छूती हैं, तो एक एहसास होता है पूरे शरीर में, एक कहें तो सनसनी सी दौड़ उठती है। बहुत प्यारा सा एहसास होता है सुबह की इस प्यारी प्यारी ठंडी सी हवा का, और हर किसी को इंतजार होता है कि ये मौसम इसी तरह हमेशा यूं ही बना रहे। लेकिन मौसम है, बदलता रहता है, और हम भी समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आपसे ढेर सारी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमें मेल्स करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। मेल्स कुछ फ्रेंड्स हमें कर भी चुके होंगे। अभी मैंने मेल बॉक्स ओपन नहीं किया है, लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं अपना मेल बॉक्स भी ओपन करूंगा और उसमें देखूंगा कि कितनी ढेर सारी मेल्स हम तक पहुंची हैं, और उन मेल्स को मैं आपके लिए शामिल भी करूंगा। लेकिन बात जब इश्क की हो, प्यार की हो, मोहब्बत की हो, तो इश्क वो ज्वाला है जो दिल को जलाती भी है और रोशन भी करती है। ये बेकरारी का समंदर है जहां हर लहर में महबूब का ख्याल उछलता है। इश्क में ईर्ष्या भी मीठी लगती है और त्याग स्वाभाविक, है ना। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मेरे श्रोताओ, क्या आपका दिल भी कभी इश्क की इस आग में तप चुका है? प्लीज हमें बताइए। 7:18 का समय है, प्रोग्राम सदाबहार।

0: की गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001

0: 4242।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

7:27 का समय, प्रोग्राम सदाबहार गीत। दोस्तों, प्यार वो शक्ति है जो रूठे हुए मन को मना लेती है, बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ देती है और जीवन में नई उम्मीद जगा देती है। जहां प्रेम होता है, प्यार होता है, वहां कटुता की जगह मधुरता और दूरी की जगह अपनापन जन्म लेता है। प्यार जीवन का सबसे अनमोल एहसास है। ये केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनेपन, विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ भाव में झलकता है। दोस्तों, सच्चा प्यार हर रिश्ते को मजबूती और हर दिल को सुकून देता है। 7:28 का समय हो चुका है और ठीक 7:30 पर आप तक पहुंचेंगे विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 के अपडेट्स। आप हमारे साथ ही बने रहिए, सुनते रहिए FM रेनबो।

सात बजकर 35 मिनट का समय, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल 100.7 एफएम रेनबो पर, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन। प्रोग्राम आपका अपना प्यारा सा कौन सा सदाबहार गीत, आप इसे एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन सुनते हैं 7 से 8 के बीच में, और अपना साथ हमें देते हैं और इस प्रोग्राम की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछला जो सॉन्ग है वो थोड़ा अधूरा रह गया था, चलिए एक बार फिर से उस गीत को सुनते हैं, क्योंकि मेरा भी बहुत फेवरेट ये गीत रहा है और आपका भी ज़रूर रहा होगा। तो इस गीत को पुनः एक बार सुनते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे इसकी जो गीत के अगर हम लिरिक्स थे वो रह गए थे, तो चलिए इस गीत को पुनः एंजॉय करते हैं आपके अपने प्यारे से शो सदाबहार गीत पर। उसके बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बातें करेंगे, साथ में आपकी मेल्स, हाँ उनका भी ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, यानी कि ज़रूर शामिल करेंगे आपके लिए। आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

साथ बजकर 41 मिनट का समय आपसे बातें करते करते टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और वाकई में दोस्तों ये जो टाइम है यहाँ पर बहुत अच्छा गुजरता है और बहुत सारी मेल्स भी हमारे पास आई हुई हैं। मनीष यादव जी ने हमें मेल की है। मेरे प्यारे रतन सर गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ मनीष जी, और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। सदरापुर सिधौली सीतापुर से इन्होंने हमें मेल किया है और कहते हैं, तेरी आँखों में मेरा जहाँ बसता है, हर पल तेरा ख्याल मेरे दिल में रहता है। ये कैसा जादू है तेरी मोहब्बत का, तेरा नाम सुनते ही मेरा दिल हंसता है। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं मुझे सभी प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं, पुष्पांजलि में भजन लाजवाब रहे और सदाबहार गीत में जो गीत बज रहे हैं वो भी इन्हें पसंद आ रहे हैं। और कह रहे हैं मेरे यहाँ बारिश हो रही है, मेरे यहाँ भी रात भर बारिश हुई है मनीष जी, और अभी शायद रुकी हुई है लेकिन बादल छाए हुए हैं, बस कब बरस जाए पता नहीं। सुल्तान रजा साहब ने भी हमें मेल किया है, हम लोग करते रहें जिसका जतन, हमारे साथ हैं हमारे आरजे रतन। थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। अस्सलाम वालेकुम रतन सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। सुल्तान रजा भाई, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा और मम्मी पापा। रतन सर आपने हाथ में जो अंगूठी पहन रखी है वाकई में काबिले तारीफ है, आपको हमारी अंगूठी कहाँ से दिख गई? आपकी अंगूठी देखकर एक शेर याद आया है, भरोसा मत कर सांसों की डोरी टूट जाती है, छत महफूज रहती है हवेली टूट जाती है, बचपन में किए हुए वादों की कोई कीमत नहीं होती क्योंकि अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी टूट जाती है। मतलब क्या है आपका? आप हमें मतलब भी बताइए। थैंक यू सो मच, और आपने हमें चाय भी भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अशोक कुमार साहब की मेल हम तक पहुंची है। अशोक राज सुप्रभात, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूं। और रायपुर उदारा सिद्ध मितौली सिद्ध लखीमपुर खीरी से हमें मेल कर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, इनका कहना है सुहाना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सदाबहार गीत में गीत इन्हें बड़े पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। विनीत कुमार साहब की मेल हम तक पहुँची है। विनीत कुमार हमें अर्थापुर पोस्ट

रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से मेल कर रहे हैं सदाबहार गीत की प्रस्तुति करने वाले रतन भाई को शुभ मॉर्निंग का स्वीट स्वीट सादर प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। मैंने आपके स्वीट स्वीट नमस्कार को स्वीकार कर लिया है। अपने छोटे भाई विनीत कुमार का ओके आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पुष्पांजलि बहुत सुपरहिट भजन आपने बजाए, थैंक यू सो मच। और सदाबहार गीत में जो गाने बज रहे हैं इन्हें भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुहाने मौसम में और भी अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। इतने प्यारे गीत आप तक पहुंच रहे हैं और आपको पसंद भी आ रहे हैं। तेज बहादुर साहब की भी मेल हम तक पहुँच गई है। हमारे सबसे प्यारे दोस्तों में से सबसे प्यारे रतन सर जी को मेरा प्यार भरा सुप्रभात, राम राम प्रणाम, कैसन हैं आप, बहुत सुंदर प्रस्तुति करते हैं आप, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी बातें करने के लिए, इतनी अधिक तारीफ और हौसला अफजाई करने के लिए भी आप इसमें से तो कोई अच्छा इसमें कोई शक नहीं। ओके, आपकी मनबंद मुस्कान हमारे चेहरे पर भी मुस्कान ला ही देती है। चलिए ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर कहा भी जाता है ना कि अगर आप मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर किसी से मिलते हैं तो वाकई में अगला व्यक्ति जो आपके सामने है वो अगर गुस्सा भी है तो आपकी मुस्कुराहट को देखकर वो भी मुस्कुरा ही देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी से भी मिलें, मुलाकात करें, सुबह सुबह की पहली मुलाकात जब होती है तो गुस्सा नहीं, एक चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान मंद मंद होनी चाहिए और वो मुस्कान आपके साथ साथ अगले के भी दिन को बहुत खूबसूरत बना देती है। तो बस जब भी किसी से मिलिए एक छोटी सी मुस्कान के साथ मिलिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। सर जी मुझे तो मालूम नहीं था कि आज आप आए हैं, लेकिन 6:45 पर ऐप पर रेनबो लगाया आपकी आवाज़ सुनी तो मन प्रसन्न हो उठा। आज अंजू दीदी भी आएंगी क्या? तो भाई अंजू दीदी तो आज नहीं आ रही हैं, लेकिन हाँ ज़रूर आएंगी, आपसे भी मिलेंगी भी वो। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, इनका इन्होंने कुछ नाम भी दिए हुए हैं और साथ में शर्की ज़िला रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं, गुरुग्राम हरियाणा में ये हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका, आपकी इस मेल का। सुधांशु साहब की मेल हम तक पहुंची है, राधे राधे सुधांशु, ग्राम भगवतीपुर, पोस्ट मोहाना, थाना टंजा, बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ से कार्यक्रम सुन रहे हैं पुष्पांजलि, इन्हें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। रतन सर आज आपने भजन बहुत अच्छे अच्छे बजाए, कार्यक्रम सदाबहार गीत भी इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, ओके, और हमारी आवाज़ इन्हें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, हमें भी हमारी आवाज़ अच्छी लगती कभी कभी, थैंक यू सो मच। सुधांशु जी आप इतना प्यार हमें देते हैं, आप सब बहुत बहुत शुक्रिया। उमा शंकर शर्मा जी का भी मेल हम तक पहुंचा है, गुड मॉर्निंग रतन जी, क्या बात है आपके अंदाजे बयां की, थैंक यू सो मच। शानदार भजनों के बाद इतने प्यारे प्यारे गीतों की बरसात, थैंक यू, थैंक्स टू आकाशवाणी। उमा शंकर शर्मा मंदी आदमपुर हिसार हरियाणा, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े और लगातार हमारा साथ निभा रहे हैं। और इन मेल्स के साथ साथ अब बारी आ चुकी है उस प्यारे से गीत की जो आपका कर रहा है इंतज़ार, तो बस इस प्यारे से गीत को एंजॉय कीजिए हमारे साथ आपके अपने प्यारे से शो सदाबहार गीत पर। और भी बहुत ढेर सारी मेल्स हैं, उनको भी ज़रूर ज़रूर हम आपके लिए शामिल करेंगे, आपके लिए पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस गीत को आप एंजॉय कीजिए हमारे साथ।

7:52 मिनट का समय हो चुका है दोस्तों, प्रोग्राम सदाबहार गीत चल रहा है और इस प्यारी सी सुबह में मैं रतन आपके साथ हूँ और आपकी प्यारी प्यारी मेल्स हमारा पूरी तरह से साथ निभा रही हैं। और दोस्तों ये बारिश का मौसम वाकई में बहुत अच्छा लगता है, जब सब कुछ अच्छा हो, हम भीगे ना हो और सामने हमारे प्यारी सी विंडो हो और उसमें से हम बारिश के नज़ारों को देख रहे हों, बगल में हमारे चाय का प्याला रखा हो, प्लेट में पकौड़ियाँ हो, क्या बात तो ये जो ख्वाब है बहुत अच्छा लगता है। और वाकई में बारिश में जब बारिश का आनंद तभी और ज़्यादा आता है जब ये सारी चीज़ें साथ में होती हैं। और एक आनंद वो होता है जब हम बारिश में खुलकर नहाते हैं, भीगते हैं, बारिश का आनंद लेते हैं, वो एहसास सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा एहसास सबसे प्यारा लगता है। अदिति सिंह जी की मेल हम तक पहुंची है और ये हमें कह रही हैं, हेलो गुड मॉर्निंग सर, मुझे एक बात पूछनी है कि आप लोगों की आवाज़ अच्छी है इसलिए आप लोग आरजे हैं या आप लोग आरजे हैं इसलिए आप लोग की आवाज़ अच्छी है। अदिति जी, पहले तो आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और आपने पूछा है कि आपकी आवाज़ अच्छी है इसलिए आप आरजे हैं।

आप लोग आरजे हैं इसलिए आपकी आवाज अच्छी है। तो देखिए, आपका साथ जब हमारे साथ जुड़ जाता है ना, और जब आपका ये प्यार हमें मिलता है, तो हमारी आवाज भी अच्छी हो जाती है और हम एक अच्छे आरजे भी बन जाते हैं। तो इसमें जो रोल है वो हमारी आवाज और हमारी आरजेइंग का इतना नहीं जितना आपका है। आपका जब साथ मिलता है, आपका जब प्यार मिलता है, और आप जब हमारी हौसला अफजाई करती हैं, तो वाकई में हमारी आवाज़ में वो खनक आ जाती है, वो जोश आ जाता है जो आपको अच्छा लगता है। और वो पता नहीं कैसे होता है, लेकिन हाँ, जब ये आप एक कहते नहीं है फोर्स, जब उधर से लगता है तभी यहाँ से कुछ हो पाता है। इसलिए आपका जो ये पावर है, आपका जो ये प्यार है, आपका जो ये साथ है, वो हमारे लिए बड़ा महत्व रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बस हमेशा यूं ही बनाए रखिए, आपको हमारी आवाज़ यूं ही सुनने को मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस प्यारी से मेल के लिए। अदिति सिंह जी ने कहाँ से मेल किया है ये तो इन्होंने हमें नहीं लिखा, लेकिन इनकी बात का मैंने जवाब देने की कोशिश की।

है, आपका जो ये प्यार है, आपका जो ये साथ है, वो हमारे लिए बड़ा महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बस हमेशा यूं ही बनाए रखिए, आपको हमारी आवाज यूं ही सुनने को मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस प्यारी से मेल के लिए। अदिति सिंह जी ने कहां से मेल किया है ये तो इन्होंने हमें नहीं लिखा, लेकिन इनकी बात का मैंने जवाब देने की कोशिश की। राधेश्याम जी की भी मेल हम तक पहुंची है, कासगंज से मास्टर राधेश्याम शाक्य। गुड मॉर्निंग रतन सर, समस्त श्रोताओं को और प्रोग्राम में सॉन्ग्स मस्त प्ले हो रहे हैं। सर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर प्रोग्राम 2-3 दिन से क्यों नहीं आ रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है इन्हें, थैंक यू सो मच। तो देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो अगर हमें सुन रहे हैं तो हम उन तक आपकी बात को ज़रूर पहुंचाएंगे, और अगर हमारी उनसे मुलाकात होती है तो वहां भी हम आपकी इस बात को ज़रूर ज़रूर रख देंगे। थैंक यू सो मच। वारिस अली साहब ने भी हमें मेल किया है, रतन भाई गुड मॉर्निंग, सदाबहार गीत में बेहतरीन नगमे प्ले कर रहे हैं, ऐसे ही सॉन्ग्स मुझे पसंद हैं, मेरी तबीयत बागबाँ हो गई, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कितनी प्यारी मेल हम तक पहुँचाई आपने। संजय नगर अशबाग लखनऊ से वारिस जी ने हमसे जुड़ने की कोशिश की और वो जुड़ भी चुके हैं। 7:55 का समय हो चुका है। ब्रजेश सिंह दीपू की भी मेल हमें मिली है कैसरगंज बहराई से, सर सुबह से ऐप पर प्रसारण नहीं मिल रहा है, प्लीज़ सही करवा दीजिए। चलिए हम बिल्कुल आपकी इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करते हैं। गुलफसा सिद्दीकी की मेल हम तक पहुंची है, रतन भाई गुड मॉर्निंग, मैं गुलफसा सिद्दीकी संडीला से, मौसम बहुत अच्छा है आज, धूप निकलने की संभावना, ओके आज धूप निकलने की संभावना लग रही है, ओके प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और ऊपर से आपकी आवाज़ गजब ढा रही है, थैंक यू सो मच। हम लोगों की बातें वाकई में चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप को प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज जी की भी मेल हम तक पहुँची है, ओम श्री गणेशाय नमो नमः, थैंक यू सो मच आपको भी, ओम श्री गणेशाय नमो नमः। रामराज राजू भानु राम चरण शंकर भैया पप्पू पासी मनीष बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, शुभ आशीर्वाद पहुँचे, थैंक यू सो मच, और आप जो गाना सुना रहे हैं सुपर हिट है, धन्यवाद। 7:56 का समय हो चुका है, ब्रजेश सिंह जी की भी मेल आई है, विजय पाल यादव जी की भी मेल आई है, योगेंद्र कुमार साहब की भी मेल हम तक पहुँची है। तो बस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये अंतिम प्यारा सा गीत हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में, इस प्यारे से गीत को एंजॉय करते रहिए। ठीक 8 बजे आप तक पहुंचेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और ठीक 8:15 पर होगी आपकी हमारी पुनः मुलाकात, जिस पर मैं तो आपके साथ रहने ही वाला हूँ, एक प्यारे से दोस्त आपको ज़रूर ज्वाइन करेंगे, बस इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
4: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बढ़ा करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
4: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक

0: एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
2: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
3: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल एक प्रसिद्ध इकोनॉमिक जोन है, हमारी आईलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है और हमारा पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिसमें हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव

0: घटने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल

स्तर की वार्ता की। कहा भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत।
1: सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
2: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
1: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात।
2: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ।
1: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
0: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
1: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
2: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कम्प्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: सुबह की पहली किरण, चाय की पहली चुस्की और अपने शहर की मीठी सी मुस्कान, इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ शुरू होती है एक नई सुबह। लखनऊ की फिजाओं में आज फिर से उम्मीदों की रोशनी बिखर गई है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात, और मेरे साथ हैं
1: विनय यादव। और रतन जी, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग हमारे सभी लिसनर्स को।
0: वेरी गुड मॉर्निंग विनय, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल मस्त हैं। और ऐसा मौसम है कि बस जादू ही जादू है। और रतन जी, एक चीज मैंने बहुत गौर किया है
0: जी,
1: कि अगर जैसे अभी आपने मई जून का मौसम देखा होगा ना, बाहर निकलते कोई बोलता है आपसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज का मौसम है, अभी दो तीन दिन से जो जैसा मौसम है, आपसे कोई बोलता है गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग।
0: तो क्या बात है, एक एनर्जी आ गई,
1: एनर्जी आज आती है। और मौसम का तो जादू है, ये चारों तरफ मौसम का ही जादू रहता है।
0: जी हाँ दोस्तों, तो इस मौसम के जादू के साथ आज भी आप भी आज इस मौसम के जादू का पूरी तरह से एंजॉयमेंट कीजिए। हाँ, आपके दो दोस्त आपके साथ आज जुड़ चुके हैं आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। और अगला ये गीत आप सबके लिए, इस गीत को एंजॉय कीजिए, हमारे साथ यूं जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: 7 6 5 4 3 2 1 let's start the fun।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
1: आज का मॉर्निंग मंत्र।
2: जी दोस्तों, 8:23 का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ और आपके दो दोस्त विनय यादव और रतन आपके साथ जुड़े हुए हैं और अब समय हो चुका है कि आज के मॉर्निंग मंत्रा को आप तक पहुंचा दिया जाए।
3: हाँ जी, और मॉर्निंग मंत्रा रतन जी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, रोज की तरह आज भी है और बताया जाए।
2: बिल्कुल,
3: हम इंतजार कर रहे हैं।
2: हम इंतजार कर रहे हैं भाई।
3: मॉर्निंग मंत्रा ये कहता है, आशीर्वाद एक शक्ति है जो अदृश्य रूप से हमारे साथ रहती है और हमारा कल्याण करती है।
2: क्या बात है दोस्तों, वाकई में जिले का आ जाता है भैया, सबका आशीर्वाद अपने सर पे बनाए रखिए। हाँ। और सबसे पहले ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे सर पे जरूर होना चाहिए।
3: हाँ।
2: और जब ये आशीर्वाद हमारे साथ होता है ऊपर वाले का, तो वाकई में हमारा कल्याण होता है और हमारे साथ बिल्कुल ये एहसास होता है कि वो हमारे साथ है।
3: हाँ, और बड़ों का आशीर्वाद जो होता है ना, वो कहते हैं कि वाकई में अदृश्य रूप से साथ में रहता है और जहाँ भी हम होते हैं वो हमें कामयाबी की ओर ले जाता है।

0: 8:29 का समय और साथ में 56, 57, 58, 59 और ये हो गए 30. 8:30 का समय हो चुका है, अब अपनी घड़ियां मिला सकते हैं.
1: यूं ही कटता जाएगा सफर अगर आप घड़ियां मिलाने बैठेंगे रतन जी, तो फिर 9:10 भी शुरू हो गया है.
0: बिल्कुल. और दोस्तों वाकई में ये जो साथ है आपका हमारा बहुत खूबसूरत सा है, और आज विनय हमारे साथ हैं, तो वाकई में ये जो साथ है और ये जो सफ़र है और भी ज़्यादा खूबसूरत बन गया है, क्योंकि आज दो मेल दोस्त आपके साथ जुड़े हुए हैं. और गुड मॉर्निंग लखनऊ जिंदगी का जो अंदाज़ है आपका, वो आज थोड़ा सा बदल गया, और आपको भी एक ये नया जो एक्सपेरिमेंट है अच्छा लग रहा होगा. हाँ, और हमें भी यहाँ पे बड़ा आनंद आ रहा है.
1: बदलते रहना चाहिए चीज़ों को, हमेशा अपने समय के साथ साथ बदलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर चीज़ें बदलाव में होंगी ना तो वो अच्छी लगेंगी और जबरदस्त लगेंगी.
0: बिल्कुल सही बात विनय आपने बोली है. वाकई में अगर बदलाव हमारी लाइफ में आते हैं तो उन्हें हमें स्वीकार करते रहना चाहिए और उनके साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, और तभी हम अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना भी सकते हैं ना.
1: हाँ जी बिल्कुल.
0: और आज का जो दिन है यानी कि आज है शनिवार, और आज तारीख कितनी है?
1: 11 जुलाई.
0: जी हाँ, 11 जुलाई. 11 जुलाई अपने आप में बहुत खास दिन है, और खास इसलिए है क्योंकि आज कई ऐसे दिवस हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, और आज का ये जो दिन है अपने आप में बहुत महत्व है इस दिन का, और वो क्यों है विनय बताएंगे आपको.
1: ये आज जो है हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे.
0: जी हाँ दोस्तों. हाँ. विश्व जनसंख्या दिवस. हाँ. आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसका उद्देश्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि से जुड़े मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और संसाधनों के प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करना.
1: और रतन जी 11 जुलाई 1987 यानी 1987 को वर्ल्ड में पहली बार जनसंख्या 5 अरब के पहुंचने पर इस दिन को मनाया जाता है.
0: क्या बात है. और 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इसकी शुरुआत की थी, ताकि बढ़ती जनसंख्या के असर को समझा जा सके. आज दुनिया की जनसंख्या अरबों में पहुंच चुकी है, जैसा विनय आपने अभी बताया. इसका सीधा प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों और विकास पर पड़ता है. इस दिन संगोष्ठियों, रैलियों का आयोजन भी जगह जगह होता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और लैंगिक समानता और सतत विकास की ओर जोर दिया जाए.
1: हाँ, और हमें जो है ना हर चीज़ पे, जैसे हमने अभी आपसे बात की कि हर चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए और बदलाव होते रहना चाहिए, तो जैसे कि ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, और मनाया इसलिए जाता है क्योंकि हम सभी जागरूक हों. क्योंकि जो नेचर ने हमें दिया है, वो रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं नेचर के, वो सीमित मात्रा में.
0: बिल्कुल सही.
1: और उनका उपभोग हम करते आए हैं,
0: आदिकाल
1: से करते आ रहे हैं, और आगे भी करना है, क्योंकि विदाउट नेचर हम कुछ नहीं है.
0: बिल्कुल, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते. और वाकई में दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस हमें जिम्मेदारी से संसाधनों का उपयोग और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है. तो आज के इस दिन को बहुत गंभीरता पूर्वक लीजिए, इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए हम सबको, ये हमारी भी जिम्मेदारी है.
1: जी, और रतन जी ये जो मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये हर साल एक थीम पर मनाया जाता है. और इस साल यानी 2026 में इसकी थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए.
0: बिल्कुल, और वाकई में ये जो थीम है इसी के अनुसार पूरे वर्ष इस पर कार्यक्रम होने वाले हैं, बहुत सारी ये जो योजनाएं बनाई गई हैं उस पर क्रियान्वयन किया जाएगा, तो लगातार ये जो कार्यक्रम है पूरी तरह से सेलिब्रेट भी किया जाएगा. और आपको हम सबको बस करना ये है कि जागरूक होना है और लोगों को जागरूक करना है, ताकि हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें.
1: हाँ,

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: हाँ जी, और एक और अच्छी खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है। 8:39 का वक्त, आप हैं विनय और रतन के साथ, इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
2: यस, और दोस्तों ये जो प्रोग्राम है वाकई में बहुत खूबसूरत हो जाता है जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं।

0: और इसके लिए जरूरी होता है कि हम कोई मुद्दा आपको दें, और जरूरी यह भी है कि जब मुद्दा हम आपको देंगे तो उस पर आपके मेज भी हम तक पहुंचेंगे। तो अब समय हो चुका है कि आज के मुद्दे को हम आप तक पहुंचा दें।
1: हाँ, रतन जी, जब हम आ रहे थे
2: लखनऊ, मुद्दा आज का पूरे समाज का।
1: हाँ जी, मुद्दा आज का पूरे समाज का। और जब हम आ रहे थे
0: जी,
1: बढ़िया मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं,
0: क्या बात।
1: तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे, उनसे भी थोड़ा बड़े बच्चे, सब मौज मस्ती में कलर ड्रेस में स्कूल जाने की तैयारी,
0: क्या बात
1: है। और आप देखते होंगे कि जब छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, वो अपने मम्मी पापा पर एहसान करते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, आज आपने लंच सही नहीं दिया, आपने जो है ड्रेस हमको सही नहीं पहनाई, डांट पड़ेगी, ये है वो, दुनिया भर की चीज है।
0: लेकिन
1: ये बच्चे भले ही इतराते हैं, शौक से जाते हैं, कोई फूल की तरह मुस्कुराता हुआ जाता है तो कोई बिल्कुल मुरझाया हुआ जाता है।
0: बिल्कुल, ये रंग बिरंगे फूल, कोई खिलता हुआ, कोई मुरझाता हुआ,
1: है ना? लेकिन ये हमारा भविष्य है।
0: बिल्कुल,
1: और ये इन्हीं से आगे जो है हिंदुस्तान की, अपने देश के दिशा और दशा तय होनी है। तो जैसा कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो उसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का मुद्दा है। और मुद्दा ये कहता है, बढ़ती हुई जनसंख्या में नेचर द्वारा दिए गए रिसोर्सेज को हम कैसे संरक्षित करें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए।
0: जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ये गंभीर विषय और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कि जब लगातार जनसंख्या हमारे देश की, पूरे विश्व की बढ़ती चली जा रही है, और जो नेचर द्वारा रिसोर्सेज हमें उपलब्ध कराए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, वो रिसोर्सेज सीमित मात्रा में हैं, और उन रिसोर्सेज का संरक्षण करना, उन्हें संरक्षित करना हम सबकी, आपकी जिम्मेदारी है। और आज हम यही आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो ये रिसोर्सेज हैं जिनका हम बिना किसी रोक टोक के, बिना सोचे समझे लगातार यूज़ करते चले जा रहे हैं और अथाह मात्रा में यूज़ करते चले जा रहे हैं, तो क्या हम इनको संरक्षित करने के लिए कभी कुछ सोच भी रहे हैं, या फिर हमें इन्हें संरक्षित करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
1: हाँ, और संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने तो यूज़ किया है, वो किया है, हर तरह से इंजॉय कर रहे हैं, मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, और शुद्ध हवा, शुद्ध जल, हर चीज़ें। लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, और भी जो आगे आएंगी पीढ़ियां, उनके लिए हम क्या रखेंगे?
0: जी हाँ, तो आज के इस विषय पर अपने विचार हम तक पहुंचाइए। हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए और आज के विषय पर अपने विचार हम तक पहुंचाइए। हमें आपकी मेल्स का इंतजार है। आप हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 8:47 का वक्त आप हैं रतन और विनय के साथ एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
1: जी हाँ दोस्तों, और आज के इस प्यारी से सुबह में आपको थोड़ा सा अलग भी फील हुआ होगा, क्योंकि जब आपसे हम दोनों मिले तो आपको लग रहा होगा कोई ना कोई फीमेल फ्रेंड होगी, लेकिन आज आपके दो प्यारे मेल फ्रेंड्स आपके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग विनय को मिस भी करते हैं और आज पूरे भरपूर जोश के साथ उनका स्वागत भी कर रहे हैं। बहुत ढेर सारी मेल्स भी आ गई हैं और वाकई में विनय के साथ आज प्रोग्राम करके मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है, एक अलग सी फीलिंग आ रही है। और कभी कभी ये चेंजेस लाइफ में होने भी चाहिए और इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ में अगर चेंजेस आ रहे हों, परिवर्तन हो रहे हों, तो उन सारे परिवर्तनों को स्वीकार करते रहिए और आगे बढ़ते जाइए, तभी आपकी लाइफ ब्यूटीफुल बनेगी। क्यों?
0: और जैसे कि अभी मई जून में इतनी गर्मी पड़ रही थी, सब लोग कह रहे थे गर्मी है, बहुत परेशानी है, पानी पीते रहो। तो देखिए, मौसम बदला, समय बदला, परिवर्तन हुआ, प्रकृति ने एक परिवर्तन की जो है डोर आगे बढ़ाई और बरसात का मौसम आ गया। हम सभी एंजॉय कर रहे हैं, उस गर्मी से हमें राहत मिली है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ भी घूमने फिरने निकल जाते हैं शाम को कि भाई देखिए नजारा अब कैसा है और उस समय कैसा था।
1: अब ये घूमने फिरने की जब आपने बात की तो वाकई में जो बारिश के मौसम में अगर घूमने फिरने की बात करें तो लोकली अगर हम घूमे आसपास अपने क्षेत्रों में तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी फीलिंग भी आती है। क्योंकि जब एक चीज आपने विनय देखी होगी, जब बारिश होती है तो ग्राउंड पे जब आप जाते

0: तो एक हरियाली जो होती है वो उभर के आ जाती है, है ना। चारों तरफ आप देखिए, आप ग्राउंड में खड़े होइए जहाँ पे घास उगी हो छोटी छोटी, तो वहां पे जब आप खड़े होते हैं तो वहां पे जो ताजगी और जो तरोताजा जो वहाँ का नजारा होता है वो आंखों को कितना सुकून देता है।
1: जो हरा भरा होता है वो पॉजिटिविटी फील कराता है।
0: बिल्कुल।
1: और एक सॉन्ग के लिरिक्स है ना, होगी हरी धरती बंजर।
0: हाँ।
1: तो जो है इंतजार करिए, हर चीज का आप इंतजार अगर करेंगे, परिवर्तन का इंतजार करेंगे आपके जीवन में, अगर कुछ भी उल्टा सीधा या यूं कहें कि ऊपर नीचे चल रहा है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, इंतजार करते रहिए। लेकिन हम बात कर रहे थे घूमने फिरने की, तो इस वक्त पे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं तो पहाड़ों पर जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए रतन जी।
0: बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर बहुत जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रही हैं और भूस्खलन इस तरह के होते हैं जिससे कि जान माल को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो अगर आप इस तरह का कोई प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी ऐसा कोई प्लान ना कीजिए। और अगर आप बारिश में बाहर निकलते हैं, अपने घर से भी बाहर निकलते हैं, तो अपनी पूरी सेफ्टी करके निकलिए, अपने आप को कवर करके निकलिए और कोशिश कीजिए कि आप भीगने ना पाएं, क्योंकि अगर आप भीगेंगे तो शायद आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बारिश के मौसम में हमारी जो इम्यूनिटी है ना विनय, वो हाँ। तो थोड़ी सी कमजोर होने लगती
1: बस
0: है।
1: बस यही तो हम सोच रहे थे कि आप जो है खाने पर कब आएंगे। क्योंकि देखिए अभी गर्मी पड़ रही थी तो लोग कह रहे थे कि भाई आप जो है सारी पानी वाली चीजें खाइए, खीरा है, ककड़ी है, ये पानी पीते रहिए, कम खाइए, और अब बरसात आते ही पकौड़े मिल जाए और तमाम सारी चीजें हम एंजॉय करते हैं। तो लेकिन बरसात के मौसम में भी जो है हमारी जो इम्यूनिटी होती है डाइजेस्ट करने की, वो थोड़ा सा वीक होती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन बहुत सारे लोगों की नहीं होती है।
0: हाँ।
1: उनको भी सचेत रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, पानी कोशिश कीजिए कि उबला कर पिए, और साथ में अगर आप बारिश के मौसम में नहाने की कोशिश करते हैं तो बारिश में भीगने के बाद घर में आके जरूर नहाइए, ये बहुत जरूरी होता है। और साथ में अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, ताकि आपके बच्चे अगर बाहर बारिश में खेलते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, उन्हें किसी प्रकार की बीमारी ना हो, तभी तो इस मौसम का आनंद लिया जा सकता है। और साथ में एक बात बहुत जरूरी ये है विनय, कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि राइडिंग करते हैं, सड़कों पे चलते हैं, निकलते हैं, तो होता यह है कि अक्सर बहुत तेज रफ्तार के साथ जब गाड़ी चलाई जाती है तो बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। और बरसात के मौसम में यह भी होता है कि जगह जगह जल भराव होता है, और हमें पता नहीं होता कि आगे आने वाली सड़क पे जहां पे जल भरा वहां पे गड्ढा है या फिर सड़क है, और बाइक या गाड़ी वहीं पे हम ले जाते हैं बिना अंदाजे के, तो होता ही है कि एक्सीडेंट होता है और बहुत सारा नुकसान होता है।
1: हाँ। और रतन जी, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है, बढ़ती हुई जनसंख्या में नेचर द्वारा दिए गए रिसोर्सेज को हम कैसे संरक्षित करें, संजो कर रखें, इस पर आपके विचार हम तक पहुंच रहे हैं। जल्दी ही हम आपके मेल्स लेंगे fmakashwanilakhnow@gmail.com पर आप हमसे जुड़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं।
0: जी हाँ।
1: बस इस सॉन्ग के बाद हम लौट कर आएंगे, एक न्यूज ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम बातें करेंगे।

सुबह के 9 बजे हैं, अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में एसआईटी की टीम की कार्रवाई से जुड़ी खबरें आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, अयोध्या नहीं छोड़ सकेंगे आरोपियों के करीबी। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला 13 को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। अमर उजाला लिखता है, चढ़ावे की गणना व्यवस्था बदली, कर्मचारी भी कम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑकलैंड दौरे से जुड़ी खबरें भी आज हेडलाइन बनी हैं। अमर उजाला ने लिखा है, भारत न्यूजीलैंड एफटीए को मिलेगी मंजूरी, रक्षा समेत कई समझौतों पर लगेगी मुहर। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों को नुकसान पहुंचने के आरोपों का खंडन किया है। इस खबर ने आज कई समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर जगह बनाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है, E20 पेट्रोल से वाहनों को कोई नुकसान नहीं। सरकार ने कहा, कुछ लोग फायदे के लिए लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, E20 को लेकर हो रही चर्चाओं पर सरकार का स्पष्ट संदेश, शुद्ध पेट्रोल पर लौटना संभव नहीं। उत्तर प्रदेश में प्रधानों को प्रशासक बनाने से जुड़े प्रावधान की वैधता को लेकर उच्च न्यायालय में कल हुई सुनवाई को खबर पर नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, प्रशासक वाले प्रावधान की वैधता पर मांगा जवाब, हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 4 अगस्त को। अमर उजाला ने इस खबर की सुर्खी दी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी प्रशासक। उप शीर्षक है, प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा इसका कानूनी आधार क्या है। आवास विकास की 2 दिन चली बैठक में SCR की विकास को रफ्तार देने वाली कई फैसलों को मंजूरी दी गई है। यह खबर भी आज अखबारों में प्रमुखता से छपी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, SCR को मिलेगी रफ्तार, 300 किलोमीटर रिंग रोड, 187 किलोमीटर नमो भारत कॉरिडोर समेत कई परियोजनाएं मंजूर। स्वतंत्र भारत ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति के दौरे की खबर पर हेडलाइन दी है, 2029 से देश में होंगे एक चुनाव। संयुक्त संसदीय समिति इससे जुड़े विधेयकों की जांच कर रही है। प्रदेश में हो रही भारी बारिश से संबंधित खबरें भी आज हेडलाइन बनी हैं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, पूर्वी यूपी में लगातार 5 दिन तक बारिश का अलर्ट, तराई इलाकों में रहेगा ज्यादा असर, बाढ़ का खतरा। अमृत विचार ने लिखा है, मानसून ने पकड़ी रफ्तार, प्रदेश के 49 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: 8:58 का समय और ये समय इशारा कर रहा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ के पहले घंटे को हम यहीं पर वाइंड अप कर दें. और दोस्तों ठीक 9 बजे आप तक पहुंचेंगे समाचार और उसके बाद आपसे होगी पुनः मुलाकात गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ पर.
1: और इन्फॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट का सिलसिला अगले घंटे भी जारी रहेगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिएगा आपके दिल की आवाज़ 100.7 FM रेनबो.

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स इन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ और 9:04 और साथ में 36:38 से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को और इसमें आपके दो दोस्त यानी कि मैं हूं आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन और मेरे साथ हैं
1: विनय यादव और आप एंजॉय कर रहे हैं एंटरटेनमेंट और

0: एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन इन द प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ.
1: और गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ पर भी आप हमारा वैसे ही साथ देंगे जैसे आपने पिछले घंटे हमारा पूरा साथ निभाया, और हम यही आशा के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. और 9:05 का समय, और आज का जो मुद्दा है वो हम सभी आपको एक बार फिर से बताएंगे हम दोनों. और चूंकि आज 11 जुलाई का दिन है, हम सभी मना रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और विश्व जनसंख्या दिवस से रिलेट करता हुआ ही आज का हमारा मुद्दा है. मुद्दा यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या में नेचर द्वारा दिए गए रिसोर्सेज को हम कैसे संरक्षित करें, यानी कि उनको संजोकर कैसे रखें, शुद्ध हवा, शुद्ध जल और शुद्ध जो हमारे पास जगह है यानी कि भूमि है, उसको हम कैसे संरक्षित करें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए. आप हमें बताइए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इन सब रिसोर्सेज को संरक्षित कर सकते हैं. आप हमें बता सकते हैं, हमारी मेल आईडी है
0: fmakashwanilakhnow@gmail.com, जहां पर आप अपने दिल की बात हमसे कर सकते हैं
1: और आज के मुद्दे पर अपने विचार भी हम तक पहुंचा सकते हैं. तो इंतजार किसका है, बस हमें मेल कीजिए, हमें आपकी मेल्स मिलेंगी, हम आपकी मेल्स को आपके लिए पढ़ेंगे, हमारे लिसनर्स के लिए पढ़ेंगे. फिलहाल यह प्यारा सा गीत आप के लिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए. सुंदरी 90.7 FM रेनबो, धड़कन
0: लखनऊ के.

0: प्यार में हम डूब गए इतने सनम।
1: बाकी में हाँ, प्यार में हम डूबे रहते हैं अपने लिसनर्स के
0: बिल्कुल,
1: और इतना प्यार जो देते हैं
0: जी, और ये प्यार है हमें मेल्स के माध्यम से लगातार मिलता रहता है। और हमारे पास ब्रजेश सिंह जी की मेल आ चुकी है इटौवा केसरगंज बहराइच से। कह रहे हैं प्यार भरा गुड मॉर्निंग मेरे फेवरेट रतन सर जी, प्यार भरा गुड मॉर्निंग मेरे फेवरेट विनय सर जी। क्या कहते हैं विनय पे बताइए?
1: बस प्यार है जो हमने कहा कि आप इतना प्यार देते हैं।
0: इस प्यार को इन्होंने स्वीकार कर लिया है और आपके लिए मुस्कुराहट एक प्यारी सी भेज दी है विनय ने। विनय सर से एक रिक्वेस्ट है कि आपका अपना कोई इंतजार करता रहता है हमेशा, इतना लंबा इंतजार ना करवाया करें, ये पल के बिछाए रहता है। आज दो खूबसूरत आरजे एक साथ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, आज कार्यक्रम कुछ अलग ही होगा और सॉन्ग सिलेक्शन भी जबरदस्त, सुगंध माटी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ
1: मैं। इसीलिए इन्होंने जो बात लिखी है ना, इसीलिए मैंने आपको बीच में टोक दिया, और सिर्फ इसलिए कि आप सिर्फ आवाज सुन पा रहे हैं हमारी, ये मत कहिए खूबसूरत
0: खूबसूरती आवाज के साथ साथ हमारी जो बातों की खूबसूरती वो उन तक पहुंच रही है
1: आवाज। वही तो मैंने कहा आवाज सुन पा रहे हैं,
0: बहुत अच्छी बात। अगली मेल किनकी है विनय?
1: अगली मेल है प्रमुख कुमार जी की, और वो लिखते हैं कि हम लुधियाना से सुन रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमें फ्रीक्वेंसी पर। कह तो हमने कहा चले ठीक है प्रमुख जी, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ ही देर में सॉल्व आउट हो जाएगी।
0: बिल्कुल, हम पूरी तरह से हमारे इंजीनियर्स इस पे लगे हुए हैं और जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। और हमारे जितने भी उच्च अधिकारी इस वक्त सुन रहे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज जल्द से जल्द हमारे ये लिसनर्स हैं प्यारे प्यारे, इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कराया जाए ताकि ये प्रोग्राम्स को मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच प्रमुख जी। सुधांशु जी की भी मेल हम तक पहुंची है, भगवतीपुर पोस्ट मोहाना थाना बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से हमें मेल भेज रहे हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ, इन्हें बहुत पसंद आ रहा है आज का सुविचार, इन्हें बहुत पसंद आया। विनय सर आप कहाँ थे बताइए?
1: जी हम आपकी यादों में थे।
0: क्या बात है, ये आपकी यादों में थे और अभी तक ये आपको बहुत मिस कर रहे थे। टॉपिक पर ये लिख रहे हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस के संदर्भ में ये लिख रहे हैं कि बढ़ती आबादी और प्रकृति के संसाधनों का सही उपयोग एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है प्राकृतिक संसाधनों का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों को सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें सतत विकास के मार्ग को अपनाना होगा। सबसे पहले हमें कोयला और पेट्रोल जैसे सीमित संसाधनों पर निर्भरता कम करके सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा के विकल्पों को दैनिक जीवन में शामिल करना होगा
1: जी।
0: इसके साथ ही जल संकट से निपटने के लिए वर्षा के जल को संचित करना और भूजल स्तर को सुधारना अनिवार्य है ताकि भविष्य में पानी की कमी ना हो। कचरा प्रबंधन और प्रदूषण को रोकने के लिए भी हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा, जिससे चीजों का सीमित उपयोग, उनका दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकलिंग शामिल है। कृषि के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी बात पहुंचाई है कि रासायनिक खादों की जगह जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट ना हो। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना और प्रकृति का सम्मान करना ही एकमात्र वो तरीका है जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य सौंप सकते हैं। थैंक यू सो मच।

0: अंशु जी, आपने जितने भी विषय हैं हमारे इस पॉपुलेशन से संबंधित और इस रिसोर्स से संबंधित, आपने सबको छुआ और सब पे अपने विचार पहुंचाए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ, रतन जी और दीप्ति पांडे जी ने मेल किया है हमें मोहल्लालगंज से, और ये लिखती हैं कि जो आज का आपका जो सब्जेक्ट है, विषय है, ये बहुत ही अच्छा है, और लिखती हैं कि हम सभी उपभोग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और ये बात बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपनी चीज़ों को उनको दें और सुरक्षित दें, अच्छे अच्छी तरह से उनको लौटाएं।
0: बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच अदिति जी आपकी इस मेल के लिए।
1: और उसके अलावा सुशील कुमार जी ने मेल किया है, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, आप दोनों के लिए नमस्कार, मौसम बहुत खूबसूरत है जी, और कुछ नाश्ता भेजा इन्होंने आपके।
0: क्या बात है, ये मीठी मीठी बूंदियां भेजी है, पूरी कढ़ाई भर के भेज दी, इतनी थोड़ी खा लेंगे।
1: हाँ, कढ़ाई भर के भेजी है।
0: थैंक यू सो मच।
1: अभी जैसे उन्होंने कहा था ना कि बहुत ही खूबसूरत आरजेज हैं, उन्हें लगा होगा कि जो है खूबसूरत आवाज, आपने कहा कि आवाज के माध्यम से आप हमसे जुड़ते हैं, तो कहा कि चलो कढ़ाई भेज देते हैं।
0: थैंक यू सो मच, हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बड़ा वाला शुक्रिया। प्रवीण साहब की मेल हम तक पहुंची है, पानी बचाएं सबसे जरूरी है, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, नदियों तालाबों को गंदा ना करें, ऊर्जा बचाएं, बिजली की बचत करें, दिन में प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें, पेट्रोल डीजल के वाहनों को उपयोग की जगह पैदल चलें, साइकिल चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईवी का उपयोग करें, इससे वायु प्रदूषण कम होगा और हवा साफ रहेगी, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, इससे जंगल और मिट्टी बचेगी, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, ऑर्गेनिक खेती करें, केमिकल का उपयोग ना करें, उसकी जगह प्राकृतिक खाद और गोबर खाद का उपयोग करें, 3R फार्मूला अपनाएं, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, जैव विविधता बचाएं, जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुंचाएं।
1: हाँ, और रतन जी 9:16:44 का वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, और जैसा कि 2026 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए, और उसी से जुड़ा हुआ हमारा मुद्दा है कि भाई जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनको अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे संरक्षित करके दें, यह मुद्दा है। आप हमसे जुड़ रहे हैं fmakashwani@gmail.com पर और अपने विचार हमसे साझा कर रहे हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो सभी के पसंद का है।
0: जी हाँ, बिल्कुल
1: बिल्कुल।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: 9:23 का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। आपके दो दोस्त रतन और विनय आपके साथ हैं। और दोस्तों, हमारे शहर लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और उनकी जानकारी आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वरिष्ठ रंगकर्मी गोपाल सिन्हा के निर्देशन में लेखक आशुतोष शुक्ल की चर्चित कहानियाँ ठेस और अपरिचित पर आधारित विशेष नाट्य रचना दृश्य का मंचन आज होगा। और ये जो मंचन होगा गोमती नगर के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान प्रेक्षागृह में 7:00 से। पारंपरिक नाटक से अलग शैली में होने वाले मंचन में कहानियों का नाट्य पाठ और उसके अनुरूप दृश्य मंच पर साकार किए जाएंगे। तो अगर आप इस तरह के नाटक को मंचित होना देखना चाहते हैं तो जरूर आप रचना दृश्य को देखने के लिए पहुंचे गोमती नगर लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान प्रेक्षागृह में 7:00।
1: हाँ, और रतन जी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत जरूरी है हमारे यूथ के लिए कि IIIT यानी IIT लखनऊ में MBA की मेरिट जारी हो गई है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा BBAU यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो स्नातक के स्टूडेंट अपना जो है एडमिशन लेना चाहते हैं वो अलर्ट हो जाए। 14 जुलाई से ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो आप वहां पर जाकर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा www.bbau.ac.in पर भी आप जानकारी ले सकते हैं।

0: तो ये तो जानकारी रही उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं और प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं, और जो नाटक के मंचन के शौकीन हैं उनकी भी जानकारी हमने आपको दे दी है। तो ज़रूर आप इनमें पार्टिसिपेट कीजिए और आज के दिन को अपना खूबसूरत बनाइए और लगातार हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। 9:25 का समय हो चुका है, एक और बहुत ही प्यारा सा गीत हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं,
1: क्योंकि वादा है हमारा आपसे
0: बिल्कुल
1: इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ
0: बिल्कुल आप तक पहुंचेगा, और इस प्यारे से गीत को एंजॉय कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। 30 मिनट का समय हो चुका है, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ। आपके दो दोस्त विनय और रतन आपके साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश सर। हमें देने वाले हैं वो मौसम की तरोताज़ा रिपोर्ट। और आज कैसा मौसम लखनऊ का रहने वाला है, उसके आसपास के क्षेत्रों कैसा रहने वाला है? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो आज लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों का मौसम सर कैसा रहने वाला है, प्लीज बताइए।
2: जी मौसम की बात करें तो मौसम खुशनुमा रहेगा, इस जैसा मौसम चल रहा है। बादलों की आवाजाही दिन भर लगातार बनी रहेगी
1: जी,
2: अभी जिसमें हल्की से मध्यम वर्षा होगा, ये सिलसिला आज रहेगा, कल भी कुछ हिस्सों में रहेगा, मतलब कुछ टाइम के लिए। बाकी कल से धीरे धीरे थोड़ा धूप निकलने की संभावना है।
1: Okay.
2: और फिर आने वाले दिनों में दो दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, थोड़ा धूप भी निकलेगा, तो चार बूंद गिर सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर से एक माहौल बनेगा बारिश का। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी का सबब नहीं रहेगा, हालांकि थोड़ा उमस वाली गर्मी दो दिन के बाद थोड़ा दो तीन दिन चुभेगी, लेकिन ओवरऑल मौसम काफी खुशनुमा रहेगा, अडेप्टेबल रहेगा और इस तरीके से एक अच्छा मौसम।
1: यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो थोड़ा सा मौसम राहत भी देगा, थोड़ा सा परेशानी भी देगा और
2: इस
1: फिर से मौसम राहत देने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, धन्यवाद आपका सर। दोस्तों दानिश सर ने तो बता दिया कि आज मौसम आज के साथ साथ कुछ एक दो दिन में मौसम थोड़ा चेंज होगा और हल्की सी धूप छांव वाला मौसम भी रहेगा, बीच बीच में थोड़ी बूंदाबांदी भी होगी।
3: जी जी जी। तो और दानिश जी का जो कहना है पूर्णतया कि मौसम का जादू यूं ही चलता रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, और जैसे कि चेंजेस की बात है तो थोड़ा उमस गर्मी भी हो सकती है और उसके बाद फिर बारिश का सिलसिला।
1: ऊपर वाला भी हमारा ध्यान रखता है कि जैसे बारिश कराई, कपड़े भीग गए तो थोड़े दो एक दो दिन मौसम में थोड़ी सी धूप रहेगी ताकि आप अपने कपड़े सुखा ले, फिर से वो बारिश कर देंगे ताकि आपके कपड़े फिर से भीग जाए। तो ये अल्टरनेटिव जो चीजें हैं वो अल्टरनेट चलती रहेंगी, लेकिन आपको करना क्या, आपको मौसम का पूरी तरह से एंजॉयमेंट करना है और इसके लिए जरूरी है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी यह होगा कि आप जो भी इस मौसम में यानी गर्मी इस जो बारिश वाला जो मौसम है इसमें अगर आप जो भी चीजें यूज करें, चाहे खाने पीने की चीजों चाहे पहनने ओढ़ने की चीजों, वो पूरी तरह से साफ हों, शुद्ध हों।
3: और साफ और शुद्ध होंगे ना तभी तो आप आगे बढ़ सकेंगे, अपना काम कर सकेंगे। और जैसे कि इंफॉर्मेशन है, आप अगर कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं कुछ करना चाहते हैं तो उसको सही तरीके से कर सकेंगे।
1: बिल्कुल,
3: अपनी चीजों को सही तरीके से जब आप अंजाम देंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको खुशी होगी।
1: बिल्कुल खुशी होगी और अगली खुशी हमें तब होगी जब अगला गीत हमारे लिसनर्स तक पहुंचेगा।
3: बिल्कुल,
1: तो कौन सा गीत पहुंचने वाला है?
3: जो भी है, आपका दिल जो हमारे लिसनर्स हैं उनका दिल तरोताजा करने वाला है।

0: बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: जी हाँ दोस्तों, अगर आज आपका जन्मदिन है तो आज आपके जन्मदिन की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।
1: और हमारी तरफ से, आकाशवाणी की टीम की तरफ से
0: जी
1: बारिश वाली ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: जी हाँ।

0: से भीगे भीगे मौसम में बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं आपको और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है. अच्छा एक बात तो, इतनी बारिश में मैरिज कौन करता है
1: भैया? जिसकी लगन लग जाती है उसको करना पड़ता है, करना पड़ता है
0: जी बिल्कुल.
1: भले आप इंतजार करते हैं और फिर उसके बाद आपको करना पड़ता है.
0: नहीं नहीं हाँ, हमारे साथ ऐसा तो हम कहते भैया बारिश में नहीं करेंगे. बारिश थोड़ा बढ़ा दीजिए आगे.
1: नहीं बढ़ाने का काम तो सबके हाथ में नहीं है पॉसिबल.
0: तो भाई जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बताइयां. आपके जीवन में ये पल बार बार आते रहें, आप सभी यूं ही मुस्कुराते रहें और ये दिन ये पल बार बार आप इसी तरह जीते रहें. और अब हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि आप किन के साथ अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं. सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे. इनका जन्म भी आज ही के दिन यानी कि 11 जुलाई 1902 को पंजाब में हुआ था. दोस्तों उन्होंने भारत के आजाद होने के बाद रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली और भारतीय सेना के संगठन और मजबूती में अहम भूमिका निभाई और साथ में दोस्तों विभाजन के कठिन समय में देश की सुरक्षा को मजबूत रखा. उनका योगदान भारतीय रक्षा व्यवस्था के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में आज भी दर्ज है. इनका निधन 29 जून 1961 को हुआ और आज इस महान व्यक्तित्व को हम उनकी जन्म जयंती पर नमन करते हैं
1: जी. और रतन जी उसके अलावा अगर हम बात करें बॉलीवुड की तो कॉमेडियन एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर टुनटुन जिनका हम सभी नाम जानते हैं और उनकी एक्टिंग देखी है, कॉमेडी देखी है और उनके गाने भी, गाए हुए गाने भी सुने हैं हम लोग.
0: बिल्कुल सुने हैं और वाकई में टुनटुन जी की जो अदायगी थी, जो उनकी कॉमेडी थी, वाकई में बहुत हंसाती थी और वो हमारा बचपन हमें याद आ जाता है जब हम उनकी मूवीज को देखते हैं
1: जी. टुनटुन यानी उमा देवी खत्री, आज ही के दिन 11 जुलाई 1923 को उनका जन्म हुआ. और भारतीय सिनेमा की अगर बात करें, कॉमेडी की अगर बात करें तो यू आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक दिशा और दशा दिखाई है भारतीय सिनेमा को.
0: जी हाँ दोस्तों, और ऐसे महान अदाकारा को हम उनकी जन्म जयंती पर नमन करते हैं, उनके बॉलीवुड में दिए गए योगदान को हम नमन करते हैं.
1: उन्होंने 190 से ज्यादा फिल्मों में काम किया जिनमें नमक हलाल, कुर्बानी, आपके खातिर, चाचा भतीजा, समाधि, कोहिनूर, सीआईडी प्रोफेसर जैसी तमाम फिल्में हैं जो आप देखे हैं और इंजॉय किए हैं.
0: बिल्कुल.
1: और उसके अलावा रतन जी बात करें बर्थडे का तो कुमार गौरव, बड़ा कौन नहीं जानता है उनका नाम. हाँ. और उनके जो फिल्माए गए हैं उनके ऊपर सॉन्ग्स हम सभी ने एंजॉय किए हैं.
0: बिल्कुल एंजॉय किए हैं. और जब कुमार गौरव का नाम आता है तो हमें वो नाम मूवी जरूर याद आती है जिसमें उन्होंने संजय दत्त जी के साथ भूमिका निभाई और बहुत ही अच्छा रोल अदा किया.
1: हाँ.
0: और भी उनकी कई मूवीज हैं जो कि मैंने देखी और मुझे पसंद आई है और आज उनका जन्मदिन है.
1: हाँ, आज ही के दिन 1956 यानी साल 1956 में लखनऊ में उनका जन्म हुआ था.
0: क्या बात?
1: और आप तो जानते हैं राजेंद्र कुमार जी के वो बेटे हैं. और 1981 साल 1981 में लव स्टोरी से अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद फिल्में आईं, आपने देखा, आपने एंजॉय किया, और तेरी कसम, स्टार, नाम और कांटे जैसी फिल्में उन्होंने की.
0: तो वाकई में कुमार गौरव साहब को आज उनके जन्मदिन पर हम इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की भी हम कामना करते हैं. और आज आप सभी इस महान एक्टर के साथ, इस महान अभिनेता के साथ अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: और ये जो धीमी धीमी सी सॉन्ग है, वॉइस है, ये कुछ कह रही है. 9:43:27 का वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज विनय यादव और रतन के साथ.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, 48 मिनट का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। और दोस्तों, गुड मॉर्निंग लखनऊ में कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपको तरह तरह की जानकारियों से रूबरू कराते रहें और जो कुछ भी हमारे पास रहे वो हम आप तक ज़रूर पहुंचा दें। और शादियों की जब बात होती है तो वाकई में बड़ी खुशी होती है और बड़ा हर्ष का ये विषय भी है और बड़ा अच्छा लगता है ना।
1: हाँ, सीज़न चल रहा है।
0: सीज़न भी चल रहा है और इसी सीज़न में एक खुशखबरी ये आई है कि अभी हाल ही में दो रोबोट्स, आप समझ रहे हैं ना, ह्यूमनाइड रोबोट्स ने एक दूसरे से शादी की है।
1: क्या
0: सुनके थोड़ी हैरानी हो रही ना आपको?
1: और हैरानी ये नहीं होनी चाहिए कि रोबोट ने शादी की, हैरानी और उत्सुकता भी होनी चाहिए इस बात से होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी ने कितना ज्यादा विकास कर लिया है।
0: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही विनय आपने बात कही। और वाकई में शादी की कल्पना अगर करी जाती है तो वाकई में दो

0: व्यक्तियों के बीच में की जाती है, एक वुमेन एक मैन के बीच में की जाती है. लेकिन आज जहां टेक्नोलॉजी की बात करें तो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि दो ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने एक दूसरे से शादी की. और शादी की रस्मों की अगर बात करें तो इसमें जो अंगूठी की रस्म होती है उसकी जगह यहाँ पे हुआ कि कंगन एक दूसरे को पहनाए गए.
1: क्या बात है.
0: और दोस्तों ये जो रोबोट हैं इनके नाम हैं रॉबर्ट और मटिल्डा. ये दो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं जिन्होंने एक दूसरे से शादी की और कसमें ये खाएं कि अगले हर सॉफ्टवेयर अपडेट तक ये एक दूसरे का साथ निभाएंगे.
1: क्या बात है. और ऐसे ही देखिए कसमें जो है खानी चाहिए शादी में.
0: बिल्कुल खानी चाहिए
1: और निभानी चाहिए.
0: और निभानी भी चाहिए. तो दोस्तों ये एक कहें तो प्रतीकात्मक विवाह कराया गया. इसका मुख्य कारण ये था कि उन्नत रोबोटिक्स की क्षमताओं को प्रदर्शित करना कि किस तरह से आने वाले समय में ये जो रोबोट्स हैं मानव जीवन में कितना बड़ा रोल अदा करने वाले हैं.
1: जी बिल्कुल. और 9:50 और 55 सेकंड्स का वक्त रतन जी हो चला है एक सॉन्ग की तरफ. आप देख रहे हैं.
0: बिल्कुल हम देख रहे हैं. तो इस सॉन्ग को आप तक पहुंचाते हैं उसके बाद कुछ और बातें और आपकी प्यारी प्यारी मेल्स भी.
1: जी

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और

0: personalized care.
1: My pediatric brain and spine surgery, PICU, EEG, MRI, genetic test, physio और speech therapy जैसी सुविधाएं ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए.
0: चरक हॉस्पिटल दुबग्गा हरदोई रोड लखनऊ. कॉल 666-444-444.
2: तो 9:55 का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ. और मुद्दे की बात अगर करें तो बहुत सारी मेल्स हमारे पास आ चुकी हैं. रोशनी रावत जी ने हमें मेल किया है और ये मेल इन्होंने हमें किया है चंडीगढ़ से. प्रोग्राम सुन रही हैं और बैमाना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से हमें ये जो है भेजने वाली हैं. और लिखती हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्वाइकल यानी कि जीवित रहना और सर्वाइवल यानी कि जीवित रहना और फलना फूलना ये करने सर्वाइव करने का जो सीधा अर्थ है वो प्रकृति के साथ संघर्ष करने के बजाय उसके साथ संतुलन बनाना है. बिल्कुल सही बात आपने लिखी रोशनी जी, थैंक यू सो मच.
3: और रतन जी, अंजू जी ने मेल किया है और आज के मुद्दा इन्होंने लिखा है. गुड मॉर्निंग लिखी है. गुड मॉर्निंग टू आपको भी अंजू जी,
2: थैंक यू सो मच.
3: और इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं और कुछ गुस्से में दिखाई पड़ती हैं.
2: क्या कह रही हैं
3: कह रही हैं तो

0: करने सरवाइव करने का जो सीधा अर्थ है वो प्रकृति के साथ संघर्ष करने के बजाय उसके साथ संतुलन बनाना है। बिल्कुल सही बात आपने लिखी रोशनी जी, थैंक यू सो मच।
1: और रतन जी, अंजू जी ने मेल किया है और आज के मुद्दा इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखी है, गुड मॉर्निंग टू आपको भी अंजू जी,
0: थैंक यू सो मच।
1: और इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं और कुछ गुस्से में दिखाई पड़ती हैं।
0: क्या कह रही
1: हैं? कह रही हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आपने जो मुद्दे पे बात की है ना उसके लिए भी आपको थैंक यू। आपने कहाँ से मेल हमें किया है ये आपने नहीं लिखा है भाई, अगली बार जब मेल कीजिए बताइएगा जरूर।
0: जी, महेंद्र दीपन जी हैं हमारे साथ और कह रहे हैं मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ और फिलहाल नवसारी गुजरात में हूँ और सुबह से आपका शो सुन रहा हूँ। बढ़ती जनसंख्या और प्रकृति के रिसोर्स वाले मुद्दे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी नीतियों से ज़्यादा फर्क तब पड़ेगा जब हम अपनी आदतें सुधारेंगे। आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है बर्बादी रोकने की, चाहे पानी हो, बिजली हो या खाना हो। हम लोग जरूरत से ज्यादा वेस्ट करने लगे हैं। अगर हर इंसान सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करे जितनी जरूरत है, उसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दे तो प्रकृति पर से आधा बोझ वैसे ही कम हो जाएगा। बाकी अपने आप आसपास थोड़ी हरियाली बनाए रखना और बेजुबान पशु पक्षियों का ध्यान रखना भी इन हम इंसानों का ही फर्ज है। आप दोनों की बातें सुनकर सुबह का वक्त अच्छा कटता है, मेरे इन विचारों पर को भी अपने शो में शामिल करिएगा। तो बिल्कुल कर चुके हैं। अगली मेल किन की है?
1: अरुण कुमार जी ने मेल किया है घमोइया हरदोई से और लिखते हैं, आप दोनों लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, और थोड़ी शिकायत भी की है। कोई बात नहीं, शिकायतें तो चलती रहती ना, अगर शिकायत
0: बिल्कुल आपका हक है, आप शिकायत कर सकते हैं और हम यहाँ आपकी प्रशंसा और आपकी शिकायत दोनों सुनने के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष चौरसिया जी, राम राम। रतन भैया कैसे हैं? तो मैं बहुत अच्छा हूँ, गुरुग्राम हरियाणा से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और मेरे यहाँ रेनबो प्रोग्राम रेनबो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो बिल्कुल आपकी समस्या पे का लगातार इस पे कार्य चल रहा है और जल्द ही आपकी समस्या का समाधान भी करा दिया जाएगा
1: जी।
0: ब्रजेश सिंह जी की भी मेल हम तक पहुंची है और ये लिखते हैं कि हम एक किसान परिवार से हैं, प्राकृतिक खेती करता हूं, जैसे गोबर डालता हूं, खेत में खाद यूरिया बहुत कम मात्रा में उपयोग करता हूं और अच्छी पैदावार लेता हूं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को इस मिट्टी को बचा कर देना है, नहीं फिर आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। और सबसे अच्छी फसल लगी है मेरी, सब लोग कहते हैं आप डालते हो, लेकिन कसम से कहता हूँ, वो कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ तो ऐसा डालते हो जिससे आपकी फसल इतनी अच्छी उगती है,
1: उसके बारे में बात कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसरगंज बहराइच से ब्रजेश सिंह जी की मेल हम तक पहुंची है। 9:58 का समय हो चुका है दोस्तों, और ये समय इशारा करने लगा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ को हम यहीं पर वाइंड अप करें, क्योंकि बहुत सारी मेल्स आपकी लगातार हम तक पहुंची हैं। जिन्होंने हमें मेल किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी मेल हमने शामिल की उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनकी मेल हमने पढ़ा और उनकी मेल हम शामिल नहीं कर पाए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, अगले कुछ घंटे आपके साथ रहने वाले हैं विनय। फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ के इस घंटे से अपने दोस्त रतन को दीजिए जाने की अनुमति। हम दोनों यानी कि विनय और रतन आपसे चाहते हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ से अनुमति। आप हमारे साथ यूं जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन
1: लखनऊ की।

0: शुभारंभ करेंगे।
1: सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की सीबीआई जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। प्रदेश भर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत आज से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों समेत अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेगी। इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 4 अगस्त रात 12 बजे से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की मांग के अनुरूप आधुनिक बनाया है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के सपनों को साकार करने में भागीदार बने। बिजनौर में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी सरकारी वेबसाइट और जनसेवा केंद्र बनाकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान इस गिरोह के पास से लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, फिंगरप्रिंट मशीन जब्त की है। साथ ही 61 आधार कार्ड, 42 बैंक पासबुक, 33 डेबिट कार्ड और 19 पैन कार्ड और 2,00,000 से अधिक कैश भी बरामद किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 107.7 FM रेनबो।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं, आप सुनिए एफएम समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और कुशीनगर जिले को 1283 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। श्री योगी कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वो कार्यक्रम स्थल के पास विकास प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री गोरखपुर में 4-लेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: हाँ भैया 10:04 और 45 सेकंड का समय हुई गवा है और यह रहन सुन के धुन सुन के हाँ धुन सुन के आप समझ गए हो कि कार्यक्रम शुरू हुईगा है सुगंध माटी की। और आज हमारे साथ है कोई आवा है पहले हम बता दी हम आपके साथ ही विनय यादव और हमारे साथ हैं हम आप फूफा और फूफा का नाम हम ले आवे ना फूफा।
1: हाँ भैया हाँ भैया
0: हाँ हाँ हम तो जाने हरा गए का।
1: अरे नहीं भैया तुम्हारी बातें सुन रहे रहन ध्यान से।
0: बातें फूफा बातें तो हम तुम्हारी सुने खातिर बुलावा है तुमका।
1: अच्छा
0: हाँ फूफा अपन परिचय दियो सब जने पूछ रहे हैं फूफा हमार विनय यादव तो फूफा है।
1: हाँ, हाँ।
0: लेकिन जो हमारे श्रोता भैया है जो कार्यक्रम सुन रहे हैं वी को आए
1: भाई देखो भले आदमी जो है वही हमका राजा भैया के नाम से जाना था।
0: अच्छा
1: और जौन खुराफाती लोग हैं

0: तुम तो उनका झंझटी भैया था
1: लिया यहाँ को नुआ फटका
0: काहे से कि गलत काम और गलत बात हमका बर्दाश्त नहीं हो।
1: अरे दादा पुपा याक बात तो हम भूल ही गए ना। अरे भूले नहीं यहू की तुम्हारा ग्वाल कहाँ है दादा? लाओ पाए छू लेनी अम्मा सुनती हुई है कहीं फूफा मिले तुम पाए नहीं छुओ फिर गड़बड़ा दिया।
0: खुश रहो खुश रहो खुश रहो और यह तरह जोरदार कार्यक्रम करते रहो श्रोता लोगन का मन मोहते रहो।
1: हाँ पुपा देखो आशीर्वाद ले बहुत जरूरी रहा ना।
0: हाँ भाई बड़े बूढ़े का आशीर्वाद तो चाहिए।
1: हाँ चाबे करी 10:06 हो गए हैं 15 सेकंड हो ही रहे हैं और भैया जाओ कहूँ ना बिल्कुल चमक का पुपा बिल्कुल टीका विका लगा टोपी ओपी पहन गई है और छतरी उतरी धर के बाहर आए हैं पैंट वेंट समेट गई है पुपा।
0: हाँ
1: चला जाए।
0: हाँ चलो
1: गवनाई सुनाई तुमका मस्त हो जाओ तुम।
0: बिल्कुल बिल्कुल वह सुने तो आए।
1: हाँ क्या बात है तुमका बिल्कुल।
0: हाँ
1: ठीक है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ओ फूफा।
2: हाँ बच्चा।
1: अरे हम कही तू जो है जो नीली पीली बत्ती देख जल रही ना,
2: हाँ
1: कहूँ इनका देख कर तुम डरा न जाओ, हमारे तुमका जो है हम हुरियावत रही थे।
2: अरे बच्चा डराई थी हम बाघ देखे ना, ये बत्ती देख के डरा।
1: यही मारे हम जाली था।
2: हाँ हाँ।
1: तो तुम जो है गजब करी हो।
2: हाँ बिल्कुल
1: फूफा, एक बात बता।
2: हाँ पूछो।
1: यो झंझटी का है मारे भाई, तुम तो नीक नीक हो, चारू तरफ से हमका ठीक ठीक दिखाई पड़ा, तुम बताओ झंझटी हो?
2: अरे हम नहीं बताई थी, कुछ लोग हमका झंझटी समझत।
1: को कहा थी हमका बताओ तुम?
2: अरे वो का छोड़ो, और यो देखो अब आम का मौसम चल रहा।
1: हाँ चल रहा।
2: हालांकि आपकी दशहरी कम आई।
1: हाँ दशहरी कम आई,
2: लेकिन फिर लोग झोरी भर भर खा रहे हैं।
1: हाँ खाई है।
2: अब गणेशी के घर में दशहरी के आम आए।
1: अच्छा।
2: और पूरा घर जमीके खाई।
1: अच्छा।
2: और छोकला उठाए गली में फेंक दीस।
1: अच्छा का खाए नहीं वही के बाद कहीं के लिए आओ।
2: उधर प्रसादी की बिटेवा आवत रहा, दौरा चली आवत रहा, बच्चा है और वही का पाँव छोकला परिगा बरसात का मौसम और हवाई जहाज हो गए रपट के गिरी।
1: हाँ।
2: वही की खोपड़ी में लाग गए चोट। हम दौरे उठाएन और आवाज दीन, हम कहें तुम लोग कई गलत आदमी हो, खायो आम तो डिब्बा में धर लेती
1: हूँ,
2: कूड़ा ले वाला उतर तो डार देती हूँ, और ये देखो बिटेवा कितनी छोटाई गई है तुम्हारी गलती के मारे।
1: यह बात तो है।
2: अब कहें मक्खी बन बनाती है डिब्बा में डारी तो हम कहें फिर हम बन बना तुम रे हमका गुस्सा न दिला।
1: यही मारे
2: भाई यही झंझट हो जाते,
1: यही झंझट हो जाते। हम जाने को और बात रहा है कि मार झंझट होएगा।
2: लेकिन भैया कूड़ा करकट गली में न फेंके चाहिए।
1: हाँ कूड़ा करकट
2: साफ सफाई का ध्यान रखे चाहिए, वही माँ हमारो स्वास्थ्य तो जुड़ा है।
1: देखो यो बरखा का मौसम है।
2: हाँ।
1: और पुपा देखो चाहे अपने गावन मैया हो चाहे सहारन मैया हो, गावन मैया कहा है कि भाई रोडे हैं कच्ची, कहूँ कच्ची है कहूँ खड़ंजा लाग है, लेकिन अगर वहाँ पर यहाँ ऐसे तो चली हो और अगर कहूँ कूड़ा करकट डार दे हो गोबर डार दे हो तो फिर कैसे चली हो दादा? यही मैया फूफा हमारा गुस्सा आ जाए फिर झंझट कही दी।
2: और बरसात के मौसम में ऐसे दुनिया भर एक बीमारी घेरती है, और गंदगी फैली हो तो समझ लो बीमारी के मुहिमा हो।
1: हाँ मुहिमा हो।
2: हाँ।
1: अच्छा फूफा याग बात और हम सोचे थे।
2: हाँ कहा भैया?
1: कि जैसे आप बताओ कि जुहाला भर के अंबिया दशहरी खा ले चक कहीं।
2: हाँ।
1: वही तना जैसे अब गर्मी के बाद या बरखा आवत है तो आदमी कहा देते नहीं तो मौसम ठंडा होएगा है, चलो और कुछ थोड़ा दिन जाए पूरी कचौड़ी ले लियो।
2: हाँ, बिल्कुल कब हूँ भूल के न खाए चाहिए करिष्ट भोजन, काहे से जब बरसात होते है ना तो मौसम इस तरह बदलत है तो पाचन क्रिया सुस्त हो जाते वही माँ तुम एल तेल की चीजें खाए लियो।
1: हाँ,
2: चाप के
1: गरे तक
2: तो डकारो लेम जू निकर
1: डकारो लेम जू निकरी, और वही के बाद जब खा ले हो तो कहियो कि जो है मौसम तो ठंडा रहा है खाएन लेकिन पचा नहीं।
2: भैया अगर इतना खाना खाई हो बाजार का खाई हो खट्टा मीठा तो फिर भगवान है मालिक है।
1: फूफा।
2: हाँ।
1: 10:15 और 5 सेकंड हुई गए हैं और भैया लोग जो हमका पंजन कहीं सुन रहे हैं।
2: हाँ हाँ।
1: उनके खातिर बता दी कि FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर अपन संदेश अपन बातें और फूफा की हमारी बातें यानी झंझटी भैया की बातें सुन के अपन विचार हमते साझा कर सकते हैं। और गौनाई फूफा जो है बिल्कुल तैयार है, कह रही कि फूफा आए हैं और तुम जो है गौनाई तो, देर कही रहे
2: तो बाजे ढोलकी
1: बाजे तो मुँह बजाओ। हचक
2: हाँ
1: फिर का पूछे

0: हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। फूफा।
1: हाँ बच्चा।
0: कहाँ थे आओ, गांव तो हमका नहीं लागत कि तुम गांव तो नहीं आओ।
1: अरे नहीं भाई, राम सुमेर के लड़कवा की रहा है शादी।
0: अरे साला का चल रही रसगुल्ला उड़ा दी ने।
1: अरे रसगुल्ला हम एक ही खाए ना, काहे से हमका ज्यादा मीठा मना है। और ना मना हो तो बहनों जो खाए थे उन्हों कम से कम मीठा खा थे।
0: हाँ, मीठ कमाए खाओ। हाँ। और देखो मीठ बोले चाहिए लेकिन भूपा।
1: हाँ मीठा बोलो
0: लेकिन तुम हड़कावत ही हो भाई, ने कहा रहा कि मैं जो है।
1: अरे तो भैया जब को गलती दिखाई पड़ थी आंखिन के सामने तो बर्दाश्त नहीं होती।
0: हाँ बर्दाश्त नहीं होती।
1: हाँ, गलत काम करे थोड़े चाहिए।
0: अच्छा यो बताओ, सहालक गए रहो, बिहार गए रहो, तो वहाँ नाचे वाचो की ऐसा है?
1: अरे बच्चा की बात, अभी उम्र में कहा नाचब, बस यह है जूतन के भीतर धीरे धीरे ठुमक लिए
0: अंदर। नहीं नहीं नहीं फूफा, देखो जो है तुम हमका बिल्कुल समझ मार रहे हो कि जो है नाच वाच के बढ़िया रसगुल्ला पूरी सब्जी उड़ाए का आए हो, और सहालक चल रही है।
1: हाँ,
0: गाना बजाना चल रहा है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, खान पीन चल रहा है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा फूफा, जोनी जो अपन बिहार होते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: एमा जोनी रस्में होती
1: है।
0: हाँ, एमा तिलक हुई।
1: हाँ,
0: गोद भराई हुई, परीक्षा हुई, और वही के बाद जब विदाई हुई तो बिटेवा रोई। और जब रोई तो देखो
1: अब
0: तो
1: एक बात भैया, एक बात।
0: हाँ हाँ, वो
1: कही विदाई से पहले जो पंडित जो है सात बचन कन्या का और सात बचन बर का
0: सुनावत
1: है, वही का भैया ध्यान से सुनना चाहिए।
0: हाँ।

0: जिंदगी भर उनका पालन करे।
1: अच्छा फूफा एक बात और हम तुमसे पूछब भला, कि जैका जो कोई ब्याह कह रहा वही सुने चाहिए कि जितने जने बैठे उनका सबका सुने चाहिए?
0: नहीं नहीं सबका सुने चाहिए।
1: अच्छा
0: हाँ, जी तरह से सप्तपदी में बतावा गवा है वही तरह से जीवन निर्वाह करे चाहिए, यू नहीं के ड्रम्मा डार्क सीमेंट डार।
1: अरे नहीं देखो यो सब जो है ना ही हो, देखो सबका सुने चाहिए सबका माने चाहिए, यही परंपरा यही सारी चीजें हम सबका जोड़ के रखती हैं, एक साथ बनौती हैं, जब प्रेम हुई तो आगे बढ़ी हो।
0: बिल्कुल प्रेम के लिए जरूरी है बच्चा को हुई बचन जो वर कन्या का देते कन्या वर का देते उनका जीवन भर ख्याल रखे चाहिए, हाँ, उनका पालन करे चाहिए।
1: हाँ, यही मारे फूफा छोला मैया जो है वो रायता मिला है कहीं यहाँ पूड़ी के साथ चावल के साथ खावा जाते है और वही के बाद रसगुल्ला खावा जाते है कि चटकारा आवे वही के बाद मीठ मिले और जो है बिहाव के आनंद हो। फूफा हमार जूता के अंदर है ठुमका उमका लगा कहाँ है कहा बताई, लेकिन फूफा तुमका एक हम गाड़ी सुनवाए दे,
0: गाय वाली गाड़ी
1: आओ दादा आओ कौन गाड़ी हम तुमका सुनवा पा।
0: बिल्कुल
1: हाँ, तुम तो मां डरा जाते हो, यही मारे हम जो नहीं बत्ती बत्ती हैं ते भैया लगन ते काहे रान की तीनों कम बिजकाओ, नहीं तो फूफा हमार कहूं बिदक जाए भाग जाए तो फिर बड़ी आफत हो जी भजिए ना।
0: गाड़ी की बात की हो तो हम तो डरा गए कि कहूँ हमका नगरिया
1: नहीं
0: भैया जमाना बड़ा खराब है।
1: नहीं जमाना चाहे जत्ता खराब हो तुम फूफा आओ तुमका भला को गरिया हमारे रात
0: जी जी
1: ले फूफा ले गाना गाना हाँ हचक का सुनो बढ़िया।

0: हाँ बच्चा,
1: गाड़ी नहीं कि रहा है?
0: अरे गुलगुल गुलगुल लागी रही रहा है।
1: पहले तो डरा गए रहो।
0: हाँ वो हम समझे कि तुम गाड़ी सुनावा जा रहे
1: हैं। नहीं दादा,
0: हम कहें अभी उम्र बुढ़ापा में गाड़ी सुने पड़ी।
1: नहीं पुपा, इस बात नहीं है। देखो हमारे जो भैया लोग हैं सब जने आनंद ले रहे हैं बड़ी बड़ी दूर से ने FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर हमका अपन संदेश पठा रहे हैं। और वही के अलावा 10:26:10 हो गए हैं पुपा। तुम फोन बहुत चलावत हो।
0: अरे फोन भैया कहाँ बताई, आ रहा है बार बार कोई का, हमी का साइलेंट किए
1: का कहते हैं।
0: हाँ मगर बुन्नु पुन्नु हो तो हम सुनन थोड़े।
1: हमका हाँ। पता है तुम सुनत नहीं हो।
0: हाँ।
1: अच्छा पुपा एक बात और है।
0: हाँ का?
1: फोन ते हमका पंजन जितनी सुविधा हो गई है अतनी बातें सब पता चल जाती दुनिया भरे हम का हो रहा है कैसे का पैसा। जब तुम फूफा लड़का रहो।
0: हाँ।
1: लड़का रहो कि तुम नहीं रहो ते बड़े भाई।
0: अरे का हम ते बड़े पैदा
1: नहीं हम पैदा हुए बात नहीं करी। हाँ। हम तो तुम कहते है बड़े द्याखा जबते द्याखा।
0: अरे स्वभाव की बात तुम कह रहे हो जाने
1: स्वभाव की बात कह रहे
0: हैं। लेकिन मोबाइल भैया जो तुम कहो तो बड़े काम आसान हो गए हैं। या बात तो सही है कि दुनिया मोबाइल पर आश्रित तो हो गए।
1: हाँ।
0: लेकिन भैया
1: हाँ।
0: उतने मोबाइल खराबो है।
1: हाँ पुपा जो है काम तो बनावत है लेकिन कबो कबो काम बिगाड़ी
0: देती है। कबो कबो नहीं भैया, खुलासा कर दी।
1: अच्छा
0: आजकल बिटेवा जो है महतारी कोई काम धंधा के चक्कर में बच्चन का मोबाइल पकड़ा दी।
1: हाँ,
0: परेशान न करे
1: और चिल्लाए ना।
0: हाँ अब बच्चा मोबाइल में का देख रहा है कौनी रीले देख रहा है भगवान जाने।
1: हाँ भगवान जाने और का उनका खुद नहीं पता।
0: वही से बड़ा दुई प्रभाव बड़े गजब के परत है।
1: का फूफा?
0: एक तो दिमाग कुंद हो जात बच्चन का, दूसरे बच्चा जिद्दी हो जात है। अगर मोबाइल देखे की आदत पड़ गई तो फिर बिना मोबाइल दिखाए वो दूधो न पी है खानो न खाई है।
1: हाँ।
0: समझ लो सब नरक काट दे है।
1: फूफा हम तुमका बताए कि काहे मारे मोबाइल दे देती है पंचे।
0: हाँ,
1: काहे मारे
0: काहे?
1: देखो अगर मोबाइल न दे है तो लड़का चिल्लाई तो और तेज चिल्लाई कि दे नहीं रही तो पड़ोसे जाई आवाज जाई पड़ोसे तो कहिए फलाने के बहुरिया जौन है वह काम लड़का बच्चा संभाल नहीं पावत घर संभाल नहीं पावत हमारे मोबाइल दे देती।
0: हाँ, नहीं, नहीं, नहीं, एक बात और हम बताई भाई।
1: हाँ,
0: हम यह बात नहीं मानी थी भाई। बच्चा जानत कैसे कि मोबाइल का है कहू न कहू दुलारन मा पियारन मा या तुम खुद देख ही रहे हो। माता पिता जो है वो खुद ही देख रहे हैं भीड़े परे हैं मोबाइल में। अम्मा चाय लिए खड़ी हैं ले चाय पी लो ठंडी हो रही हम हाँ पी रहे हैं और फिर मोबाइल में घुस गए। तो लड़का जो है बड़ा सेंसिटिव होती है मतलब बड़ा संवेदनशील होती है। वो का समझत नहीं है कि इमा आखिर उत्सुकता हो पैदा कि का है इमा जो बप्पा घुसे।
1: हाँ का हम देखी बप्पा
0: तो फिर हमहू देखी या जिज्ञासा के अंदर पैदा हो।
1: अरे बप्पा अम्मा तो छोड़ दो दायु बाबा।
0: हाँ तो फिर वो महतारी से मांगे लागे तो महतारी कहे चलो देख ले बहिल जाए फिर उसकी आदत धीरे धीरे पड़ जात। अब और कोनो खुराफात वो घर मां न करे तोड़ फाड़ न करे की वजह से आसान तरीका मोबाइल पकड़ा दो बच्चा मगन है।
1: हाँ, मगन है
0: काम हो रहा है लेकिन वही के दिल और दिमाग पर का असर पड़ रहा है आखिन पर का असर पड़ रहा है यो बाद में पता लगत है।
1: हाँ।
0: लिहाजा हर महतारी बाप से हमार कहाब है कि बच्चन का मोबाइल दे के बहलावे वाला आदत जो उन्हें या छोड़ दो।
1: हाँ बिल्कुल आदत छोड़ना चाहिए। देखो फूफा हमारे झंझटी फूफा हमारे कह रहे हैं कि फोन देखो ऐसा नहीं है कि ना दियो दिखा दियो धीरे में थोड़ी देर जब तुम देखो तिर बहला दियो बहलाव होती है।
0: हाँ, हाँ।
1: लेकिन अगर वही में यहाँ लगन लगवा दो तो भाई बात खराब हो जाती है। और देखो 10:29 हो गए हैं फूफा और एक हम ब्रेक ले आवे छोटा सा।
2: ब्रेक क्या लगता है
3: भाई अब मैच का क्या होगा?
2: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल दुबग्गा हरदोई रोड लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
1: दस बज के 30:25 हो गए हैं भैया। आप सब जने एंजॉय कर रहे हो पुपा?
0: हाँ बच्चा
1: एंजॉय कर रहे हो।
0: एंजॉय मैंने
1: तुम समझ
0: आनंद ले रहे हो
1: सुगंध माटी की और आपके साथ

0: पोपा।
1: हाँ बच्चा।
0: यह रहन तुमका कई सलाह।
1: अरे रहन बिल्कुल जियरा जो है लहा लोट हो।
0: लहा लोट होएगा। हम चाहित रहा है कि हमारा पोपा आई जब तो वही का हम लहा लोट कई के है माना।
1: और बच्चा ये गाना सुन के हमका पुराने जमाने की अपनी बाग याद आई गए।
0: सही बताओ। फिर तो का पूछे का पोपा तुम। हाँ तुम बस मस्त रहो खुश रहो।
1: और ट्रांजिस्टर का जमाना रहे ट्रांसिस्टर है वो लेके बगी हम जाते रहे। हमारे नाना की बाग जो है नहरिया किनारे रहे।
0: अच्छा।
1: मगर भैया एक बात बताई अब जमाना बड़ा बदल गया है। आदमी सिर्फ अपने फायदे की सोचत है और इंसानियत और मानवता और परोपकार और सेवा भाव सब तिरोहित हो गया।
0: नहीं पोपा देखो है तो भाई बात है लेकिन कहूँ कहूँ पर देखो जैस कहा था ना कि अब जैस भैया तुम विचार रखियो जैस आदमी के सामने जइयो वैसे है करियो जैसे तुम हमारा पोपा हो।
1: हाँ।
0: और पोपा तेने हम कही पोपा या बात पोपा वह बात पोपा बराते गए रहे पोपा बग्घित आए पोपा खड़खड़त आए पोपा मार इतर पोपा खुश है। अब पोपा चाहे जो उन काम करा ले पोपा गुजिया लेके आए हो अगले बार।
1: हाँ बिल्कुल लेके आए।
0: और देखो पोपा देखो संदेश आए हैं बहुत सारे। अगर ना पढ़वे तो बहु पंचे ऋषि आ जाइए कही है कि जो है बातें करते हैं और बातें बनावते हैं हमार बातें नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं बिल्कुल बातें कह लियो।
0: विकास भैया संदेश पठाई ने लिखते हैं कि हेलो सर नमस्कार विकास गाँव सली तहसील सफीपुर उन्नाव से हमका लेकिन कार्यक्रम सुन रहे हैं बहुत लाजवाब झक्कास लाग ही रहा और इनके मित्र ब्रजेश सिंह दीपू और

0: अलावा जो है आसिफ भैया फ़ोन करी ने लिखत है कि तो पहले बात लिखते हैं और शेख अल्लाह बख्श मेल करी ने तेलंगाना से ने निजामाबाद से
1: दादा
0: कहा थे फूफा कैया नमस्ते
1: खुश रहो भैया खुश रहो नमस्कार
0: तो कह रहे मजा खूब आ रहा
1: हाँ तो ये तरह प्रोग्राम से जुड़े रहो हमेशा सुनत रहो
0: और अजय कुमार सिंह भैया लिखिन है कि विनय यादव और आपके यहाँ लिखिन है कि झंझटी भैया और आपके चरण स्पर्श और आप जो है बुढ़ा गया फूफा लिख रहे
1: अरे तो अब का जिंदगी भर जवान बने रहा
0: अरे नहीं तो अब जवान हो बोल दो तो कहो बाघ शेर भाग ही जाए का यार लेकिन अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद है और ये जो है सीतापुर से हमका मेल करी ले गौ नहीं बहुत अच्छी लग रही है के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और से साधनगर जिला रंगा रेड्डी हैदराबाद से ने भी जो है हमका मेल करी ने और लिखते हैं कटरा बारा बंकी के ही रह वाले यही हुआ जाते काम करते हैं
1: अच्छा अच्छा
0: रुपेश संघाई भैया जो है मेल करी नहीं है लेकिन ये जो है फरमाइश करी ना रे दादा ये पंचे जो है ना बातें तो खूब सुनती हैं और गौनाई सुनी है कि तारीफ करी है और हमारे सारे 18 घंटे लगातार हमने पंचन साथे जुड़े रहे थे और जरा सी अगर फूफा हमारा पंचन गलती मिल जाए तो तुरंत कहीं देखो तुम जो ना यो ना करे हो
1: यो उनका अधिकार
0: है और लेकिन फूफा जाने हो अगर ये पंचे गलती करे तो हम पंचे कह ही देते हैं
1: हाँ तो
0: बताई थे
1: अभी सब समाज की गलती ही तो हम बतला रहे हैं
0: हाँ और देखो यह जो है तालमेल
1: आपस में संबंध बना थे विकास आवत
0: है तो ये जो है बना रहे बारिश अली खान भैया बड़ी देर से परेशान है मार झकाझक मैसेज करे देते कह रहे फूफा जी का सादर प्रणाम
1: खुश रहो
0: और लिखत का है युसेर आप पर फिट बैठत है कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे
1: वाह
0: है और आगे की लाइन लिखी है वह के खातिर इनका बस धन्यवाद है फूफा और लिखा था सुगंध माटी की बहुत पसंद आ रहा है और तारीफ है लिखी है और कहीं ना कि चलो अच्छा ठीक है आगे जो आप कहे हो इसका आगे ध्यान रखा जाए और फूफा 10:38 हो गए 18 सेकंड हो गए 22:25 बचे हैं तुम चले जाइयो फिर हम मन न लागी
1: अरे हम कहा
0: अरे तुम कहा गाँव में चले जाइयो भाग जाइयो
1: अब गाँव में जेबे तो कहूँ वहाँ दुनिया से थोड़े जा रहे
0: नहीं यार ऐसी बात तो तुम फिर देखो हमका भी तुम हमारा फूफा हो मित्र हो साथी हो फिर ऐसी बातें करो
1: जब याद करी हो तो समझ लो तुम्हारे पास हन तुम्हारे दिल में हन
0: ले गाना सुनो यही बात
1: हाँ, सुनो।
0: फिर का पूछे खाए
1: हाँ।

0: बस बस बस इनौन पंचन का बोला है रहन फूफा
1: हाँ।
0: तो यहू बिल्कुल घमक कहीं जो है बजा रहे हैं गा रहे हैं
1: हाँ, हाँ, वो तो बहुत बढ़िया है वो। लेकिन एक बात है भाई
2: बताओ
1: देखो रंग तो दुनिया में तीन हैं आदमी के
0: अच्छा
1: काला गोरा और गेहुआ
0: अच्छा
1: भगवानों तो हमार करिया रहे हैं
0: करिया रहे हैं
1: कृष्ण कन्हैया का ले लो चाहे राम जी का ले लो
0: हैं
1: सब काले रंग के
0: यह एक बात हमका अटका दे रही बार बार
1: ये तो सबका तो हम दिलवा बसाए हैं और फिर अगर पति काला मिलेगा
0: ओफो
1: तो वही मां अरे उसके गुण देखो उसका व्यवहार देखो
0: हां
1: हां उसके संसार मतलब जो सहयोग देखो
0: हैं
1: और खुश रहो
0: खुश रहो
1: हां करिया कोनो कलंक थोरे है हां
0: करिया बहुत नीक है
1: आओ का कोनो रंग दूसर चढ़ते नहीं
0: दूसर चढ़ते नहीं है फूफा बहुत सही बात बताए आप और दूसर बात है फूफा कि जो है आप कहते हो कि हम पंचे जब पहले बगिया में यहाँ बैठित रहे अंबिया खाइत रहे और अगर को निकल जाए तो वह बैठा ही लेते रहे
1: हम यो कहित रहे कि आजकल जमाना ऐसा खराब होएगा है कि आदमी के व्यवहार में फर्क आ गया है नाना के जमाने में रहे नहरिया किनारे भाग रहे और हुआ बिया इकट्ठा करके एक पानी बाल्टी में डाल के रखित रहे खातो रहन
0: खातो रहो
1: और अगर कोई पगडंडी से निकला मान लो दूसरे गांव जा रहा तो आवाज दे के नाना होर बुला लेते रहा आए हो पाहोन
0: फलाने
1: कहाँ जा रहे हो कहीं नरौना जा रहे अरे कहीं निकलिया थोड़ी देर सहता ले छाम बैठ जाओ है खटवाला परा रहत रहे ऊपर बैठा ली दुचारी आम खा लो पाहुन दुलार के साथ
0: दुलार के
1: मनुहार के साथ
0: मनुहार
1: उनका द्विचार याम खवाए के जुड़वाए के और तब विदा करते रहे
0: तब विदा करते रहे
1: आजकल आदमी का स्वभाव विचार बदल गया असल बात आदमी व्यवसायिक होएगा अब कौनो बाग के किनारे खड़े हो के और पेड़ पे लगे आम की तरफ देख भर ले आगे बढ़ाओ
0: आगे बढ़ाओ
1: तो फर्क आ
0: पोपा अगर कहूँ तुम्हारी आवाज में यहाँ बोल दी है तो वो वही न करी पूरे सीजन भर दिखाई न करी जब तक अमिया रही तब तक वो दिखाई
1: नहीं बच्चा इनका
0: अरे लकड़ बग्घा लई हो लेकिन पोपा जो है तो जो बात बता रहे हो आप देखो अब दूसर बात यह है ना कि

0: जमीन के लगे अब समय नहीं, कहीं हमका दयार हो रही को बैठे तुम्हारे लगे हैं। तुम वही पुरानी बातें बताई हो हमका।
1: वाह है।
0: अच्छा पुपा, या गाँव नहीं पानी बरसी रहा है तो हम सोचे तुमका जो है बढ़िया आयाक झमक कहीं यहाँ कुछ सुना दी।
1: झमाझम सुनाओ।
0: हाँ झमाझम
1: तो मौके की बात है।
0: यहू लोग जो है बजाय खूब आनंद ले रहे हैं।
1: हाँ
0: सब जने।
1: हाँ।

0: फूफा।
1: वाह भाई वाह,
0: मजा आवा।
1: अरे
0: अरे फिर पूछे का है फूफा, देखो संदेश आए हैं खूब सारे। पढ़ लेने तो पंचरी आ जाती मुंह बना कहा कहीं कि फिर नहीं जो है ऐसा नहीं बस
1: बिल्कुल।
0: प्रजय सिंह भैया संदेश पठाई ने कैसरगंज बहराइत थे, राम राम करत है आपका राजा भैया और हमका, कहते हैं कि सब गाना इनका अच्छा लाग रहे हैं और फरमाइश करीन है, तो ठीक है भैया।

0: देखा जाए अगले बार। और अरुण कुमार भैया का मेल है, लिखते हैं अरुण कुमार कुशवाहा घमोइया हरदोई से, विनय जी और झंझटी भैया जी का प्यार, हमारा प्यार भरा नमस्कार, और प्रोग्राम इनका अच्छा लग रहा है, और कहते हैं कि शिकायत करें कि जो है पहले नहीं सुनाई पड़ रहा है, और जब ते झंझटी भैया बोले हैं तब ते झमक का आवाज आ रही है इनका हुआ भैया। और गुलबसा सिद्दीकी मेल करीने लिखती है, नमस्ते राजा भैया और विनय भैया, और हम गुलाबसा सिद्दीकी संडीला से लिखी है, कहे आए हाय का बताऊ, कार्यक्रम बहुत नीक लागत है और बहुत हंसी आ रही है।
1: वाह वाह
0: भूपा, हंसी तो आ रही है लेकिन हम गुलाबसा बहनी के यहाँ बता दो कि फूफा हमारा बोल रहा तब तो हंसी आई नहीं, और कहू फूफा देख लो तो बहुत हंसी आई। यह है प्रेम है फूफा, यह है प्रेम है जो बनाए है। सुरेंद्र सिंह मेल के लिए, दुख और परिश्रम मानव जीवन खातिर अत्यंत आवश्यक है, और बहुत सारी बातें लिखी है। और सुरेंद्र सिंह अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ, मूल निवासी तिलवारी तहसील रामनगर बाराबंकी से, और अवधि भाषा बहुत अच्छी लग रही है इनका, बहुत बहुत शुभकामनाएं लिखी है। तेज बहादुर भैया मैसेज करीन है, लिखते हैं कि विनय भैया और राम राम फूफा यानी झंझटी भैया के सादा चरण स्पर्श।
1: खुश रहो भैया, खुश रहो।
0: कैसे हैं फूफा पूछ रही तुम?
1: बिल्कुल ठीक हैं, एकदम हट्टा कट्टा।
0: हट्टा कट्टा है और बड़ी नीक नीक सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं, आनंद आ रहा है। और गवने इनका अच्छी लग रही है। तेज बहादुर यादव ममता गाँव मऊ शरकी जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, और अभी कह रहे हैं कि हम हरियाणा सुन रहे हैं।
1: अरे वाह।
0: और एक जने जो है मेल करी ने सुगंध माटी के नाम, अपन अनिल कुमार दीक्षित भैया है, लिखते हैं बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, बढ़िया लग रहा है, सोहर सुनवा दियो।
1: चलो कोने मौके सोहरो सुनवा दिया जाए।
0: सोहर सुनवा दीन जाए। देखो एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड हमका जो है मैसेज करी इंद्रपाल मिश्रा भैया का, लेकर आपकी फूफा तुम्हार मीठी बोली कारण कार्यक्रम बहुत नीक लाग रहे। अमृता महोली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा भैया,
1: धन्यवाद भैया।
0: आकाश कुमार भैया का कह रहे कि विनय भैया प्यार प्यारे फूफा, देखो तुम सबके प्यारे हो गए फूफा। आकाश वर्मा गांव मुरारपुर रेलवे स्टेशन दरियाबाद जिला बाराबंकी से संदेश करीन है, और लिखते हैं आप दोनों की बातचीत बहुत नीक लाग रही, बहुत बढ़िया लाग रही है। और कहते हैं कि अनुरोध करें कि फूफा जल्दी जल्दी आवा करो, पर सत्य में यहाँ परेशान ना हुआ कि मार देर कई दिन करी हो उसका।
1: नहीं नहीं नहीं आई भाई।
0: आई हो?
1: हाँ बिल्कुल आई भाई।
0: अंगूठा धरो यहाँ।
1: हाँ अंगूठा का धरी भाई, जब याद करी हो तो आई भाई।

0: फूफा।
1: हाँ बच्चा।
0: कहा कह रही है कि जो है खवाओ पियाओ बढ़िया और जो है आनंद है आनंद।
1: हाँ तो आनंद हो करी।
0: हाँ 10:56 का समय हो चुका है और फूफा जो है
1: हाँ।
0: अब धीरे धीरे किनारा कह रहे हैं कन्नी काट रहे हैं घुरिया रहे हैं।
1: देखो एक चीज बता दो श्रोता लोगन का
0: का
1: कि पानी झमाझम बरस रहा है धान की रुपाई का समय आ गया है।
0: हाँ, और देखो देर न करे
1: और एक बात और हमारा संदेश है कि जैसे हो सके जितना हो सके जल संचयन करें।
0: या बात
1: पानी का रोके की कोशिश करें जिसके पास जौन साधन है वही साधन में है ना। कहे से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने का जो संदेश
0: हाँ उनका संदेश तो हाँ, बड़ा भारी है
1: हाँ,
0: और पुपा देखो संदेश और आए हैं। मोनू सेठ भैया कहते हैं कि राम राम कैसन है आप उम्मीद बानी बहुत नीक हुई है। पुपा तो मां नीक आई है आपका और जो है आगे बात लेकिन है उसके अलावा अजय वर्मा भैया जो है हमका संदेश पठाइन है लेकिन जो बात कह रहे हैं का बताइए हम
1: कहा
0: अरे बस कहा थे
1: गाना सुना
0: तो पूपा।
1: हाँ बच्चा
0: हम तो चाहते हैं तुम रहती हो वे रोटी वोटी खा कर जाती हो।
1: अरे नहीं बच्चा गांव में सब काम पड़ा अब तुम बताओ कि धान की रोपाई चल रही है।
0: हाँ लेकिन
1: तो वह तो हमका देखे है
0: नहीं ठीक
1: हम फिर अब
0: अच्छा आयो
1: जब याद करी होता भाई
0: फिर अंगूठा धरो।
1: अरे लियो धर दिया
0: हाँ, हाँ, तो पंच भैया जो जितने हमारे भैया लोग सुन रहे हैं तो हमारे जो फूफा है झंझटी भैया ये जा रहे हैं लेकिन हम अब एक घंटा और रुका।
1: अच्छा भैया तो सब श्रोता जलन का राम राम धन्यवाद।
0: दस बज के 58 और 48 सेकेंड 50 सेकेंड हो चुके हैं और भैया अब 11 बज के यानी समाचार के बाद आए थे और आपके संदेश गीत हमार लेके

758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अब प्रदेश के सभी चीनी मिलें किसानों को केवल प्रमाणित और गुणवत्ता परीक्षण से गुजरे उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व और कीटनाशक ही उपलब्ध करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त मिनिस्टी एस ने इस संबंध में प्रदेश की सभी चीनी मिलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक बैच के कृषि निवेश की गुणवत्ता की जाँच NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराना अनिवार्य होगा। निर्देश में स्पष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कीटनाशकों का वितरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। इस दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी किसान को उसकी मांग और स्पष्ट सहमति के बिना कोई कृषि निवेश उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया द्वारा आयोजित वाइल्ड विजडम ग्लोबल चैलेंज 2026 के माध्यम से कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को समुद्री जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय चुनौतियों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने सभी जिलों को 15 अगस्त तक के अधिकतम पात्र विद्यार्थियों को पंजीकरण सुनिश्चित कराने और प्रतियोगिता में व्यापक सहभागिता कराने के निर्देश दिए हैं। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, प्रकृति संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। नार्वे की राजदूत एलिन स्टेनर ने कल अमरोहा के गांव सियाली जागीर में बच्चों के निःशुल्क पुस्तकालय की शुरुआत की। इस मौके पर उन्हें 7 न्यायाधीश प्रदर्शनी भी मौजूद रहीं। उद्घाटन के दौरान नार्वे की राजदूत ने कहा कि ज्ञान की ताकत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। न्यायाधीश की प्रदर्शनी ने बच्चों से प्रेरित करते हुए कहा कि किताबें हमें दुनिया को देखने और समझने का एक नज़रिया देती हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, 11 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और कुशीनगर जिले को 1,283 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। श्री योगी कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वो कार्यक्रम स्थल के पास विकास प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री गोरखपुर में 4-लेन सड़क सहित करीब

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

हाँ जी फ्रेंड्स, 11:06 और पूरे 7 सेकंड्स का वक्त प्रोग्राम शुरू हो चुका है। संदेश आपके गीत हमारे, जहाँ पर मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त विनय यादव, और जो सॉन्ग आप सुन रहे हैं ना, कुछ ऐसा ही मोड रहने वाला है पूरे एक घंटे आपके लिए आपके रेडियो सेट पर। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात हमसे कह सकते हैं, और 0522 2238852 और 2238845 ये हमारे वो नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: जी 11:10 और पूरे 18 सेकंड्स का वक्त हो चला है। आप हमारे साथ हैं प्रोग्राम संदेश आपके और गीत हमारे, और इसी कड़ी में हमारे साथ फोन लाइन पर कोई आ चुका है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो बस यही थोड़ा सा एक हेलो जी, क्या नाम है आपका? साहिबा अंसारी जी, जिला लखीमपुर खीरी से बोल रही हैं। क्या संदेश है आपका?

0: जैसे कि फिर बच्चों को अपने बारिश में भेज देते हैं सामान लेने के लिए, तो सर उनको पॉलिथीन इस्तेमाल ना करने को दे और उनको घर से थैला दे, जबकि सामान ना तो गिराए सेम कर लेके आए और खुद भी सेम उनको छाता भी दे।
1: भाई बात तो बहुत सही कह रही है, लेकिन आवाज़ आपकी बहुत धीमी से आ रही
0: है। आवाज़ हमारे रेडियो पे नहीं आ रही
1: है। मेरी आवाज़ आपके रेडियो पे नहीं आ रही है? तो आप अगर मेरी आवाज़ फ़ोन पर सुन रही हैं तो आपको रेडियो पर कैसे आवाज़ आएगी मेरी?
0: नहीं तो सर आती तो है, सारे आरजे की आती है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही
1: है। अभी बिल्कुल नहीं आ रही है? अच्छा चलिए मैं चेक करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपसे बात हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।

0: 11:16 का वक्त हो चला है। आप इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, और आप हमें अपने पैगाम, अपने मैसेजेस, अपने दिल की बात हम तक भेज रहे हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। और मैं हूँ आपके साथ आज आपका दोस्त विनय यादव। बहुत सारे मेल्स हम तक पहुँचे हैं, चलिए देख लेते हैं। और इसी में वारिस अली खान साहब लिखते हैं कि विनय भाई आदाब जी, आदाब। वक्त सिखा देता है जीने का हुनर, फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर, क्या हाथ की लकीर है। उसके बाद मेल है, और इन्होंने लिखा है, नरगिस जी ने लिखा है संडीला से, और लिखते हैं हरदोई से मैं मेल कर रही हूँ संडीला, और संदेश देना चाहूँगी कि बारिश के मौसम में अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि मौसम जितना अच्छा लगता है उतनी ही बीमारियां भी लाता है। देखिए नरगिस जी, बारिश हो या गर्मी हो या जाड़ा हो, अपना और अपनों का ख्याल तो हमेशा आपको रखना चाहिए। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम कॉल लेते हैं और बात करते हैं कि हमारे साथ फोन लाइन पर कोई मौजूद है। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ थोड़ा तेज़, आप बोलेंगे तो बहुत अच्छी आवाज़ आएगी आपकी। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अच्छा, कहने का मतलब है कि लाइट को बचाना चाहिए, है ना?
1: कि,
0: हाँ
2: हाँ सर जी, नमस्कार।
0: सब कहीं बज रहा है, सब कहीं बज रहा है। जी जी जी जी, चलिए आपके यहाँ आवाज़ नहीं आ रही है, तो जल्दी ही कोशिश होगी कि आपके यहाँ आवाज़ पहुँचे। 11:18:58 का वक्त, आप इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, और अगला ट्रैक आपके लिए आपके रेडियो सेट पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: 11:23 और 12 सेकंड का वक्त, आप एंजॉय करें प्रोग्राम संदेश, आपके गीत हमारे, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विनय यादव। और बहुत सारे मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं। गुलाब शाह जी क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि विनय भाई आपकी और प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा लग रहा है, और रेडियो पर थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसे हमारी जो टीम है ना वो बहुत जल्दी सुधार देंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। विजयपाल जी ने मेल किया है और नमस्ते जी, नमस्ते, और लिखते हैं आज का संदेश यह है कि बरसात के पानी को लेकर आपस में विवाद ना करें। बरसात के पानी को लेकर बारिश कुछ दिन की है और रहना काफ़ी दिन है, ऐसा अक्सर गांवों में देखने को अधिक मिलता है। और ललहौवा ज़िला खीरी से इन्होंने मेल किया है, बहुत अच्छा मैसेज है आपका। चलिए अब कॉल की तरफ देखते हैं, क्योंकि फ़ोन लाइन पर बहुत देर से हमारा कोई वेट कर रहा है। हेलो, जी देखिए ना शायद, हेलो हेलो हेलो अभी से हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, और कोई था हमारे साथ बहुत ही अच्छी सी आवाज़ के साथ में, उनसे बात करना था मैं, लेकिन वो चले गए। वकील अहमद जी का मेल है, गुड मॉर्निंग लिखते हैं और बहुत सारी बातें लिखी हैं। संदेश ये लिखा है, बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, बारिश होने से मौसम अच्छा हो गया है। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथौरी, ज़िला सीतापुर से, और लिखते हैं कि पेड़ लेकर आए हैं और लगाने जा रहे हैं।

0: Dumped is a BBC Sport production for the BBC World Service in association with ABC and Akashvani.
1: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है
2: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो
4: 11:48 और 12 सेकंड्स का वक्त प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त विनय यादव और फोन लाइन पर हमारे साथ कोई मौजूद है उनसे बात करते हैं क्या संदेश लेकर आए हैं हमारे लिए हेलो
5: हेलो सर नमस्ते
4: जी नमस्कार क्या नाम है आपका
5: जी सर हमारा नाम अल्तमस
4: क्या नाम बताया आपने
5: अल्तमस
4: अल्तमस जी कहाँ से फोन किया है आपने हमें
5: लखीमपुर खीरी
4: से अल्तमस जी क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे लिसनर्स को
5: सर हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि जैसे कोई भी फैसला लो तो समझ लो आजकल बहुत जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं तो उनसे तो तकलीफ हो सकती है कुछ भी गलतियाँ होती है तो कोई भी फैसला लो तो जल्दबाजी
4: किसी भी काम को करते हुए जल्दबाजी ना करें ये आप कह रहे हैं
5: जी सर
4: आज खाना नहीं खाया क्या आपने
5: नहीं खाना था
4: था। चलिए कोई बात नहीं अभी फिर से खा लीजिएगा और तब जब आप हमें फोन करिएगा ना शाम को हमारा जो फोन इन होता है तो जबरदस्त आवाज में बात करिएगा ना बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी
5: जी सर हम नाम भी लेना चाहते
4: हैं हाँ जल्दी से नाम ले लीजिए जी अल्तमस बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए 11:49:37 का वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे

0: रेन बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: ग्यारह बज के 54 मिनट और 18 सेकंड्स का वक्त, संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं और जल्दी से मेल ले लेते हैं। गुलफशा सिद्दीकी जी ने मेल किया है, क्या लिखती है कि विनय भाई आपकी आवाज़ बिल्कुल सही है, सही मिल रही है रेडियो पर, कोई दिक्कत नहीं है और हम सब प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, यही मेरा संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। और महेंद्र जी ने मेल किया है, लिखते हैं महेंद्र देवन गाँव रूड़ ज़िला नागौर राजस्थान से और कहते हैं कि सभी श्रोताओं को एक छोटा सा संदेश है कि बारिश के इस मौसम में अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, रास्ते में पानी भरा हो, बिजली के खंभों से, खुले तारों से दूर रहें।

0: करता हूँ
1: आजी दिल का क्या कसूर है। 11:55 और 10 सेकंड्स का वक्त है और ये वक्त मुझसे कहता है कि अब मुझे आपसे अलविदा कहना है। तो चलते चलते बस मेरा संदेश आपसे यही है कि प्लीज़ अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। किसी और दिन आपसे मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाज़त अपने दोस्त विनय यादव को। बाय बाय।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर में इस अवसर पर आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने भरोसा दिलाया है कि मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चढ़ावे में अनियमितता जैसी घटना दोबारा नहीं होगी। मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने के लिए कल अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है। श्री मिश्र ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का काम 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। बाउंड्री वॉल का निर्माण भी 30 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्धि समाज का आधार है। माफी चाहेंगे, जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। उन्होंने प्रदेशवासियों से विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या संतुलन और परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। प्रदेश भर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत आज से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों समेत अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। इसके अलावा बीमार व रोगों के लक्षण मिलने पर इसकी सूचना सीएचसी पीएचसी पर देकर जांच कराएंगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही कई अन्य विभागों का सहयोग भी लिया जा रहा है। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला

पेयजल और स्वच्छता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने और आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को योजनाओं के नियमित मॉनिटरिंग और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा, तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

नमस्कार आदाब। 100.7 FM रेनबो पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है आपकी होस्ट फातिमा। वक्त हो गया आपको फटाफट वक्त बताने का, 12:05 और कुछ सेकंड्स हमारे स्टूडियो की कुकू क्लॉक में ये टाइम है। जी हाँ, आज शनिवार का दिन है तो ये टाइम है फैमिली फन का, राइट। वैसे शनिवार हो या फिर रविवार हो, ये दोनों दिन जो होते हैं ना, बड़ा फैमिली से कनेक्टिविटी बढ़ाने के दिन होते हैं और बड़ा मज़ा भी आता है जब आप फैमिली के साथ होते हैं ना। कभी अप सोते, कभी डाउन होते, कभी किसी छोटी मोटी बात पे नोकझोंक होती, कभी कभी बड़ी बड़ी बातों पर भी नोकझोंक हो जाती है, और उसके बाद रूठना मनाना सब चलता रहता है। बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट है, माता पिता है, पति पत्नी है, रिलेटिव्स कभी आते हैं आपके घर, कभी आप जाते हैं उनके घर, तो बहुत सारी यादें बना लेते हैं हम अपने बिजी शेड्यूल में भी। हम बहुत सारी यादें बनाते हैं और अल्टीमेटली जब काफ़ी वक्त गुजर जाता है तो यही यादें जो मेमोरीज का रूप लेती हैं और हम इन्हें किस्से कहानियों के तौर पर अपने जो भी बच्चे होते हैं या ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, बड़ा मज़ा आता है और लगता है कि वक्त कैसे गुजर गया, मतलब इतने साल हो गए, ऐसा हुआ था, कैसे हमने उसे डील किया था। कई सारे सवाल आते हैं जिनके जवाब हम खुद को मुस्कुरा के देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं, बस मुस्कुराहट आती है चेहरे पे और फिर हम बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करने लगते हैं, राइट। पूरी साइकिल है ये। आज प्रोग्राम में क्या कुछ होने वाला है ख़ास, आपको वो ज़रूर बताऊँगी, लेकिन उससे पहले एक पॉजिटिव नोट जिस पर आगाज़ करूँगी आज इस प्रोग्राम का, और वो ये है कि भाई

आज ऐसी स्टूडियो आते वक्त एक बात पर गौर किया मैंने कि जब कभी भी हम रोड पर चलते हैं, चाहे वो पैदल चल रहे हो या किसी व्हीकल से चल रहे हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, किसी भी तरीके के व्हीकल से हम चल रहे हो, तो रोड में दो तरफ से लोगों के आवागमन का इंतज़ाम रहता है। एक तरफ से लोग आ रहे होते हैं, एक तरफ से लोग जा रहे होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जिस साइड से लोग आ रहे होते हैं उसके ऑपोजिट साइड पर बिल्कुल भीड़ नहीं होती, बिल्कुल सन्नाटा होता है, तो जो आने वाले लोग होते हैं ना वो उस साइड को भी अपना ही साइड समझने लगते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई आ जाता है तब तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भैया अपनी लेन में सफ़र करिए, अपनी लेन में ड्राइव करिए, ताकि ना आपको असुविधा का सामना करना पड़े और अचानक से अगर कोई आ जाता है ऑपोजिट लेन पर तो उसे भी किसी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो बस इसी नोट पर आगाज़ करेंगे इस प्रोग्राम का, इस बेहतरीन से ट्रैक के साथ। आज इस मौके पर ये ट्रैक बिल्कुल बनता है जनाब, और काफ़ी वक्त से सुना भी नहीं था आपके साथ मिलके, तो इसे इंजॉय करेंगे। उसके बाद ढेर सारी बातें, ढेर सारी गुफ्तगु हम करेंगे आपके साथ मिलके। स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: ऑलराइट, 12:12 का वक्त हो गया है और बगैर टाइम वेस्ट किए आज प्रोग्राम फैमिली फन में हम आपसे जानना चाहते हैं भाई, हमारे साथ साझा करिए अपने अपनी जो यादें हैं किचन के साथ. जी हाँ, आप जब पहली बार किचन में कुछ बनाने गए, आपने रसोई में कदम रखा, तो उस वक्त काफ़ी सारे मिक्स्ड इमोशंस होते हैं ना, कि अब लगता है कि पता नहीं कैसा बनेगा, कैसा बना पाएंगे नहीं, घबराहट सी होती है. मतलब जब ऑफिशियली आपने कोई बेहतरीन सी चीज़ बनाई हो या बेहतरीन ना भी टर्न आउट हुई हो वो, लेकिन एक नीयत से आप गए, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें आप अपने इनपुट्स दीजिए. हमारा मेल एड्रेस है fmakashwani@gmail.com. देखिए, फैमिली का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होता है जो कभी रसोई में कदम ना रखे. हर कोई रसोई में कदम रखता है कुछ ना कुछ बनाने के लिए. कभी फायरलेस कुकिंग होती है, कभी उसमें फायर इंक्लूडेड होती है, यानी कभी आप गैस पे स्टोव पे बर्तन रख के पकाते हैं, और कभी जो प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है उसको किसी बर्तन में किसी बोल में मिक्स करके कुछ बनाते हैं. तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो सिर्फ महिलाओं तक ही कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, वो सीमित नहीं है महिलाओं तक, तो इसमें सभी लोग शामिल होते हैं. तो फैमिली के जितने लोग इस वक्त प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं ना, उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे साथ साझा करिए fmakashwani@gmail.com पर अपनी ये यादें. जब तक एक छोटा सा लेंगे हम कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद आपके जो जितने भी आपके मेमोरीज हैं ना, ये हम ऑन एयर करेंगे अपने सभी लिसनर्स के साथ. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है.
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं. RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो.
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाए.
4: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं. इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है.
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिया के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत. RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेलिए माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

लेकिन हाँ, इस मौसम में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है अगर आप बाहर निकल रहे हैं किसी भी काम से, और आपको टाइम ड्यूरेशन पता है कि आप 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए भी जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपना पानी ही अपने साथ कैरी करिए। हो सके तो जो बाहर का खाना है उसे अवॉइड करिए, घर से ही अपने लिए कुछ स्नैक्स बना के ले जाइए या कुछ बना के रख लीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और क्योंकि इस मौसम में बड़ी तेज़ी से इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर्स का भी ये मानना है, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस मौसम में हमें थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। मौसम एंजॉय करने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हाँ, अपनी हेल्थ के साथ हमें कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, है ना। ओके, जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू कर रहे थे उस टॉपिक पर वापस आ जाते हैं, और अनिल कुमार जी का हमारे पास मेल आ गया है बदायूं से। हम बिल्कुल ठीक हैं अनिल जी, और उम्मीद करते हैं आप भी बिल्कुल भले चंगे होंगे। इन्होंने लिखा है, एक बार घर के सभी सदस्य बाहर चले गए थे तो हमने खिचड़ी पकाई और नमक और सर्फ का डिब्बा एक जैसा था। गलती से सर्फ हमने डाल दिया और बाद में हमें उसका स्वाद समझ नहीं आ रहा था। स्वाद समझ नहीं आ रहा था, ये तो एक बात हमें समझ में आती है, लेकिन हाँ, ये जो कन्फ्यूजन होता है ना, जो कभी किचन में नहीं जाता है, नमक शक्कर, नमक और सर्फ वाला जो है ना, थोड़ा सा है। अब आपने एक्सपीरियंस किया है तो भाई होगा ही, खैर मज़ा बड़ा आया होगा। बाकी घर के सदस्य जब वापस आए होंगे, उन्हें पता चला होगा तो बड़ी हंसी टिटोली हुई होगी। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास ईमेल आया है, किसका? पारुल का मेल आया है लखनऊ से। इन्होंने लिखा है कि हम जब पहली बार हलवा बनाने गए, अच्छा ससुराल के आए, इन्होंने इंसिडेंट्स लिखा है, जब हम पहली बार अपने ससुराल की रसोई में हलवा बनाने गए तो उस वक्त अंदर एंटर करने से पहले ही मेरा हाथ कांपना शुरू हो चुका था, और बैकग्राउंड में मेरी सासू माँ और ननद की जो पहली पैनी नज़रें थी ना, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नर्वस कर रही थी। और उसी नर्वसनेस के चक्कर में मैंने जब हलवा बनाया तो हलवे में थोड़ा सा चीनी कम हो गई, और उसके बाद मैंने उसे बड़े खूबसूरती से परोसा, सब लोगों ने खा लिया, लेकिन हाँ, थोड़ी सी आलोचना का सामना मुझे करना पड़ा थोड़ा सा। इन्होंने लिखा है कि टोका मुझे मेरी सासू माँ ने। ओके, ठीक है, लेकिन हाँ, आपके लिए याददाश्त यादगार ये एक लम्हा बन गया, आपकी याददाश्त एकदम फिट हो गया। राइट, ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास एक मेल आया है, और ये मेल आया है हमारे पास विनय का। इन्होंने हमें बाराबंकी से मेल किया। इन्होंने लिखा है, एक बार मेरी पत्नी सारा खाना बना करके कहीं बाहर चली गई, और उस दिन मेरे दो दोस्तों को घर पे आना था, उनका जाना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने उनसे कहा आप चावल मत बनाइए, चावल मैं खुद बना लूँगा, बाकी खाना आप बना के रख दीजिए। ओके, जब मैं चावल बनाने किचन में गया तो मैंने सोचा कि चावल बनाना कौन सा बड़ा काम है मुश्किल का। इन्होंने 3 लोगों के लिए जब चावल बनाया तो जब वो पक के तैयार हुआ तो ऐसा लग रहा था कि 2-3 आसपास के जो घर है ना, उनके यहाँ भी अगर बांट देते तो ख़त्म ना होता। मतलब कहीं ना कहीं जो मापने का एक्सपीरियंस है ना, कितना चावल कितनी लोगों में बनेगा, वो गड़बड़ा गया। चलिए कोई नहीं, लेकिन हाँ, एक मेल में, नेक्स्ट मेल में ये ज़रूर बताइएगा विनय जी कि बकिया चावल का हुआ क्या था, बांध करके अपने दोस्तों को दिया था आपने, या फिर उसके बाद उसकी एक नई डिश बनी थी? क्योंकि अमूमन हम लोग घरों में ऐसे ही करते हैं। 12:38 का वक्त है, और वक्त हो गया एक और बेहतरीन से ट्रैक को आप तक पहुंचाने का। रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।

देखिए भाई, मॉनसून सीजन चल रहा है और बारिश झमाझम जहाँ मतलब दिल चाहता है वहाँ बरसने लगते हैं बादल। बड़ा अच्छा सा मौसम तो है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

ऑलराइट, 12:48 का वक्त हमारी स्टूडियो की कोको क्लॉक में, और इधर हमारे पास मेल्स का जो सिलसिला है ना वो जारी है। रोशनी रावत जी नमस्कार, हम बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल बढ़िया होंगी। आपने हमें सफीपुर जिला उन्नाव से मेल किया है। अच्छा, यहाँ की रहने वाली हैं और चंडीगढ़ में इस वक्त ये प्रोग्राम एंजॉय कर रही हैं। ऑल राइट, इन्होंने लिखा है, एक बार की बात है, मैंने खाने में तहरी बनाई थी और सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जब खाने को बैठे तो उसमें नमक ही नहीं था, फिर क्या। फिर इन्होंने ढेर सारी इमोजीज हमें लगा के भेज दिए हैं जो स्माइल कर रही है। हम समझ सकते हैं वो पॉइंट इन टाइम आपके लिए कैसा

रहा होगा और बाकी लोग जो वहाँ मौजूद होंगे उस दस्तरखान पे कि भाई हाँ चलो खाना खाने का टाइम आ गया और आज रोशनी जी ने बनाई है तहरी। ऑलराइट, गुलफशा सिद्दीकी जी का मेल हमारे पास आया है संडीला से। वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगी। आपने लिखा है, मैं आपको क्या बताऊँ। अरे आपको बस इतना बताना है कि जब पहली बार आप रसोई में गई और उसके बाद आपने वहाँ पे कुछ खाना बनाने को ट्राई किया तो वो अल्टीमेट आउटपुट क्या निकला और लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, बस यही बताना है आपको। अच्छा, इन्होंने बता दिया है आगे। एक बार की बात है, मेरी अम्मी नानी के घर गई थी, मैंने भिंडी पकाई तो मैंने उसमें पानी डाल दिया। ओ हो हो हो हो, फिर क्या हुआ, हम सब भूखे रहे, मुझे आज भी याद है पानी वाली भिंडी। सही बात है, अगर भिंडी में आप सूखी भिंडी बना रहे हो उसमें पानी डाल दें तो क्या होगा। और जब हम शुरू शुरू में एक्सपीरियंस करते हैं ना इस तरीके के जो चैलेंजेस होते हैं तो उस टाइम पर तो हम उसको किसी तरीके से उसका डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन जब हम प्रोफेशनल हो जाते हैं तो डैमेज कंट्रोल वाली जो एक ट्रेट होती है, एक स्किल होती है ना, वो हम सब में डेवलप हो जाती है। ऑलराइट, मास्टर परवेज जी का मेल हमारे पास आया है। इन्होंने मैं उत्तर प्रदेश से मेल किया है और इन्होंने सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की। ओह परवेज जी, ये सॉन्ग सुनने वाला प्रोग्राम नहीं है, हालांकि आपने मेल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कभी आपने रसोई में प्रवेश किया हो खाना बनाने के लिए और कुछ बनाया हो, उसके बाद उसका क्या आउटकम था और लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। आज प्रोग्राम फैमिली फन में हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। तो बस जब तक मैं इंतज़ार कर रही हूँ कुछ और ईमेल्स का, आप तक पहुँचाऊँगी ये बेहतरीन सा ट्रैक। रहिए कनेक्ट।

ऑलराइट, 12:56 का वक्त हो गया है, ऑलमोस्ट प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ गया, लेकिन चलते चलते हम कुछ मेल्स ज़रूर शामिल करना चाह रहे हैं. ऑलराइट, गुड आफ्टरनून मैम, आई एम शालिनी चौरसिया फ्रॉम बालागंज लखनऊ. गुड आफ्टरनून, इन्होंने लिखा है, पहली बार मैं गलती से किचन में गई तो मैंने दाल के फरे बनाए और उसमें दूध डाल दिया. आज भी जब याद करती हूँ तो बहुत हंसी आती है और बड़ा मजाक भी बनाया जाता है. इन्होंने लिखा है, आई एम अ वर्किंग वुमेन, तो आज भी नमक तो मैं अक्सर भूल जाती हूँ. अरे मतलब चलिए कोई नहीं, लेकिन हाँ, आपने पहली बार किचन में आप गई और आपने बनाने के लिए जो सिलेक्ट किया वो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, दाल के फरे. हर किसी की बस की बात नहीं है भाई दाल के फरे बनाना. निधि जी, फिलहाल आपने मेल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ऑल राइट, नेक्स्ट मेल फटाफट मैं एक और शामिल कर लेती हूँ. और ये मेल है किसका जी, ये राजेश जी का मेल है लखनऊ से. इन्होंने लिखा है, इंटरनेट पे मैंने एक रेसिपी देखी थी पास्ता बनाने की, मैंने उसे बनाने की कोशिश की लेकिन आखिर में वो कुछ और ही अजीब सी चीज़ बन गई. हाँ, आई अग्री कि आप इंटरनेट पे या यूट्यूब पे या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं ना, तो उसमें बड़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है. तो थैंक यू सो मच सभी लिसनर्स का, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया और अपनी जो मेमोरीज़ हैं वो हमारे साथ साझा की और हमें बताया और हमें भी मौका दिया कि हम भी उसमें शामिल हो सके. फ़िलहाल वक्त हो गया है इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करने का, इस वादे के साथ कि एक छोटे से म्यूज़िकल और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे. टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, उपकरण और प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है, साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन को भी बेहतर बनाया है। श्री योगी ने कहा कि आज कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में प्रदेशव्यापी पौधारोपण महाअभियान में शामिल होंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के किनारे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। इस महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार ने इस बार 35 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य तय किया है। पौधारोपण अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस अभियान में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 20 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। विभाग से जुड़े लगभग 50 लाख विद्यार्थियों, 24 राज्य विद्यालयों, 56 निजी विश्वविद्यालयों तथा लगभग 8,000 महाविद्यालयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अब प्रदेश के सभी चीनी मिले किसानों को केवल प्रमाणित और गुणवत्ता प्रशिक्षण से गुजरे उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व और कीटनाशक ही उपलब्ध करा सकेंगी। उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस ने इस संबंध में प्रदेश की सभी चीनी मिलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक बैच के कृषि निवेश की गुणवत्ता की जांच NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराना अनिवार्य होगा। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कीटनाशकों का वितरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। अगर कोई चीनी मिल किसानों की सहमति के बिना या घटिया कृषि निवेश वितरित करती पाई गई तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आज से शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी 4 अगस्त रात 12 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की मांग के अनुरूप आधुनिक बनाया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

1:04 का वक्त और आप सबका खैर मकदम। एक बार फिर से करती है आपकी होस्ट फातिमा और अगले एक घंटे हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। क्या है टॉपिक आज का बता दूं आपको, इसी वक्त बता देती हूँ भाई। टॉपिक ये है हमारा कि बारिश के दिन चल रहे हैं, सब जगह ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। बारिश का दिन हो और छुट्टी हो साथ में, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? छुट्टी के दिन अगर बारिश होने लगे ना, तो आपकी आप दिल से क्या चाहते हैं करना? आप सोना पसंद करते हैं, आप कुछ स्पेशल खाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, भीगना पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं? ये हमारे साथ साझा करें हमारे ईमेल एड्रेस पर fmakashwanilakhnow@gmail.com। फिलहाल ये बेहतरीन से ट्रैक हम सब के लिए सिर्फ 100.7 FM रेडियो पर। स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉयिंग।

0: अभी कुछ ही वक्त में इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी।
1: आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। कल गोरखपुर दौरे पर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में अवामी दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिला पहुंचे, जहां उन्होंने टेकुतार में मुनक्किद तरक्याती कामों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने की तकरीब में तीन असेंबली हलकों रामकोला, हाटा और कुशीनगर के लिए सड़क, तालीम, सेहत और आबपाशी से मुतालिक 525 करोड़ रुपए के 464 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस दौरान वजीर आला ने जलसा आम से खिताब भी किया। अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
2: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा।
1: आज ही वजीर आला गोरखपुर के पिपराइच असेंबली हलके के इंद्र भाथड़ बंस्थान में 758 करोड़ रुपए के 24 तरक्याती कामों की नकाब कुशाई करेंगे। वो 697 करोड़ 49 हजार रुपए की लागत वाली भाट बंस्थान चार लेन वाली सड़क समेत 5 सड़कों का इफ्तिताह भी करेंगे और 60 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से सड़क की तामीर और सयाहत से मुतालिक 19 तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट पीर को अयोध्या के श्रीराम मंदिर में एहतियात की मुबैना चोरी की गैर जानबदाराना तहकीकात का मतालबा करने वाली कई अर्जियों पर समाअत करेगी। दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मालिया बागची और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल बेंच के सामने होगी। इन दरख्वास्तों में इस वाकये की सीबीआई तहकीकात और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माली लेन देन का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑडिट का मतालबा किया गया है। कबल अज अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 मुलजिमान में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। कमेटी के चेयरमैन रुपेंद्र मिश्रा राम मंदिर की तामीर कमेटी की मीटिंग में शिरकत के लिए आज अयोध्या में हैं। राम मंदिर में पेशकश की चोरी के बारे में उन्होंने कहा कि खजांची गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि यह अपने आप में एक बदनुमा दाग है और हम सब खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब इंतजाम बेहतर होंगे और ऐसा दोबारा नहीं होगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एहतियात की गिनती करने वाले 20 से जायद मुलाजमीन ने बैंक वक्त इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफों को एहतियात में बेजाब्तगियों के सामने आने के बाद निजाम में की गई तब्दीलियों से जोड़ा जा रहा है। इस दौरान बाकी मुलाजमीन की ड्यूटी शेड्यूल और छुट्टियों में रद्दोबदल कर दिया गया है। एहतियात की गिनती के लिए हिफाजती इंतजाम भी सख्त किए जा रहे हैं। इस काम के लिए अब खसूसी अमले की खिदमत हासिल की जाएगी। माहौलियात के तहफ्फुज के लिए रियासती हुकूमत कल शजरकारी महायज्ञ 2026 का इनेकाद करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के करीब एक पौधा लगाकर तकरीब का आगाज करेंगे। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य झांसी में पौधा लगाएंगे और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधा लगाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत रियासती हुकूमत ने 35 करोड़ पौधे लगाने का हदफ रखा है। मुतअद्दी अमराज पर काबू पाने की मुहिम के तौर पर रियासत भर में आज से 31 जुलाई तक दस्तक मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के तहत महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर मौसमी बीमारियों और दीगर बीमारियों की अलामत और उनसे बचाव के बारे में आगाही फराहम करेंगी। आज आबादी का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 11 जुलाई को आबादी में इजाफे से मुंसलिक चैलेंजों और मौाक़े के

0: बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इसका मकसद आबादी से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो मरकूज करना और पायदार तरक्की के लिए कोशिशों की हौसला अफजाई करना है। इस साल आबादी के आलमी दिन का थीम है आज और मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की उम्मीदों और उमंगों का इदराक। रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में मूसलाधार बारिश की वजह से जानों और मवेशियों के नुकसान के वाकयात का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहकाम दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर नुकसान का अंदाज़ा लगाने और मुआवजा फराहम करने की हिदायत है। वज़ीर आला ने तमाम आला हुकाम को इलाके का दौरा करने और मुतासर ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत की है। मानसून की बारिश की वजह से रियासत के कई अज़ला में नदियों की सतह बढ़ने लगी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।

राइट, 1:22 का वक्त हो गया, एंजॉय कर रहे हैं आप प्रोग्राम होटो पे तेरी बात अपनी होस्ट फातिमा के साथ. और हमारे पास मेल्स का जो सिलसिला है ना वो बिल्कुल अच्छे से हमारे पास मेल्स आ रहे हैं. रामराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रायबरेली से आपने, रायबरेली गांव पहाड़पुर से आपने मेल किया है हमें और आपने लिखा है कि प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है और सुपर ट्रैक्स आप प्ले कर रही हैं. देखिए जितने भी ट्रैक्स हैं ना ये सब आपकी पसंद के हैं. फिलहाल रामराज जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ नेक्स्ट मेल में हमें ये ज़रूर बताइए कि आप छुट्टी के दिन अगर बारिश हो रही होती तो उस बारिश का और छुट्टी का लुत्फ लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं, किस तरीके से इन्जॉय करते हैं वो छुट्टी का दिन जिस दिन बारिश हो जाए. ओके, नेक्स्ट मेल हम शामिल कर रहे हैं विकास जी का. इन्होंने हमें तहसील सफीपुर ज़िला उन्नाव से मेल किया है और इन्होंने लिखा है मुझे बारिश के मौसम में भीगना बहुत अच्छा लगता है, घर में बैठकर चाय पकौड़ी का आनंद लेता हूँ. और क्या लिखा है इन्होंने, मैम आप बहुत दिन के बाद आज प्रोग्राम करने आई, कोई बात नहीं, देखिए हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है ना, तो आज वक्त था तो आज हम आ गए. ऑल राइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास आया है फैज़ का रामपुर कटरा से. इन्होंने लिखा है वैसे तो मुझे दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद है लेकिन जब बारिश हो रही होती है और ख़ासकर से छुट्टी का दिन अगर पड़ जाता है तो बस मैं घर के करीब जो एक चाय की टपरी है ना उस पर अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाता हूँ, वहाँ बैठ कर धीरे धीरे चुस्कियाँ ले लेकर चाय पीता हूँ, ढेर सारी बातें करता हूँ, गपशप करता हूँ पूरे हफ्ते का या जितने भी दिन के बाद हम मिल रहे हैं उतने दिनों का हाल.

खबर लेता हूँ, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा नोक झोंक सब होते होते, और वो बारिश को हम इंजॉय करते रहते हैं। थैंक यू सो मच मेल करने के लिए हमें। ऑलराइट, नेक्स्ट मेल हम जिसका शामिल कर रहे हैं वो कौन है? ओके, महेंद्र देपान जी का मेल हमारे पास आया है और इन्होंने हमें ज़िला नागौर राजस्थान से मेल किया है। इन्होंने लिखा है, हमारे राजस्थान में जब बारिश की बूंदें तपती धरती पर गिरती हैं तो जो सौंधी खुशबू आती है उसका कोई मुकाबला नहीं, बेशक उस सौंधी खुशबू का कोई मुकाबला नहीं। ऐसे खुशनुमा मौसम में खिड़की के पास बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेना और साथ में पकौड़ों का स्वाद लेना मेरी पहली पसंद है। ग्रेट। उसके बाद इन्होंने लिखा है, छुट्टी के दिन बिना किसी भागदौड़ के सुकून से बैठकर रेडियो चालू करना और FM रेनबो के RJs की बेहतरीन आवाज़ सुनना, उनके द्वारा जो बेहतरीन नगमे सुनाए जाते हैं उन सब को सुनना, हमारे इस मौसम को एंजॉय करने का जो मज़ा होता है ना उसको दोगुना कर देता है। ग्रेट। और साथ में इन्होंने लिखा है, बारिश के इस माहौल में फैमिली के साथ बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा करना और सुकून के कुछ पल बिताना ही मेरी असली छुट्टी होती है। थैंक यू सो मच। और बड़ा क्रिएटिव मेल इन्होंने भेजा है, इन्होंने पूरा एक पोस्टर बना करके मेल सेंड कर दिया है, उसमें बारिश भी है, उसमें चाय भी है, पकौड़े भी है, सब कुछ है और बहुत ही बेहतरीन। मतलब हमारे जितने भी लिसनर्स हैं ना बड़े टैलेंटेड हैं, सब देखते हैं ना तो समझ में आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास किसका आया है? बरेली से आ गया है सुल्तान रज़ा का। इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इन्होंने आगे लिखा है, जिस दिन बारिश और छुट्टी हो जाए तो बारिश छुट्टी होती है तो बारिश नहीं होती और बारिश होती है तो छुट्टी नहीं होती, ये सोचती हूँ कि ओके ओके ओके ऑलराइट। ऐसा बहुत कम होता है जब बारिश भी हो और छुट्टी भी हो या छुट्टी हो और बारिश हो। मैं ऐसे पल ढूंढती रहती हूँ जब ये दोनों हमें मिले, और जब ऐसा होता है तो बस मैं रिलैक्स करना पसंद करती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एक ही चीज़ आपने बार बार लिखी ना, मुझे पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास आया है नौशाद जी का। इन्होंने लिखा है, आपका प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ और आपको मैं सुन रहा हूँ सऊदी अरब में। ऑलराइट, मेरा घर कुंडा प्रतापगढ़ में है। ओके, तो नौशाद जी आपने ये लिख के भेजा है, ओके नीचे है, इनके मेल में शामिल है, मुझे खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी पहली रेसिपी अंडा करी थी, मैंने अंडा करी बनाई थी, बनाया तो अच्छा था लेकिन खा नहीं पाया क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा हो गया था। ओके, ऑलराइट नौशाद जी, ये हमारे प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस प्रोग्राम का टॉपिक था जो आपने अब हमारे साथ शेयर किया, शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, एक और ईमेल हमें कर दीजिए फटाफट, जिसमें हमें बता दीजिए कि अगर बारिश के दिन छुट्टी हो और आप, या छुट्टी के दिन बारिश हो जाए तो वाइसी वर्षा, आप अपना जो दिन है वो कैसे गुजारना पसंद करते हैं, किसके साथ क्या करना पसंद करते हैं, छुट्टी को कैसे इन्जॉय करते हैं बारिश के साथ, ये हमें बताइए। फिलहाल नेक्स्ट मेल हम एक और शामिल कर रहे हैं, और ये किसका है मेल हमारे पास आया है? पिंकू सोनी जी ने मेल किया है टिकैत नगर बाराबंकी से, और इन्होंने लिखा है, आज कई दिनों से नेटवर्क समस्या की वजह से मैं आज जुड़ पा रहा हूँ। आपके टॉपिक के अनुसार छुट्टी की बारिश में परिवार के साथ बारिश में भीग कर मज़े लेता हूँ। कुछ रेडियो दोस्त हैं, कुलदीप जी, आकाश जी दरियाबाद से, नारायण गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनको करना चाहता हूँ। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मेल किया और अपने ये जो विचार है हमारे साथ साझा किए। बाकी लिसनर्स से भी हमारी रिक्वेस्ट है, fmakashwani@gmail.com की हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आप भी साझा करना चाहते हैं हमारे साथ ये बात कि भाई बारिश के दिन अगर छुट्टी पड़ जाती है तो उस छुट्टी को आप कैसे एंजॉय करते हैं, ये तो प्लीज़ हमें मेल ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल वक्त हो गया एक और बेहतरीन से ट्रैक का, इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे, और उससे पहले एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फटाफट कि कोई कमर्शियल ब्रेक तो नहीं है। जी, उस कमर्शियल ब्रेक को आप तक पहुँचाऊँगी और उसके बाद बेहतरीन सा ट्रैक आप सबका वेट कर रहा है। सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: की बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL Gold TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

एक बजकर 41 मिनट का वक्त हो गया है। वालेकुम अस्सलाम सतीश जी, हम बिल्कुल खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं यहाँ जहाँ आप छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं ना, बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको। हालांकि आपको बता दूं कि सतीश जी हमारे एक रेगुलर लिसनर हैं और बड़े बढ़ चढ़ के बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट भी बनते हैं हर ही प्रोग्राम में। तकरीबन आपने लिखा है, हमारे जब बरसात हो जाती है हमारी तरफ तो कुछ खाने पीने के लिए बना कर लेकर हम पहुँच जाते हैं और भीग कर एंजॉय करते हैं। काफ़ी भीड़ होती है और लाइव म्यूज़िक भी चलता रहता है। जब दूसरों की मस्ती भी देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अभी कुछ दिनों से हम मनाली हिमाचल में हैं, यहाँ लगातार बारिश हो रही है, सर्दी इतनी ज़्यादा है, रूम के अंदर से ही पहाड़ियों को देखकर आनंद उठा रहे हैं हम। आपने अपनी एक लेटेस्ट फोटोग्राफ जो हमारे साथ साझा की है, जो इन्होंने कल क्लिक की है, आइसक्रीम खाते हुए, इतने ठंडे मौसम में आइसक्रीम खाने का भी मज़ा एक अलग ही होता है। हालाँकि आपने अपना नाम और अपने साथ साथ बिमला अनेजा जी का भी नाम हमेशा मेंशन करते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और अभी जब मैं ये जो आप हमारे साथ जो अपनी लाइव फ़ोटोज़ या लाइव अपडेट्स हमारे साथ साझा करते हैं ईमेल के माध्यम से, तो ये रियलाइज़ होता है कि मतलब दुनिया आप देखिए तो कितनी एडवांस हो गई है, कितना डेवलपमेंट हो गया है कि हम कहीं हों और कहीं और बैठ करके उस वक्त इंसान क्या कर रहा है उसको देख सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी डेवलप होता है। तो ये डिजिटल वर्ल्ड की एक बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं देन है हम सबको। लेकिन हाँ, ये डिजिटल वर्ल्ड कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पर बड़ा गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसी से जुड़ा आज हम टॉपिक लेंगे प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में, और उसके लिए आप रहिएगा कनेक्टेड हमारे साथ। तब तक फ़िलहाल वक्त हो गया है एक और मेल हम शामिल कर लें। नेक्स्ट मेल हम शामिल कर रहे हैं गुलफशा जी की, इन्होंने कुछ देर पहले भी मेल किया था हमें। इन्होंने लिखा है, वैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मुझे सिर्फ ख्वाब में ही छुट्टी मिलती है। वेरी ट्रू गुलफशा, कोई बात नहीं, हम अपने लिए लेकिन छुट्टी निकाल लेते हैं। और जब बारिश का मौसम होता है ना तो मेरे हस्बैंड को दाल में दाल टिकिया बहुत पसंद है, तो मैं बारिश के टाइम पर वही बनाती हूँ। फिलहाल इस बार बारिशों में वो हमारे साथ नहीं है, वो कहीं बाहर है। थैंक यू सो मच, हम ये दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी हो खुश हों और आप दोनों का प्यार इसी तरह एक दूसरे के प्रति अपनापन जो है ना वो बना रहे, और आप दोनों एक दूसरे को इसी तरह समझते रहें। फिलहाल नेक्स्ट मेल हम शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वकील अहमद जी ने लिखा है हमें कि छुट्टियों में हम खेतों की तरफ जाते हैं और आजकल हम पेड़ लगाने के अभियान को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। हम अमरूद

ऑलराइट, आपने लिखा है कि हम अमरूद, अनार, आंवला ये पेड़ इस समय लगा रहे हैं, और कटका हथूरी जिला सीतापुर से आपने मेल किया है। ऑलराइट वकील जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, कि आप छुट्टी के दिन अगर बारिश होती है तो उस बारिश को, उस छुट्टी को कैसे एंजॉय

करते हैं ये हमारे साथ जरूर साझा करिएगा अपनी नेक्स्ट मेल में। ऑलराइट, रोशनी रावत जी का मेल हमारे पास आ गया है। मैं चाय और ब्रेड पकौड़े बनाकर सबके साथ मिलकर खाती हूँ, एफएम रेनबो लखनऊ की धड़कन को सुनती हूँ और साथ साथ में कभी कभी थोड़ा बहुत सो भी लेती हूँ चादर ओढ़कर। ग्रेट गोइंग, और बड़ा अच्छा सा आपने भी पोस्टर बना के भेजा है और लिखा है मैं चंडीगढ़ से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। रोशनी जी, ये प्रीवियस प्रोग्राम में भी हमें आपका मेल मिला था, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद नवाब जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लिखा है मेरी तो कोई भी दिन छुट्टी नहीं होती, हर रोज़ घर का काम करना पड़ता है, पर काम के साथ साथ मैं बारिश को बहुत इन्जॉय करती हूँ। पनीर के पकौड़े, प्याज के पकौड़े फटाफट अपने लिए बना लेती हूँ, समोसे मंगा लेती हूँ मेरे फेवरेट, चाय के साथ इन्जॉय करती हूँ। अहमद नवाब सडीला से, थैंक यू सो मच अहमद, आपने मेल किया हमें। और ये जो आपके पनीर वाले पकौड़े हैं ना, इन्होंने मेरे मुंह में बस पानी ला ही दिया है बिल्कुल। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बाबू अंसारी जी ने मेल किया है, मैं आए कहाँ से, अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से मेल किया है। इन्होंने लिखा है वैसे मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, खुद की है, इसलिए मुझे कभी भी छुट्टी नहीं मिल पाती, लेकिन हाँ जब बारिश ज़्यादा होती है और वाइंड अप करने का टाइम आ जाता है दुकान को, मतलब ओके, मैं अपने घर परिवार के साथ, घर परिवार में जो मौजूद फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ मस्ती और चाय नाश्ता करते करते इस छुट्टी को और इस सीज़न को इन्जॉय करता हूँ। मुझे पसंद है रेडियो ट्यून इन करना और रेडियो पर सभी आरजेस को सुनना, थैंक यू सो मच हम तक ये बात पहुँचाने के लिए। एक और मेल फटाफट मैं शामिल कर लेती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके ओके ओके ओके, किसकी मेल है ये हमारी, ओके राइट, ये मेल हम शामिल कर चुके हैं, थैंक यू। फिलहाल वक्त हो गया एक और बेहतरीन से ट्रैक को आप तक पहुंचाने का, आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 एफएम रेनबो पर, और अभी तकरीबन हम आपके साथ 15 मिनट और कनेक्टेड हैं इस प्रोग्राम में। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको ये बताएं कि अगर किसी दिन छुट्टी हो और बारिश होने लगे तो उस बारिश और छुट्टी का मज़ा आप एक साथ कैसे लेते हैं, तो प्लीज़ हमें मेल ज़रूर करिए fmakashwanilakhnow@gmail.com। फिलहाल ये बेहतरीन सा ट्रैक।

होंगे, लेकिन हाँ आज मजा बहुत आया आप लोगों के इनपुट्स जो हमें मिले ना कि बारिश का मजा आप छुट्टी के दिन कैसे लेते हैं, इसके बारे में बड़ा मजा आया सुन करके और जान करके, और हम खुद को भी उसमें उस सिचुएशन में रख करके हमने भी कोरिलेट किया कि हाँ हम भी कभी ऐसा करते हैं. फिलहाल ये बेहतरीन सा ट्रैक हम सब के लिए 100.7 FM रेनबो पर.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, उपकरण और प्रमाण पत्र भी दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन को भी बेहतर बनाया है। श्री योगी ने कहा कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में प्रदेशव्यापी पौधारोपण महाअभियान में शामिल होंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के किनारे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करेंगे। इस महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार इस बार 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय करेगी। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस अभियान में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 20 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। अब प्रदेश की सभी चीनी मिलें किसानों को केवल प्रमाणित और गुणवत्ता प्रशिक्षण से गुजरे उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व और कीटनाशक ही उपलब्ध करा सकेंगी। उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त मिनिस्टी एस ने इस संबंध में प्रदेश की सभी चीनी मिलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक ब्याज के कृषि निवेश की गुणवत्ता की जाँच NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराना अनिवार्य होगा। प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 4 अगस्त रात 12 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की मांग के अनुरूप आधुनिक बनाया है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। इस मौके पर प्रदेश में आज से 18 जुलाई तक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

ऑलराइट, 2:05 का वक्त हो गया है. आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से खैर मकदम करती है आपकी होस्ट फातिमा. और आगाज़ हो गया है प्रोग्राम हॉटमेल का. हॉटमेल प्रोग्राम में 2 के बाद जितने भी मेल्स आए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे सारी मेल्स शामिल हों आज इस प्रोग्राम में. अगर आप अपनी पसंद का ट्रैक इन्जॉय करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें fmakashwani@gmail.com इस मेल एड्रेस पर मेल करिए फटाफट. फिलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोग्राम का. और पहला मेल जो मैं आज शामिल कर रही हूँ वो किसका है? ये मेल हमारे पास आया है टी डी मल्होत्रा जी का. सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आपने मेल किया है. मैं ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है और एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की है. पूरी कोशिश करेंगे हम कि ये सॉन्ग आज प्रोग्राम में ज़रूर प्ले हो. इसके बाद हमारे पास एक और मेल आया है राजेश जैन जी का. और इन्होंने हमें मुल्लापुर दाखा से मेल किया है. बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. शाहरून नूर अंसारी जी, कोई भी गीत सुनवा दीजिए. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें मेल किया. हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से फरियाद, शकील, मोइन, तस्लीम प्रधान, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए. सतीश अनेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और आपने हमें इस प्रोग्राम में मेल किया. इन्होंने लिखा है एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की. चंडीगढ़ सिटी के ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, तो जो सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे आज इस प्रोग्राम में ज़रूर प्ले हो ट्रैक. ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रैक, नेक्स्ट मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो अनिल कुमार, माफ़ी चाहेंगे, आलोक कुमार खरे जी की है. इन्होंने हमें मंसूर नगर शाहबाद पिहानी हरदोई से मेल किया है. आज मेरे बड़े भाई गोपाल जी खरे का जन्मदिन है, एक गीत सुना दे जो जन्मदिन पर हो. सबसे पहले तो आपके भाई साहब को हमारी पूरी टीम की ओर से ढेरों बधाइयाँ. और हम दुआ करेंगे कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, आपके बीच रहें, आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे. हाँ, हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जन्मदिन पर एक ट्रैक हम आज इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें. फिलहाल नेक्स्ट मेल शामिल कर लेते हैं. बोधराज खोरवाल जी के मेल एड्रेस से हमारे पास मेल आ गया है. उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट ताज मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया. किसी भी गीत के साथ बस मेल हमारा शामिल कर लीजिए. शामिल हो गया है आपका मेल. ग़ुलाम साबिर, मेहराज जहाँ, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की है. थैंक यू. हीरामणि वर्मा जी, आपका भी मेल हमें मिल गया है. भाटापारा छत्तीसगढ़ से पुष्पेंद्र मणि वर्मा, और आपने किसका नाम लेने की रिक्वेस्ट की है? नोखेलाल वर्मा, पारस मणि वर्मा, हीरामणि वर्मा जी ने इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की और एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की. हम पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग प्ले हो आज प्रोग्राम में. कमलकांत गुप्ता जी, किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए. पिपरिया से हम आपको मेल कर रहे हैं. आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, हम जानते हैं भाई आपको, और बहुत शुक्रिया आपने मेल किया हमें. मुकेश, श्रद्धा गुप्ता, आदित्य गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर, राघव गुप्ता, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू. दिग्दर्शन गौर जी, आपका भी मेल हमें मेरठ कैंट से प्राप्त हो गया है. कृपया इनमें से कोई भी एक गीत सुनवा दीजिए. इन्होंने एक लिस्ट भेजी है. हम पूरी कोशिश करेंगे दिग्दर्शन जी इसमें से एक ना एक ट्रैक आज ज़रूर प्ले हो. आफ्ताब अंसारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आपने हमें गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मेल किया है. रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना, आलिया, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की है. थैंक यू. आपने लिखा है किसी भी गीत के साथ बस हमें शामिल कर लीजिए. ओके. सिद्धार्थ गोंडाने जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें. और राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से आपने मेल किया. ऑक्सीजन पार्क, ओके ग्रेट. अर्चना ताई, हीरामणि शिंदे, प्रणय, प्रतिभा, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है. थैंक यू मेल करने के लिए. कोशिश हम पूरी करेंगे ये सॉन्ग आज हम प्रोग्राम में प्ले ज़रूर करें. ओके, नेक्स्ट मेल हमारे पास आया अकरम हुसैन जी का. और इन्होंने लिखा है अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिएगा. इन्होंने हमें महसौल सीतामढ़ी से मेल किया है. हमारे रेगुलर लिसनर है ये. बेगम इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, कलेर, मोहम्मद आसिफ, निकत, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए. और गुड आफ्टरनून तुलसी मस्कीन जी, आपका मेल हमें प्राप्त हो गया.

0: है, आपने हमें बिहारी कॉलोनी शाहदरा से मेल किया है और साथ ही साथ लिखा है वीना, आशीष, राहुल, रचिता, केशु खुराना, इन सबका नाम ले लीजिएगा। बिल्कुल हमने नाम ले लिया, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके, नेक्स्ट है नितेश देवांगन जी का मेल, पलारी छत्तीसगढ़ से हमें प्राप्त हुआ है। और पराग पूना, पुना राम, कृष्ण देवांगन, दुर्गा प्रसाद, नितेश कुमार जी ने इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। नेक्स्ट है महेंद्र प्रसाद मोदी जी ने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, रामगढ़ कैंट से आपने मेल किया है और लिखा है बहुत क्या लिखा है, ओके महेंद्र मोदी जी ने ठाकुर साहब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, ओके हमने नाम ले लिया, थैंक यू। वकील अहमद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें हथूरी ज़िला सीतापुर से और आपने लिखा है साहिबा अंसारी, शाजिया, शमा, रिंकी, पिंकी, महक, गुलफशा, अहमद नवाब, आप सबको इन्होंने डेडिकेट किया है, कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए अपनी पसंद का, बेशक हम एक ट्रैक अभी बहुत ही जल्दी प्ले करने वाले। आफ्ताब अंसारी जी आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं, थैंक यू। रमेश कुमार जजोरिया जी आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है, पटेल नगर मलोट से। गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू, इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। जय जी आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, उत्तम नगर दिल्ली से, और आपने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग आज प्रोग्राम में प्ले हो, थैंक यू मेल करने के लिए। शाह जी बोडखे जी आपका भी मेल हिंगोली महाराष्ट्र से हमें प्राप्त हो गया है, श्रीमती नंदा, हनुमान बोडखे, उत्तम जमदाड़े, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की और एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। तो बस अब हम हॉट लगाएंगे यहीं पर और सबसे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उस कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बेहतरीन सा ट्रैक आप सबका वेट कर रहा है, तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर जो है धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

ऑलराइट, ये जो ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया ये हमारे किसी लिसनर की ही पसंद का था। फिलहाल नेक्स्ट मेल हम शामिल कर लेते हैं। राजू मिगलानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हांसी से मेल किया है। बबिता, सुभाष, योगी और बब्बू डब्बू सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। नेक्स्ट मेल हम किसका शामिल कर रहे हैं देख लेते हैं फटाफट। असल बात होता ये है कि हम क्लिक करते हैं कहीं और पहुँच जाते हैं कहीं और क्योंकि रिपीटेड मेल्स हमारे पास आने लगते हैं ना, तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। कोई नहीं, आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ एक बार मेल करने के बाद थोड़ा सा वेट करिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबका मेल हम शामिल कर लें। अजीत भावसार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें वीरम गाम गुजरात से मेल किया है। प्रमिला भावसार जी का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है और एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की है। पूरी कोशिश हम करेंगे आज प्रोग्राम में ये ट्रैक प्ले हो। नेक्स्ट मेल हम शामिल कर रहे हैं मस्कीन जी का। आदरणीय होस्ट जी नमस्कार, प्लीज़ किसी भी

प्यारे से राजस्थानी गीत में शामिल कर लीजिए हमें, ओके। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से आपने मेल किया है। वीना चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु खुराना, इन सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। और राजकुमार दूधी जी का मेल हमें फ्रांसी हिसार से प्राप्त हो गया है। कोई भी गीत सुनवा दीजिए। प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी जी का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। कमलकांत गुप्ता जी, आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं शायद इस प्रोग्राम में, या नहीं, शायद कर चुके हैं। खैर, आपने मेल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेगुलर लिसनर हैं आप हमारे। अशोक कुमार जी, आपका भी शुक्रिया। गुड आफ्टरनून विशेज आपको भी। लखीमपुर खीरी से आपने बेहतरीन मेल किया है हमें और लिखा है वारिस, अच्छा कुछ लोगों के नाम लेने की रिक्वेस्ट की है आपने। अजय राज, प्रदीप राज, आशीष, जसवंत, बालेस्टर राज, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की। हम पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग आज प्रोग्राम में प्ले हो। ओके ताज मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। पूनम गगनेजा जी, जलालाबाद वेस्ट से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। नेक्स्ट मेल हमारे पास आया है, ग्रीटिंग्स फ्रॉम आर साइड, ओके, ये मेल हम शामिल कर चुके हैं। जी हाँ, टी डी मल्होत्रा जी, आपका मेल ऑलरेडी शामिल हो चुका है और आपकी पसंद का जो ट्रैक है ना, ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज प्रोग्राम में ज़रूर प्ले हो। जय जी, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें मेल किया है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, और आपकी पसंद का ट्रैक भी हम प्ले करेंगे। आपका वैसे हम मेल शामिल कर चुके हैं, मुझे ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है। बाबू अंसारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका, आपने हमें अहमदपुर बाजार बाराबंकी से मेल किया है। कुलदीप गुप्ता, महेंद्र, दीपान, फैज़ अंसारी, गौश, मोहम्मद अंसारी, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। कीर्तन पुरी गोस्वामी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ नरगोड़ा से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है और आपने डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। अनिल कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका जो मेल हमें प्राप्त होता है ना, इतना कलरफुल होता है, इतना सिस्टमैटिक होता है, बड़ा डिसिप्लिनड मेल आप करते हैं हमें। और अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, लोगों का लिखने का जो स्टाइल होता है, लोगों का चीज़ों को तरतीब से करने का जो स्टाइल होता है, उससे भी पता चलता है कि वो कितने डिसिप्लिनड है। चलिए खैर, आपने कुछ लोगों के नाम लेने की रिक्वेस्ट की है अनिल जी ने। अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रणिता, लाडला, टुकटुक, वैशाली, शैलेश, एकांश, सुमित, कुमारी ध्वनि, आप, मैंने सबका नाम ले लिया है, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। गुड आफ्टरनून फातिमा मैम, गुड आफ्टरनून बाबू अंसारी जी, आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। राजेश वर्मा जी, अपने पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए और हम आपको मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से मेल कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, अच्छा हकीकतपुरा मऊ से कुछ लोग हैं, मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की है, थैंक यू मेल करने के लिए। दीपेश वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है छत्तीसगढ़ से, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, थैंक यू। संजय धिंगिया जी, आपका भी शुक्रिया। बागपत उत्तर प्रदेश से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है और आपने जो सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, हम पूरी कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में ये सॉन्ग प्ले हो। बिट्टू भाटिया जी, हॉट मेल एनी सॉन्ग। जज्जर हरियाणा से आपने मेल किया है। रीटा, रजत और मयंक, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। विकास जी का मेल हमारे पास आया है सफीपुर जिला उन्नाव से। आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ, मुझे ये वाला सॉन्ग सुनवा दीजिए मैम जी। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे ये वाला सॉन्ग। अच्छा, आज काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास बारिश के सॉन्ग सुनने की, तो पहला जो हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है वही हमने बारिश वाले सॉन्ग से कर दिया, तो हमें लग रहा है ये जो बारिश वाली तलब है थोड़ी थोड़ी कुछ कम हुई होगी, राइट। बबलेश पनवर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें। और बाड़मेर राजस्थान से आपने मेल किया है। डैनी, मनीष, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की। दिनेश का भी नाम लिया इन्होंने, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। बाबू अंसारी जी का, गगनदीप ठांडी जी, आपका भी शुक्रिया, हमें मेल प्राप्त हो गया आपका। नवा शहर पंजाब से आप हमारे रेगुलर लिसनर है। डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका, वाणी ठांडी, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। ओके, स्वर्ण सिंह जी का मेल हमारे पास आ गया है ठाकुरावाला से। दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, बस हमारा नाम ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। देखिए, हमने आपका नाम शामिल कर लिया है। राधे श्याम शर्मा जी का

मेल हमें प्राप्त हो गया है सिरसा से, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू हमें मेल करने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे ये ट्रैक आज हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कर पाए. ओके, राजेश वर्मा जी का हमारे पास मेल आया है मऊनाथ बंजन से. अच्छा, आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं ऑलरेडी, थैंक यू. ओके ओके ओके, सुदर्शन शाह जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से. प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन, राजेंद्र जी शाह, सबका नाम ले लिया हमने. और जो सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की है, सॉन्ग हम पूरी कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में प्ले हो. यासीन अनजान जी, पुरखलूस, आदाब कबूल करें. बिल्कुल, हमने आपका आदाब कबूल कर लिया और आपको वापस भेज दिया है. और गिरडीह झारखंड से आपने मेल किया है, एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है. ओके, साइमा हसन, बाबू मिफ्रा, बेबी चाहत, सादिया, इन सब का आपने नाम लेने की रिक्वेस्ट की है. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. फिलहाल वक्त हो गया है एक और बेहतरीन सा ट्रैक हम अपने लिसनर्स तक पहुंचा दें. इस ट्रैक को एंजॉय करिए और उसके बाद बहुत सारे मेल्स हम और शामिल करेंगे. सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

मगन बस आशिकों पे रहे

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

ऑलराइट, 2:37 का वक्त हो गया है. नमस्कार जी, मान योग्य और जे की ओर से प्राप्त हुआ है मैं ये मेल और लिखा है दीदी जी प्लीज नाम पूरे पढ़ना जी. ओके एक सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की है और आपने हमें खैल बाजार पानीपत से मेल किया है. नरेश मल्होत्रा, नीटू जी, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिव जी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए. देखिए हमने आपकी पूरी मेल एज इट इज शामिल की है, राइट? तो बहुत शुक्रिया आपने मेल किया हमें. बबलेश पनवार जी, आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है और हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं. हम कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके पसंद का ये जो ट्रैक है आज ज़रूर प्रोग्राम में शामिल हो जाए. निसार अली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से आपने मेल किया है. नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिएगा. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. ऑल राइट, नेक्स्ट मेल हम किसका शामिल कर रहे हैं. मोइनुद्दीन अंसारी जी, हाय मैम, हाउ आर यू, आई एम उमरा हुजबा अंसारी, श्रीनगर लखीमपुर खीरी से. ओके ऑल राइट, मैनुद्दीन जी के मेल एड्रेस से मेल आया है उमरा जी का. इन्होंने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की और ढेर सारा प्लीज़ लिखा है. थैंक यू मेल करने के लिए, कोशिश हम पूरी करेंगे. ये ट्रैक आज प्रोग्राम में ज़रूर प्ले हो. ऑल राइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास आया है मोहम्मद सादिक खत्री जी का. इन्होंने लिखा है आपकी पसंद का कोई भी गीत, सदाबहार सुरीला गीत सुनवा दीजिए. और मोहम्मद सादिक जी ने मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. ओके, नेक्स्ट मेल हम किसका शामिल कर रहे हैं. प्यार भरा आदाब लिख के भेजा है भाई मूसा शेख ने. आपकी पसंद का सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए. और सनावत से आपने मेल किया, अशोक वर्मा, राजकुमार बुढ़ाना, इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. ओके, मोहम्मद मूसा शेख जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है. इन्होंने, इनका मेल मैंने अभी भी शामिल किया है, राइट? ओके ओके ओके ओके और राइट, नेक्स्ट मेल किसका है. नवी हसन जी का मेल आया है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शामिल करें और आप खैरियत से हैं, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फरमाइश पूरी कर दीजिए. ओके, एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की आपने. मारहरा दरवाजा एटा से आपने मेल किया है. आपने शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ, रसीद वारसी, किदवई नगर, सिद्धपुरा टाउन से, जुबेर अली, सबीहा अंजुम, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. शमशाद अंसारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें हैदराबाद उन्नाव से और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है इन्होंने. तो हम पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग आज प्रोग्राम में प्ले हो जाए. नरेश जी ने मेल किया है और ये मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं. नरेश जी, सारे नाम हमने पढ़ दिए थे. होस्ट जी नमस्ते, किसी भी गीत में संदेश पढ़ दीजिएगा. गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन जी का मेल आया हमारे पास. इससे पहले भी मैं शामिल कर चुकी हूँ लेकिन इन्होंने उस टाइम पे वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट नहीं की थी, वो मैं अब पढ़ दे रही हूँ. राहुल, रचिता, केशु, रिधान, इन सब का

नाम लिया है इन्होंने, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके सरफुद्दीन अंसारी जी, आदाब, किसी भी गीत पे हमें शामिल कर लीजिएगा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी जी ने मेल किया हमें। फातिमा खातून, सुरित, रमेश साहू, डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम, दानिश, श्रद्धानंद, अभ्यानंद और परमानंद, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। ओके हिमकेश्वर साहू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। करण, राहुल साहू, चंपा साहू, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। एक सॉन्ग सुनने की भी आपने रिक्वेस्ट की है, हम पूरी कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में ये सॉन्ग ज़रूर प्ले हो। और राइट, फिलहाल वक्त हो गया है बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुँचाने का, तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड।

ऑलराइट, बैडमैन फिल्म का ये जो ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया, इसको मैं विजुलाइज कर रही थी. मैंने कभी देखा था इस सॉन्ग को, तो मुझे ये लग रहा था ऐसे ही, बस एक दिल में ख्याल आया कि भाई जो हमारी बॉलीवुड फिल्म्स के माध्यम से जो सोशल कॉज, सोशल इश्यूज जो हाईलाइट किए जाते हैं, कभी कभी कुछ फिल्म्स बड़ी बखूबी से उन्हें दिखाती हैं. और रिश्तों को संजोना, रिश्तों में किस तरीके से कमी में भी किस तरीके से रिश्तों को ब्यूटिफुली आप कैसे उस रिश्ते में बंधे रह सकते हैं, सब कुछ सिखाते हैं. बस ये नज़रिया चाहिए कि हमें, अगर हम कोई भी फिल्म देख रहे हैं और उसमें से हम क्या इनटेक लेना चाहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है. फिलहाल वापस आ जाते हैं प्रोग्राम हॉटमेल पर. हॉटमेल प्रोग्राम में हमारे पास से नेक्स्ट मेल आ गया है मोहम्मद आज़ान का. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. ओके, मोहम्मद आज़ान इनका मेल एड्रेस है, इनका नाम मोहम्मद नौशाद है. ऑलराइट ऑलराइट, प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी इनका मेल हमें प्राप्त हुआ था. इन्होंने लिखा है कि मैं कुंडा का रहने वाला हूँ, सऊदी अरब में फ़िलहाल हूँ और वहीं से आप लोगों के सारे प्रोग्राम्स इन्जॉय करता हूँ. मुझे एक गाना सुनना है, प्लीज़ सुनवा दीजिए. और डेडिकेशन है मोहम्मद अज़ान, मोहम्मद अरहान और मेरी प्यारी बहनों रिंकी और पिंकी जो रायबरेली में रहती हैं. थैंक यू मेल करने के लिए हमें, कोशिश हम पूरी करेंगे जो आपकी पसंद का ट्रैक है हम प्ले कर पाए इस प्रोग्राम में. और राइट, फटाफट देख लेते हैं किसी का मेल रह तो नहीं रहा है अभी तक. अहमद जी का मेल हमारे पास आया है. इन्होंने हमें कहाँ से मेल किया है, मुंबई से मेल किया आपने हमें. दुखनी, सदव, जूही, इकबाल, इमरान, अहमद, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए. हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपके पसंद का ये ट्रैक प्ले हो जाए आज प्रोग्राम में. और राइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास पिंकू सोनी जी का आया है, टिकैत नगर बाराबंकी से. इन्होंने लिखा है किसी भी गाने में मुझे शामिल कर लीजिए. और कुलदीप जी, आकाश जी, इनका नाम मेंशन कर लीजिए. बिल्कुल मेंशन कर लिया, मुझे याद आ रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपका मेल शामिल किया था. और राइट, संदीप मकर जी का मेल हमारे पास आ गया है. और चौक गुरैया जलंधर से, बहुत बहुत शुक्रिया. ज्योति मकर, मन्नत मकर, इनका नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की. थैंक यू. विश्व जनसंख्या दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है. और आपने हमें मेल किसने किया, इंद्रपाल मिश्रा जी ने मेल किया है सीतापुर से. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें. नेक्स्ट, दिलीप जी का मेल हमारे पास आया है, मूंदी चक भागलपुर बिहार से. कमल किशोर शाह का आपने नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. और नेक्स्ट मेल हम किसका शामिल कर रहे हैं, यासीन अनजान जी का. आदरणीय दीदी जी को मेरा प्यार बना नमस्कार, लाइव प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए. मोहम्मद यासीन अनजान, साहिबा नवाज, हसन नवाज, गिरिडीह झारखंड से आपने मेल किया हमें. थैंक यू मेल करने के लिए. नरेश जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए हमें. और आपने लिखा है, अरे भाई हम तो आपका पूरा मेल शामिल कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही प्रोग्राम में, राइट? ओके, थैंक यू. ये भी मेल हम शामिल कर चुके हैं. उत्तम कुमार भागत जी का मेल हमारे पास आया है झारखंड से, जो हम, मुझे ऐसा लग रहा है हम शामिल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी. श्वेता भगत, किसु, अर्णव, सत्यम, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. दिनेश वर्मा जी का मेल हमारे पास आया है, रिंगनी छत्तीसगढ़ से. करुणा वर्मा का नाम इन्होंने लिया है और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की. हम पूरी कोशिश करेंगे प्रोग्राम में सॉन्ग प्ले हो. फागुराम यादव जी, आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है संबलपुर कांकोर से. ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए. स्वर्ण सिंह जी, लोहगढ़ ठाकुरावाला से आपका प्राप्त हो गया है हमें मेल. दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलार, अविराज, इन सब

नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए पंकज शर्मा जी। दीदी जी हम भी आप का प्रोग्राम सुन रहे हैं, एक सॉन्ग है ये सुनवा दीजिए। बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे, हमें पता है आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपने जो प्यारा सा मेल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु जी का मेल हमारे पास आ गया है, इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से एक सॉन्ग सुनने की इन्होंने रिक्वेस्ट की है और बस और कुछ नहीं लिखा है, थैंक यू मेल करने के लिए। डीके जी का मेल हमारे पास आया है, ओके डीके जी के मेल एड्रेस से मेल आया हमारे पास, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट निसार अली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। ओके बिट्टू भाटिया जी आपका भी शामिल हो चुका है मेल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके बाबू अंसारी जी का भी मेल हम शामिल कर चुके हैं। आपसे आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने नाम को सुनने के लिए थोड़ा सा वेट किया करिए, हम कोशिश करते हैं सबका नाम शामिल हो जाए लेकिन जब बार बार मेल्स आते हैं ना तो मेल्स थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। ऑल राइट रामराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें और आपने लिखा है किसी भी गीत में बस हमारा मेल शामिल कर लीजिए और हमारा नाम शामिल कर लीजिए, थैंक यू। ओके नेक्स्ट किसका है, साईं गायकवाड़ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की, महाराष्ट्र से आपने मेल किया हमें, थैंक यू मेल करने के लिए। हम कोशिश पूरी करेंगे आज इस प्रोग्राम में ये सॉन्ग ज़रूर प्ले हो। नवी हसन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, महारहरा दरवाज़ा एटा से आपने मेल किया, मुझे लग रहा है शायद मैं आपका मेल शामिल कर चुकी हूँ स्टार्टिंग में। संदीप मकर जी का भी मेल शामिल हो चुका है, ओके रोजी डिकैस्ट्रो जी का मेल आ गया, थैंक्स फॉर प्लेइंग लवली सॉन्ग्स। अच्छा ये सारे लवली सॉन्ग्स हमारे सारे लवली लिसनर्स की पसंद के थे, सहारनपुर से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, आपने जॉन पर्ल विलिस कैस्ट्रो इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है और किसी भी गीत में बस शामिल कर लीजिए। अनिल आलोक कुमार खरे जी का मेल आया है, थैंक यू मैडम जी, जी प्लेजर इज़ ऑल माइन। नेक्स्ट मेल हमारे पास किसका आया है, ओहो शमशुल कमर राही गंज ढुंडवारा से मेल आया है, एनी सॉन्ग शाहीन फातिमा अदनान खान अनु खान इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। फ़िलहाल वक्त हो गया है कि यहीं पर हम एक हॉल्ट लगाएं और एक सॉन्ग सुना दें, लेकिन हमने जैसे ही घड़ी की तरफ रुख किया तो हमने देखा कि वक्त हो गया है 2:53, तो हमने सोचा जितने भी और मेल्स बचे हैं वो सब शामिल कर लें। मोहसिन हाशमी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। बस्ती गंज डुंडवारा से मेल किया आपने, नाजमा बेगम मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद कलीम सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ऑल राइट संतोष खादसे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, किसी भी रोमांटिक गीत से में हमारे नामों को शामिल कर लीजिएगा। महाराष्ट्र से आपने मेल किया हमें, विनोद खदसे संतोष खदसे ऑल राइट इन दोनों के एन से है ये मेल, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ऑल राइट नेक्स्ट संजय साहू जी आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया, गुड आफ्टरनून, और आपने लिखा है सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और जहाँ चाह वहाँ रहा, बस अपने इरादों को मजबूत बनाए रखिए, एक सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की है, थैंक यू मेल करने के लिए फ़िलहाल और कोशिश हम पूरी करेंगे ये सॉन्ग प्ले हो जाए। मोहम्मद साबिर अंसारी जी का कानपुर से मेल आया है, लिखा है मेरे दोनों भाई के नाम ले लीजिएगा, आसिफ अंसारी हैदराबाद से, तालिब अंसारी राजा कटरा से, देखिए हमने नाम ले लिए दोनों के। पंकज शर्मा जी का मेल आ गया है और इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, मॉडल टाउन करनाल से हम आपको मेल कर रहे हैं, थैंक यू मेल करने के लिए हमें, बड़ा सिंपल से आपने मेल किया है, क्रिस्प एकदम। ओके प्रियंका खंडारे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महाराष्ट्र से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके अब्दुल गफ्फार जी आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, किसी भी गीत पे हमें शामिल कर लीजिए, जियाउल हक और सोहन जोशी जी का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। श्रेया कुमारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आलमबाग लखनऊ से मैं आपको सुन रही हूँ, कैसी हैं हम आप, कैसी हैं मैम आप, हम बिल्कुल बढ़िया हैं, देखिए प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं और मेरे बच्चे पति के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं कुछ नाम शामिल करना चाहती हूँ, काशू जुगनू लड्डू क्रिस्टी तितली और मिस्टर सुशील कुमार। थैंक यू मेल करने के लिए। वारिस अली खान जी का भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा सलाम, आपको भी सलाम, और आपने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये सॉन्ग प्ले करें आज प्रोग्राम में।

अंजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, थैंक यू मेल करने के लिए। अंजू जी का मेल मुझे दिख रहा था कहीं पे, लेकिन वो कहीं गायब हो गया एकदम से। ओके, हेलो मैडम मैम, आई एम फ्रॉम लखनऊ, मुझे एक सॉन्ग सुनवा दीजिए अगर हो सके तो, अदरवाइज़ किसी भी सॉन्ग के साथ मुझे शामिल कर लीजिए, थैंक यू। ये ऑप्शन जब आप लोग दे देते हैं ना तो थोड़ा सा इत्मीनान हो जाता है। फरमान जी का भी मेल आ गया हमारे पास, ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, सलमान, इरफान, इसरात, नरगिस खातून, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। अब बस वक्त हो गया है कि इस प्रोग्राम को हम यहीं वाइंड अप करें, इस वादे के साथ कि एक बेहतरीन से ट्रैक के बाद, और जो बेहतरीन सा ट्रैक हमने क्यों किया अपने एक लिसनर की पसंद का, उस ट्रैक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ, उम्मीद है सबके नाम शामिल हो गए होंगे, किसी का नहीं शामिल हुआ हो तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जरूर कोशिश करिएगा। स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत

और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत स्थायी मित्रता समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्जवल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं। उन्होंने कहा भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर के टेकवाटर में कुशीनगर रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने यहां की जनता से कोई सरोकार नहीं रखा, इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, वहीं इंसेफेलाइटिस से पूरा जिला प्रभावित था, लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर की तस्वीर बदल गई। इस मौके पर सीएम ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में प्रदेशव्यापी पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इस महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से पौधारोपण में शामिल होने के लिए कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की है। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। प्रदेश भर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत आज से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों समेत अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। इसके अलावा बीमार व रोगों के लक्षण मिलने पर इसकी सूचना CHC PHC पर देकर जाँच कराएंगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने भरोसा दिलाया है कि मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चढ़ावे में अनियमितता जैसी घटना दोबारा नहीं होगी। मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने के लिए कल अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति के लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है। श्री मिश्र ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का काम 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा, तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए

3:06 का वक्त, एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम करती है आपकी होस्ट फातिमा। और वक्त जैसा मैं बता चुकी हूँ, अगर अभी तक किसी ने लंच नहीं किया, जी हाँ, दोपहर का खाना अगर अभी तक नहीं खाया है, तो प्लीज़ ऑलरेडी आप काफ़ी सारा टाइम आगे आ चुके हैं, तो प्लीज़ ये टाइम अभी तो ऐप्ट नहीं है, लेकिन हाँ, अब इसके बाद अगर आप करना चाहेंगे 4 बजे, तो वो दोपहर का खाना नहीं होगा। तो बेहतर है कि अगर लंच नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, हैंड वॉश करिए, इत्मीनान से थोड़ा रिलैक्स करिए, खाना खाइए, बॉडी स्ट्रेच करिए, और फिर वापस अपने जिस भी काम पर आप लगे हुए हैं उस पर लग जाइए। फिलहाल आज प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में हमने आपसे स्टार्टिंग में ही इस बारे में गुफ्तगू की थी कि भाई किस तरीके से जो डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है, ये हमारे बच्चों के लिए एक परेशानी का सबब, या आप कह सकते हैं चिंता का सबब बन रहा है। बच्चों में चिड़चिड़ापन और गुस्से का जो मुख्य कारण है वो है उनका, मतलब ओवर एक्सेसिव इस्तेमाल, डिजिटल जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं उनका ओवर एक्सेसिव इस्तेमाल बन रहा है। उसमें इन डिजिटल गैजेट्स में कई तरीके के उपकरण आते हैं, और एक जो बड़ा ही कॉमन सा उपकरण है वो है मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, तो क्यों बढ़ रहा है ये चिड़चिड़ापन, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ज़माना है, इस ज़माने में आप कहें कि हम पूरी तरीके से स्क्रीन टाइम बंद कर देंगे, तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसे कि इस पर कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं एज पेरेंट्स, एज मेंटर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे आज इस प्रोग्राम में। आपको रहना पड़ेगा कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। अच्छा हाँ, बड़े बेहतरीन से गाने मैंने ट्यून किए हुए हैं, इनफैक्ट क्यों किए हुए हैं, जो आप अभी ग्रेजुअली सुनते सुनते इन्जॉय करेंगे, मज़ा आएगा। तो प्लीज़ इस ट्रैक के साथ हम आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का। स्टे ट्यून्ड एंड कीप एन्जॉइंग।

ऑलराइट, 3:13 का वक्त हो गया और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हम सब की आंखों के तारे होते हैं और हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके की ऐसी परिस्थिति में इंडल्ज हो जाएं जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने और आप लोगों ने ख़ुद भी अगर एक्सपीरियंस किया हो तो आपको लगता होगा कि अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा कुछ ज़्यादा नज़र आने लगा है, मतलब उनका जो पेशेंस लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। तो अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनका कहना ये है कि भाई स्मार्टफोन्स और हाई स्पीड इंटरनेट की आसान उपलब्धता ने दुनिया में जो बच्चे हमारे इस वक्त बड़े हो रहे हैं उनके जहन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला है। हालांकि ये हाई स्पीड इंटरनेट, इसकी वजह से कम उम्र में ही बच्चों को पता चल गया है कि मतलब दुनिया के हर एस्पेक्ट के बारे में उन्हें पता चल गया, दुनिया बहुत छोटे से उसमें सिमट के रह गई है। एक क्लिक पर आपको किसी भी टॉपिक से जुड़ी आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब उस इन्फॉर्मेशन में होता क्या है कि कई बार वो इन्फॉर्मेशन एज सेंट्रिक नहीं होती है, राइट? भाई अगर एक 13 साल का बच्चा सर्व कर रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को और उस पर इन्फॉर्मेशन आ गई जो कि 25 से 26 साल के वयस्क इंसान के लिए एप्ट होगी, तो कहीं ना कहीं जो 13 साल का जो मन है, 13 साल के बच्चे का जो जहन है, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और जाहिर सी बात है वो उस तरीके का डिसीजन उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लेके नहीं ले पाएगा जैसा कि वो चाह रहा है। तो ऐसे में ये जो स्मार्टफोन्स हैं या फिर ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, अगर इससे जुड़ी जानकारी हम एज अ मेंटर अपने बच्चों को देते रहें, मतलब जिस उम्र में उनके लिए जो चीज़ एप्ट हो उनको बताते रहें और उन पर कड़ी निगाह भी रखें, निगाह में हमारे एंड से इम्पेशेंस नहीं आना चाहिए। जी हाँ, अगर आपने देखा कि आपका बच्चा कोई ऐसा डिजिटल कंटेंट देख रहा है जो कि ऐप नहीं है तो उसे

0: गुस्सा गर्मी करके उसके हाथ से छीनिए मत उसको, मतलब गुस्सा गर्मी वहाँ पे नहीं करने वाला होता, वहाँ पे उसको इत्मीनान से बैठा के समझाइए कि ये चीज़ क्यों तुम्हारे लिए आप नहीं है। ये बहुत बड़ा, ये जो पेशेंस और इम्पेशेंस के बीच का जो ब्रिज है, इसे बिल्ड करना मेंटोर्स की, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो इसी टॉपिक पर हम और भी गुफ्तगू करेंगे आपके साथ, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। तो इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस टॉपिक पर जो हमारा चर्चा का जो विषय है वो आगे बढ़ेगा जरूर। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉय।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

ऑलराइट, 3:24 का वक्त हो गया है और जिस टॉपिक पर आज हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं वो है कि भाई बच्चों में डिजिटली एक्टिव रहने की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और इसकी वजह तो हमें पता ही है क्योंकि भाई अगर आप डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे लेकिन पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पहले जहाँ हमारे बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम मैदान में खेलने में, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में स्पेंड करते थे, वहीं अब हमारे बच्चे घंटों स्क्रीन पर चिपके बैठे रहते हैं। जी हाँ, और हम देखते हैं कि वो मोबाइल स्क्रीन पर या फिर टेलीविज़न स्क्रीन पर या फिर लैपटॉप या किसी भी तरीके से वो कनेक्टेड हैं स्क्रीन के साथ, फिर भी हम उन्हें रोक नहीं पाते, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि जैसे ही हम उन्हें रोकते हैं या कुछ कहते हैं तो दूसरी तरफ से यानी हमारे बच्चों के एंड से एक नहीं हमें सुनने को मिलती कि अभी मम्मा बंद कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं, रुक जाइए 5 मिनट 10 मिनट, वो 5 मिनट 10 मिनट करते करते कई घंटे गुजर जाते हैं। तो इस चीज़ को एज अ पेरेंट, एज अ मेंटर हमें समझना पड़ेगा कि इस तरीके से डिजिटली एक्टिव रहने से बच्चों के ब्रेन पर

किड्स, बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ता है और कई बार ये जो असर होता है ना वो काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। ये सब जब कनेक्शन रहता है, जब वो स्क्रीन पर एक्टिव रहते हैं तो तरह तरह की चीज़ें आती हैं। कई बार वो डेटा सर्व करते हैं और कई बार किसी तरीके के गेम को खेलने लगते हैं, गेम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ऐसा ही होता है कि जब वो किसी तरीके के गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं तो जीतने और हारने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो तो वहाँ पर भी चलता है। तो जीत हार का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उनका तनाव बढ़ाता है कई बार और मानसिक रूप से उन्हें बेचैन करता है। ऐसे में उनका जो चिड़चिड़ापन है, उनका गुस्सा है, आक्रामक व्यवहार है, चिंता और जो आपको एक एंग्शियस रूप उनका दिखाई देता है ना, वो बड़ा नॉर्मल सा हो जाता है। जी हाँ, जब कभी भी आपके जहन में नॉर्मली भी आप देखिए, आप अगर डिजिटली एक्टिव नहीं हैं, आप स्क्रीन पे एक्टिव नहीं हैं, अगर आपके जहन में एक साथ कई सारी बातें चल रही होंगी ना तो आप बहुत ही एंग्शियस दिखेंगे। आपके अंदर एंग्जाइटी लेवल्स जो होते हैं ना वो हाई हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस आपके आसपास आ रहे हैं, सिचुएशंस आ रहे हैं, उन्हें आप प्रॉपरली टैकल नहीं कर पाते हैं। आप सोच कुछ रहे होते हैं और बोल यानी कि आप किसी और की बात का रिप्लाई कुछ और कर रहे होते हैं। तो ये सब हमारे बच्चों के साथ भी हो रहा है, हम सब रोज़ाना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव इनपुट दे पाने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए हमें पहल करनी पड़ेगी। जी हाँ, अब इट्स हाई टाइम नाउ हमें अपने बच्चों को बिठाल करके उनकी काउंसलिंग, उनके साथ बात करनी पड़ेगी, उनके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप दे भी रहे हैं उन्हें स्क्रीन तो आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि वो क्या देख रहे हैं। अगर आपका बच्चा कहे मम्मा हम उस कमरे में जाके देख रहे हैं या पापा हम उधर देख रहे हैं, भैया हम उधर देख रहे हैं जा कर के, नहीं, डोंट अलाउ। आप कहिए बिल्कुल आपको जो भी सर्च करना है, जो डेटा डिराइव करना है, जो भी करना है सामने बैठ के करिए। इवन अगर कुछ कार्टून्स वगैरह भी वो देखना चाह रहे तो आपके सामने देखें, तो आपकी निगरानी में रहेंगे, मॉनिटरिंग रहेगी। तो उससे जब आप कुछ ऐसा देखेंगे जो आपत्तिजनक है या नहीं है आपके बच्चों के लिए, तो आप उन्हें बिठा के समझाइए, एकदम से डांटिएगा नहीं। जी, 3:28 का वक्त हो गया एक और बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुंचाने का। रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।

3:42 का वक्त और प्रोग्राम सतरंगी दुनिया एंजॉय कर रहे हैं आज आप अपनी होस्ट फातिमा के साथ और मुझे पता है कई इलाकों में बारिश भी हो रही होगी। अच्छा, बारिश का तो जिक्र पूरे प्रोग्राम में होता रहा लेकिन आम का जिक्र नहीं किया। काफ़ी वक्त पहले हम प्रोग्राम करने आए थे तो आम है बड़े ख़ास, इस पर हमने एक प्रोग्राम किया था और ये खासम खास फल जो है ना साल में आता है एक बार, इसलिए ये बन जाता है बहुत ज़्यादा ख़ास। तरह तरह की वैराइटीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में तो सब कुछ टेस्ट करिए। आज इत्तेफाकन मुझे भी एक देसी वैराइटी आम की टेस्ट करने को मिली और वाकई में यकीन मानिए था बड़ा छोटा छोटा सा आम लेकिन एकदम बिल्कुल मीठा, शहद की तरह मीठा हो रहा था, एकदम माउथ में बिल्कुल घुल गया, डाला और मुंह में रखा और अंदर इतना टेस्टी था। लेकिन हाँ, अगर आम खा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, ये हम लोग ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल आम से तवज्जो हटा करके अपनी तवज्जो हम वापस लेकर आते हैं उस टॉपिक पर जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बच्चों में हमारे क्यों डिजिटली एक्टिव होने के बाद चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, गुस्से की मेन वजह क्यों बनता जा रहा है ये डिजिटली एक्टिव होना उनका। तो अभी हमने आपसे ज़रा देर पहले बात की थी कि क्या होता है कि बच्चे अपने जो इमोशंस हैं ना वो उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते और वो जाहिर सी बात है अग्रेशन के रूप में बाहर आता है। अब इस कंडीशन में एक विधि है जो बड़ा काम आती है और वो होता है बच्चों को फोकस करना। जैसे कि बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर फोकस्ड हो गए हैं, अगर उसी तरीके से आप उन्हें वापस लाइए, आप खुद बैठिए उनके साथ 2 घंटा प्रॉपर उन्हें पढ़ाइए, उनके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको देखिए, समझिए, देखिए किस चीज़ से आपका बच्चा जूझ रहा है, तो ग्रेजुअली कुछ दिन में बच्चे को हैबिट पड़ जाएगी और फिर पढ़ाई की तरफ जब उसका तवज्जो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम जो है ना फिर ज़रूरत की चीज़ बन जाएगी। इसे एप्लीकेबल करके देखिएगा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है और लोगों को बड़ा फ़ायदा भी हुआ है इस टेक्निक से, मतलब मेरा कहना नहीं है, एक्सपर्ट्स का मानना है ये। तो बस एक्सपर्ट्स की इसी बात पर दिल चाह रहा है कि ये वाला बेहतरीन ट्रैक भी आप तक पहुंचा दें। आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेडबो पर।

Alright, 3:54 मिनट का वक्त हो गया है. ऑलमोस्ट इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है. एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि भोजन के वक्त, जी हाँ, खाने के टाइम पे किसी भी मील, जब बच्चे मील्स खा रहे हो ना, तो उस वक्त उन्हें मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना होगा और ये आप ही करवा सकते हैं. उन्हें बच्चों से ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में रहिए, उनसे संवाद जारी रखिए और उनके रवैये में, उनके व्यवहार में अगर किसी भी तरीके का आपको बदलाव नज़र आ रहा है तो उस पर एक चेक लगाना बहुत ज़रूरी होता है. तो बस इसी नोट पर हम वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर किसी रोज़ हम आपसे दोबारा ज़रूर रूबरू होंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की. बेहतरीन से ट्रैक फिल्म सैनिक से क्यों किया है, सो इसे एंजॉय करिए

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, अनुपालन, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा क्षेत्र के समझौते से सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालन और डेयरी संबंधी समझौता अनुसंधान, नवाचार और बेहतर तकनीकों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का यह युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 525 करोड़ की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने यहां की जनता से कोई सरोकार नहीं रखा। इस क्षेत्र के बुनियादी सुविधाओं का अभाव यहां है, वहीं इन सेफिलाइटिस से पूरा जिला प्रभावित था। इसके लिए लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर की तस्वीर बदल गई। इस मौके पर सीएम ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के जरिए प्रदेश सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से पौधारोपण में शामिल होने के लिए कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार आदाब, आप सभी को प्यार भरा सलाम। मैं आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ जुड़ गई हूँ और अभी आपने सुना वही सच है। 4:05 हुए हैं और न्यूज ब्रेक के इस पार आपका अपना प्रोग्राम यूथ वेव शुरू हो चुका है। और आज एक खास दिन है, आते ही आपको बता दें विश्व जनसंख्या दिवस। और इस खास दिन के अवसर पर आपसे बात करना बनता है, लेकिन यूथ वेव के सेगमेंट का क्या? हर दिन यूथ वेव में आपके काम की बात होती है, लेकिन हर दिन यूथ वेव आपके लिए, आपके यानी कि यूथ के लिए अलग अलग सेगमेंट्स लेकर आता है। और आज का जो सेगमेंट है, यानी शनिवार का जो सेगमेंट है, वो है स्किल डेवलपमेंट। तो जनसंख्या और स्किल डेवलपमेंट का क्या हो सकता है आपस में कनेक्शन? ज्यादा देर नहीं करेंगे, आपकी रेडियो सेट पर ये खूबसूरत सा गाना भेजेंगे, आप इंजॉय करेंगे सुनते सुनते, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या है आज के सेगमेंट में आपके लिए खास। ट्यून इन करके रहिएगा।

0: करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यू आर लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, द हार्टबीट ऑफ लखनऊ।

0: प्रोग्राम यूथ वेव में आज हम बात कर रहे हैं भारत की युवा आबादी की, स्किल्स की और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की। जी हाँ, भारत आज यानी कि हमारा देश दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। हमारी लगभग 65% आबादी 35 वर्ष के कम लोगों की है। जी हाँ, हमारे देश के पास एक बहुत बड़ी यंग वर्कफोर्स है। यही कारण है कि अक्सर कहा जाता है कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिवाइडेंट है, यानी कि जनसंख्यिकी लाभांश इसको कहते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि क्या केवल बड़ी युवा आबादी से ही देश का विकास हो जाता है, बस ऐसे ही सिर्फ आबादी होने से? और इसका जवाब है नहीं। युवाओं की संख्या जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है आपके पास स्किल्स का होना। आज हमारे देश में लाखों युवा डिग्रियां तो हासिल कर रही हैं, लेकिन कई सारी कंपनियां ये कहती हैं कि उनको ऐसे कैंडिडेट्स मिल ही नहीं रहे जिनके पास नौकरी के लिए जरूरी प्रैक्टिकल स्किल्स हो। जी हाँ, बहुत सारे डेटाज में ये बताया है, बहुत सारे रिसर्च में ये पता चला है, बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि भारत में युवा आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत लाखों की संख्या में युवा डिग्री होल्डर्स हैं। लेकिन मैक्सिमम कंपनीज को, मैक्सिमम जहाँ पर ज़रूरत है, उन लोगों को स्किल के साथ यूथ मिल ही नहीं रहे। और इसी जो डिफरेंस है, यानी कि डिग्री वाले युवा तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन स्किल्स बिल्कुल नहीं है, तो इसी अंतर को स्किल का गैप कहा जाता है। ट्यून इन करके रखिए एक और खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर। वापस आते हैं और बात करेंगे कि कैसे ये गैप आखिर कम होने वाला है।
1: Hey you guys, listen to me, baby. So, ooh, la, la.

और यूं ही ऊ लाला करते करते हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि हमें बात करनी है इस स्किल गैप के बारे में। और ये जो स्किल गैप है इसको कम करना है। अरे आप इतनी जल्दी भूल गए, स्किल गैप आखिर है क्या? मतलब आपके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल्स नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, पर नौकरी नहीं है, नहीं है या मिल ही नहीं रही है। आपने इसको महसूस किया होगा और ये सच है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, यानी कि प्रैक्टिकल स्किल्स, और इसी को कहते हैं स्किल गैप। और अगर हम इस स्किल गैप को समय रहते दूर नहीं कर पाए तो हम जो आज दुनिया का सबसे युवा देश है, ये आबादी एक अवसर की जगह चुनौती बन सकती है। सोचिए पूरे देश में 80% 75% लोग बेरोजगार घूमे तो। लेकिन अगर सही दिशा में स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उसका सहारा लिया जाए, स्किल सीखी जाए, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकतों में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज दुनिया तेजी से डिजिटल ट्रांसमिशन और ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही है। ऐसे में कुछ स्किल्स की डिमांड तो लगातार बढ़ रही है और आने वाले सालों में भी ये डिमांड लगातार बनी रहेगी। और आपको, हमको, हम सभी को इसके बारे में सोचने की तो बहुत ज़रूरत है।

नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित SES बाबा नेभराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। TGT सिंधी एक रिक्ति, असिस्टेंट टीचर 6 रिक्तियां, लैब असिस्टेंट 2 रिक्तियां। ये सभी पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए हैं। भर्ती के नियम, वेतन, योग्यता और आयु संबंधी शर्तों के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के नियम लागू होंगे। आप देख सकते हैं वेबसाइट www.edudel.nic.in। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा।

वेलकम बैक. ठीक 4:30 हुए हैं. प्रोग्राम यूथ वेव में आपका फिर से स्वागत है. देखिए, हम बात कर रहे थे भारत की युवा आबादी की और स्किल्स की और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, और हमें बात तो ढेर सारी करनी है. इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग की. आज चैट GPT जैसे AI टूल्स, स्मार्ट डिवाइसेस, ऑटोमेशन सिस्टम्स और डिजिटल सर्विसेज हर क्षेत्र में, लगभग हर क्षेत्र में, चाहे जहाँ देख लीजिए, चाहे कुछ पूछना हो, ऐसे लिखना हो, एप्लीकेशन लिखनी हो या कोई और टेक्निकल काम करना हो, हर जगह ये टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं. इसीलिए AI और मशीन लर्निंग भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण करियर ऑप्शंस में शामिल हैं. समझ रहे हैं आप, AI का ज्ञान होना और मशीन लर्निंग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद आता है डेटा सर्विसेज और डेटा एनालिटिक्स. आज हर कंपनी अपने फैसले, जितने भी डिसीजंस होते हैं, वो सब डेटा के आधार पर ही लेती है. ऐसे में डेटा को समझने, उसको एनालाइज करने और उसे बिजनेस इंसाइट्स निकालने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी डिमांड मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही है बॉस. तो इस बारे में हमें सोचना होगा. किस बारे में? AI के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, स्मार्ट टूल्स के बारे में, स्मार्ट

डिवाइसेस के बारे में, ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में, डिजिटल सर्विसेज के बारे में और साथ में डेटा एनालिटिक्स के बारे में। आप सोचिए, तब तक हम आज एक बहुत दिनों से न सुना हुआ गाना सुन लेते हैं आपके साथ एंजॉय करके। आप सुन रहे हैं 107.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की आपकी दोस्त चंद्रकला के साथ।

बिल्कुल, और अभी ओढ़नी ओढ़ने का दिल भी करता है क्योंकि मौसम अच्छा है ना, और नाचने में भी इस समय कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पसीना ज्यादा आ नहीं रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो गया, राइट? या मौसम बहुत अच्छा हो गया है और इसीलिए हम नाच भी पा रहे हैं, उड़नी भी उड़ सकते हैं, वो जो चुनरिया उड़ाने का एहसास है वो भी ले सकते हैं। खैर, मैं तो खूब सारा ले पा रही हूँ ये वाला एहसास क्योंकि मौसम अच्छा है, और मौसम अच्छा है तो बातें भी अच्छी होनी चाहिए, और जब बातें अच्छी होनी चाहिए तो किस बारे में होनी चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है। और आज हमारा सेगमेंट है स्किल डेवलपमेंट का, और ख़ास दिन भी है आज, विश्व जनसंख्या दिवस, और हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमारा देश सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। और सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश होने का मतलब समझ रहे हैं आप, सबसे जवान देश है हमारा, सबसे ज़्यादा आबादी यूथ की है हमारे यहाँ। आप और हम जितने भी आप सुन रहे हैं, और वैसे भी अगर आप यूथ की कैटेगरी में खुद को, आपकी उम्र आपको नहीं ऐड करने देती है, तो आप दिल से ऐड हो सकते हैं, दिल तो हमेशा जवान रहता, राइट? और स्किल डेवलपमेंट के साथ आज हम जनसंख्या को जोड़कर ये बात कर रहे हैं, और उन टूल्स की, उन लर्निंग्स की जो हमें अब सीखनी है, जो भविष्य की डिमांड है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन चुका है, जैसे जैसे हमारी बैंकिंग, शॉपिंग, कम्युनिकेशन ऑनलाइन हो रही है, वैसे वैसे डेटा सिक्योरिटी की ज़रूरत बढ़ रही है। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आज हर बड़ी संस्था और कंपनी की ज़रूरत बन चुके हैं। हर कंपनी, हर बड़ा इंस्टीट्यूशन चाहता है कि उनके पास एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, जिससे कि उनकी डेटा, और डेटा के साथ साथ उनकी पेमेंट्स और उनका वेबसाइट और जितनी भी चीज़ें हैं वो सेफ रहें, सिक्योर रहें। ये एक तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर है, और ऐसे ही एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एरिया और है, क्लाउड कंप्यूटिंग। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपना डेटा क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर स्टोर कर रही हैं, इसीलिए AWS, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स इससे जुड़े हुए स्किल्स भी काफ़ी वैल्यूएबल मानते हैं। आपको पता है आज के समय में जिस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अच्छी तरीके से आता है वो भी बहुत बड़ा एसेट माना जा रहा है, और लोग तेज़ी से इसको सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर बिजनेस और मैनेजमेंट की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग ना बहुत बड़ी दुनिया है, और उस बड़ी दुनिया के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करें तो अच्छा रहेगा। हम सोच रहे हैं कि एक और खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेजा जाए। आप इस गाने को सुनिए और एंजॉय करते रहिए, तुरंत वापस आते हैं आपका सेगमेंट लेकर।

क्या बात है, और इसी वाइब के साथ वापस आपके साथ मैं जुड़ गई हूँ, और इसी वाइब के साथ हम बात कर रहे हैं कि आज के समय की डिमांड क्या है, आखिर वो स्किल्स हैं कौन से जिनको बढ़ाने की, जिनको सीखने की ज़रूरत है हमें। और जब इतनी बड़ी ब्लिस हम हैं बीइंग सबसे बड़ा यंग देश दुनिया का, तो क्यों ना इसको हम एक अपॉर्चुनिटी बनाएं अपने देश के लिए कि हम फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो जाएं, इतनी ताकत आ जाए हमारे देश में। और वो सब तो हम ऐसे ही कर सकते हैं छोटी सी बात से, छोटी सी बात से, छोटे से स्टेप से। वो कैसे? वो ऐसे कि हम स्किल सीख करके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता खोल सकें, आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, अपना टैलेंट दुनिया के सामने रख सकें। और आपको पता है ट्रेंड के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है हर समय। बिजनेस और मैनेजमेंट की बात हम करने वाले थे, तो डिजिटल मार्केटिंग में यूथ के लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए शानदार मौके हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, SEO है, कंटेंट क्रिएशन है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है, ये सारे स्किल्स लगभग हर बिजनेस को चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजर एक ऐसा एरिया है जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों को जोड़ता है।

इसमें किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करने से लेकर मार्केट तक पहुंचाने की पूरी पूरी स्ट्रेटजी शामिल होती है। और कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिन्हें कोई एआई या मशीन पूरी तरह कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी किसी प्रॉब्लम को समझ के उसका बेहतर समाधान निकालने की क्षमता। इसके साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स की भी बहुत जरूरत है मार्केट में। टीम के साथ काम करना, लोगों को समझना और सही लीडरशिप देना आज हर एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और सबसे जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इसकी बहुत ही ज्यादा मार्केट में डिमांड है और एआई कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके लिए जब आप मनुष्य हो के, इंसान हो के आपको सामने बैठ करके कम्युनिकेट करना है तो उसमें आपको खुद ही कम्युनिकेटिवली एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी एडवांस होनी चाहिए और इसकी बहुत ज़रूरत है। और चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी नॉलेज हो, अगर आप अपनी बात अच्छी तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं रख सकते तो सक्सेस होना, सक्सेस मिलना तो बहुत कठिन हो सकता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का आना बहुत ज़रूरी है इस समय। बाकी सारी चीज़ों में आप महारत हासिल कर लीजिए और अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तब तो बहुत गड़बड़ है बॉस। इन्हीं सारी बातों के साथ हम सोच रहे हैं कि ये जो गाना है आपके रेडियो सेट पर भेजा जाए। और गाना भेजने के साथ ही मैं तो यही कहूँगी आपसे कि ढेर सारी बातें होती हैं करने को वैसे तो, लेकिन जब सेगमेंट स्पेशल होता है तब जो बात की जाए तो कुछ खास होता है। और आज इस दिन पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप और हम मिल करके इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा यूथ नेशन बना रहे हैं, तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए आत्मनिर्भर बनने के लिए, राइट?

बिल्कुल कुछ कुछ होता है, और जब कोई कहे हमारे योगदान के बारे में, कोई जब बात करे कि हम देश में अपना कैसे योगदान दे सकते हैं और अपने देश के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं, तो तब कुछ कुछ होता है। और वो कुछ कुछ पता है कैसे होता है, एक अलग सी एनर्जी अंदर आती है और ऐसा लगता है कि जब हमें करना ही है तो कुछ बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा यानी बेहतर करें। जरूरत इस बात की है आज कि हमारे देश का युवा केवल डिग्री लेने तक सीमित ना रहे, बल्कि इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से नई स्किल्स भी सीखे। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है, स्किल इंडिया मिशन है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर आप और हम यानी कि हमारे देश का युवा सही स्किल्स के साथ आगे बढ़ता है, तो भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स नहीं बल्कि दुनिया का स्किल कैपिटल भी बन सकता है। एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारी युवा आबादी स्किलफुल, इनोवेटिव और फ्यूचर रेडी होगी, बनेगी। जी हाँ, ढेर सारी बातें हमने आज की और स्किल्स की बात भी हमने की। स्किल्स की बात इसलिए की क्योंकि सेगमेंट था और आज का दिन विश्व जनसंख्या दिवस है, तो इस बारे में भी हमें बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम इस बड़ी जनसंख्या को एक बहुत बड़े अवसर में बदल सकें। मुस्कुराते रहिए, और इस समय अब प्रोग्राम यूथ वेव को वाइंड अप करने का समय है। हम वाइंड अप करते हैं लेकिन ठीक 5 बजे न्यूज़ ब्रेक के उस पार। आपका अपना प्रोग्राम सुपर हिट FM टॉप 10 सॉन्ग्स आपको सुनना है। आज के लिए यूथ वेव से मुझे अनुमति दीजिए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, उपकरण और प्रमाण पत्र भी दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफ्लाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। इसके साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन को भी बेहतर बनाया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधे लगाएंगे। अभियान के जरिए प्रदेश सरकार इस बार 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय करेगी। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। अब प्रदेश की सभी चीनी मिलें किसानों को केवल प्रमाणित और गुणवत्ता परीक्षण के गुजरे उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व और कीटनाशक ही उपलब्ध करा सकेंगी। उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस ने इस संबंध में प्रदेश की सभी चीनी मिलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक बैच के कृषि निवेश की गुणवत्ता की जाँच NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराना अनिवार्य होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और महत्वपूर्ण तैयार रक्षा

का निर्माण कर रहा है। प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 4 अगस्त रात 12 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की मांग के अनुरूप आधुनिक बनाया है। जौनपुर और सोनभद्र में 10 से 12 जुलाई तक आयोजित की जा रही 43वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वाराणसी जोनल बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में जौनपुर पुलिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का गौरव बढ़ाया है। प्रतियोगिता में जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अतीश कुमार सिंह ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: अब आप सुनेंगे एक विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 12 जुलाई को पौधरोपण महाअभियान और हरित क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास पर प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
2: एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन भागीदारी का महायज्ञ बनाते हुए आगामी 12 जुलाई को प्रदेश में उत्साह और उत्सवपूर्ण वातावरण में 35 करोड़ पौधे लगाने का वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार इसे केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाने की बात कर रही है। अभियान की तैयारियां, पौधों के संरक्षण, नई वन अवधारणाओं और हरित उत्तर प्रदेश के विजन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 12 जुलाई को एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य बेहद बड़ा है, इसकी तैयारी किस स्तर तक पहुंच चुकी है और सरकार इसे सफल बनाने के लिए इस बार क्या विशेष व्यवस्था कर रही है?
3: ये बात आप सही कह रहे हैं, 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में, तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
2: बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट कहा है, उन्होंने बैठक भी की थी समीक्षा इस महाअभियान को लेकर, अभियान की सफलता केवल पौधे लगाने से नहीं बल्कि उन्हें वृक्ष बनाने से तय होगी, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। पौधों के संरक्षण और सर्वाइवल रेट इसको सुनिश्चित करने के लिए आपके विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई?
3: देखिए, आपने जो कहा कि 35 करोड़ पेड़ लगाने के साथ साथ उनको वृक्ष बनाना, बहुत हमारे मुख्यमंत्री जी साफ कहते हैं कि पौधों के रखरखाव, पौधा ऐसी जगह लगाओ जहाँ सुरक्षित जगह हो, पौधा ऐसी जगह लगाओ जहाँ पानी मिल सके, पौधा ऐसी जगह लगाओ जहाँ बीज में नराई भी हो सके। तो मैं ये कहूँगा, हम लोग जो एक पेड़ माँ के नाम, हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान, उस पर तमाम जनता उत्तर प्रदेश की, नौजवान, छात्र, महिलाएं, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, विद्यार्थी और साथ ही साथ हमारा व्यापारी वर्ग और इंडस्ट्रियलिस्ट, किसान, मजदूर, दुकानदार, सब लग, डॉक्टर, सब लग गए हैं कि पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे भी, और ये पेड़ जो हम लगा रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आगे वाले जनरेशन के लिए लगा रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कम करने का एकमात्र तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। और हम लोग तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर लगा रहे हैं, अपने माँ के नाम में लगा।
2: बिल्कुल सर, न केवल पौधे लगाए जा रहे हैं बल्कि उनके एक विशेष उद्देश्य भी स्थापित किए गए हैं। इस बार मिशन छाया, समरस वन, कपी वन, ऊर्जा वन और महर्षि चरक औषधि वन जैसी नई पहले भी शुरू की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है और आम लोगों को इनसे क्या लाभ मिलेगा?
3: देखिए, ऐसा है, ये जो हमारे हैं

0: ये हम लोगों के फायदे के लिए कर, आम जनता के बेहतरी। अब मिशन छाया है, अगर आप किसी रोड पर जा रहे हैं और अगर पेड़ नहीं है, कार आप भी जा रही है, एसी चल रहा है, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, आप एसी में है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पेड़ का साया है, दोनों तरफ से पेड़ जुड़े हुए हैं, तो आपकी एसी कार के भी अंदर आपको अलग ही अनुभव होगा। हम हर सड़क के किनारे पेड़ लगा रहे हैं, और वो ख़ास तौर पर पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, आम, ये सब छायादार पेड़ लगा रहे हैं ताकि वहाँ छाया रहे और निकलने वालों को आराम रहे।
1: बिल्कुल
0: सर। आपने दूसरा पूछा समरस बन, समरस बन इसलिए समरसता, विभिन्न धर्मों में समरसता रहे, एक दूसरे के प्रति सम्मान रहे, आप अपने सहयोग बढ़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके पेड़ लगाएं, उस तरह का हम समरसता बन बना रहे हैं। एक आपने पूछा हमसे कपी बन, कपी बन किया है, हम आमतौर पर देखते हैं शहरों के अंदर बंदर बहुत बड़ा, उसकी वजह यह है जंगल कम हो गए, तो जंगल में रहने वाले जीव बंदर शहरों की तरफ आ गए। अब हम शहर के पास में थोड़ी सी दूरी पे कपी वन बना रहे हैं जिसमें फलों के पेड़ होंगे, जिसमें सायेदार पेड़ भी होंगे और फलों के पेड़ होंगे, गूलर है, पीपल है, अमरूद है, आम है, और पेड़ होंगे इसी तरह की, ताकि बंदरों को खाने के लिए फल मिल जाए,
1: उनको और रहने का
0: प्राकृतिक आवास मिल जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, प्राकृतिक आवास भी मिले और खाना भी मिले, फल इस तरह के लगेंगे उन्हें बारह महीने मिलते रहे फल, एक न एक फल उन्हें बराबर मिलता रहे, ताकि बंदर वहीं खाएगा और रहेगा आराम। ऊर्जा बन, आजकल आप महसूस कर रहे हैं जब से अमेरिका की और ईरान की लड़ाई शुरू हुई है, तब से ऊर्जा का संकट बढ़ गया। ये तो कहिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने इतनी होशियारी से इस मामले में देश के हर तरह का भला किया है, और यहाँ पे उतना ऊर्जा संकट नहीं है जितना और देशों में है, लेकिन फिर भी हम कुछ इस तरह की लकड़ी का भी प्रोडक्शन और बढ़ा रहे हैं, ताकि अगर लकड़ी ताकि मिल सके लोगों को और ऊर्जा का भी स्रोत रहे। एक आपने पूछा महर्षि चरक औषधि, पेड़ों से हमें बहुत सी औषधि मिलती है, महर्षि चरक जो आयुर्वेद के जन्मदाता है, हमने बहुत से पेड़ ऐसे लगा रहे हैं जैसे अर्जुन और हर, बहेड़ा, आंवला, बेल, इस तरह के कुछ और पेड़ हैं जिनकी अपनी मेडिसिनल यूटिलिटी है, और हमारा समाज उन पेड़ों को दवा के रूप में इस्तेमाल करता है और उससे उसे फ़ायदा होता है। हम ऐसे पेड़ों को लगाएंगे, उसका नाम महर्षि चरक के नाम पे महर्षि चरक औषधि बन रखेंगे।
1: बिल्कुल सर, हमने देखा है कि 2017 के बाद से ही सरकार ग्रीन कवरेज प्रदेश में बढ़ाना चाहती है। सरकार ने 2030 तक हरित आवरण 15% और 2047 तक 20% करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य तय समय में हासिल करने के लिए विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या रणनीति तय की गई?
0: देखिए, हमने जो तय किया है, हमें उम्मीद है हम जरूर पूरा करें। 2030 तक जो 15% का है और 2047 से 20 का है, इसी तरह से जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यकाल में पेड़, अगली बार फिर योगी जी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और हम फिर ही पेड़ इसी तरह से लगाते रहेंगे, और हम हर हालत में 15% और 20% का लक्ष्य पूरा करेंगे।
1: सर, आखिरी सवाल, आपने चर्चा के दौरान कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी इस अभियान से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जन भागीदारी महत्वपूर्ण होती है किसी भी अभियान को सफल बनाने में। तो सर, जब आप कह रहे हैं कि विभिन्न विभागों के साथ सरकार विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ेगी, तो सर इनकी जन भागीदारी ज्यादा हो, इसको लेकर कोई ड्राइव चलाई जा रही है, कोई प्रयास किए जा रहे हैं?
0: जी, इसके लिए हर स्तर पर किया जा रहा है। सबसे पहली चीज तो ये, हर एक को बताया जा रहा है एक पेड़ माँ के नाम, तुम जो पेड़ लगा रहे हो वो अपनी माँ के नाम, और माँ से बड़ी चीज दुनिया में नहीं होती, और ये जो पेड़ लगा रहे हैं इससे आपको फायदा है, आपके परिवार को फायदा है, और आसपास रहने वालों को फायदा है, और ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आने वाली जनरेशंस को भी फायदा है, तो पेड़ लगाना बहुत फायदे की चीज है।
1: बिल्कुल सर, आपने वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 की तैयारियों, सरकार की रणनीति और पर्यावरण संरक्षण के विजन पर विस्तार से जानकारी दी। सर, उम्मीद है कि यह अभियान उत्तर प्रदेश को हरित और पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आपने सुना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 12 जुलाई को पौधरोपण महाअभियान और हरित क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास पर प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: 5:13 हो गए हैं। आपका स्वागत है, सलाम है आपको, प्यार भरा आपकी दोस्त चंद्रकला की तरफ से। आपका अपना प्रोग्राम FM टॉप 10 चल रहा है अब, और प्रोग्राम FM टॉप 10 में आपके लिए हम लेकर के आते हैं इस दिन के लिए खास चुनकर वो 10 गाने जो कि हमारी आज की लिस्ट में मतलब आपके लिए खास चुने जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम FM टॉप 10 सॉन्ग्स का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन नंबर 10 से शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ऑल टाइम सुपर हिट डुएट सॉन्ग्स। वो खूबसूरत शानदार रूहानी आवाज़ें, दो आवाज़ें जिन्होंने खूबसूरत गानों को आपके सामने पेश किया है, और आपने जब भी उन गानों को सुना है तो आपका दिल बाग बाग हो ही गया है, इतने खूबसूरत रोमांटिक गाने हैं। तो बिल्कुल आज अब आपके रेडियो सेट पर हम आज के FM टॉप 10 का गाना नंबर 10 था आपके रेडियो सेट पर भेजते हैं। 10वां गाना हमारी लिस्ट का ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

और बिल्कुल हमारी भी यही दुआ है कि आपको खूबसूरत सा एहसास, ये प्यार ज़रूर हो, ज़रूर हो। और ये रहा अब आपके रेडियो सेट पर सॉन्ग नंबर 9th आज FM Top 10 का, याद है आपको हम सुन रहे हैं डुएट हिट्स।

5:24 हो गए हैं और इसी तरीके से तेरी ओर करते करते हम पहुंच चुके हैं आज के एफएम टॉप 10 सॉन्ग्स प्रोग्राम में सॉन्ग नंबर 8 पे। और बिना देरी के ये रहा सॉन्ग नंबर 8 आपके रेडियो सेट पर। और ये खूबसूरत सा जो गाना है मौसम को ध्यान में रखते हुए बजाया गया है। और लेकिन हमारे एफएम टॉप 10 में आज इसने 8वीं जगह बनाई अपनी। वैसे है तो ये सुपरहिट

सेवेंथ और हम सीधे पहुंच गए हैं अब सॉन्ग नंबर सिक्स के पास और ये आवाज़ ये गाना आपको बेशक जुमा देने वाला है।

बिल्कुल, और इसी खूबसूरत वाइब के साथ आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो लखनऊ, जो कि धड़कन है लखनऊ की। और बेशक आप सभी श्रोताओं का प्यार है हमारे लिए ढेर सारा बड़ा वाला ब्लेसिंग्स। और ये जो सॉन्ग आप सुन रहे थे अभी, आज FM टॉप 10 का 6th नंबर का सॉन्ग था और 5वें नंबर का गाना ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

5:42 हो गए हैं. भरोसा करना ना करना तो आपकी मर्जी है, लेकिन FM टॉप 10 का सॉन्ग नंबर 4 आपके रेडियो सेट पर, बस ये रहा.

0: से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: और साथ ही में

बिल्कुल, ये भी आपकी मर्जी है प्यार करना या ना करना, लेकिन फिलहाल हम पहुंच चुके हैं एफएम टॉप 10 प्रोग्राम के सॉन्ग नंबर 1 पे, यानी कि आज के प्रोग्राम का टॉप सॉन्ग कौन सा है, और वो सॉन्ग है ये आपके रेडियो सेट पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अब हमारे जाने का समय हो गया है। प्रोग्राम एफएम टॉप 10 सॉन्ग को आज के शो स्टॉपर सॉन्ग के साथ आपको छोड़ेंगे, लेकिन आपको कहेंगे अलविदा। अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें आपसे मुलाकात होगी आपके रेडियो सेट पर, सीधे प्रोग्राम शामी अवध में।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 525 करोड़ की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने यहां की जनता से कोई सरोकार नहीं रखा। इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। इंसेफेलाइटिस से पूरा जिला प्रभावित था, लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर की तस्वीर बदल गई। इस मौके पर सीएम ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के किनारे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधे लगाएंगे। कुल 27 विभागों के सामंजस्य से ये पौधरोपण कार्य किया जाएगा। महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार इस बार 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय करेगी। इसी क्रम में हमीरपुर में 73,24,000, वहीं कौशाम्बी में विभिन्न विभागों के सहयोग से 39,81,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर ने गैस्ट्रो वार्ड का शुभारंभ किया। इस नई चिकित्सा सुविधा के शुरू होने से गोरखपुर सहित समूचे पूर्वांचल बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। एम्स प्रशासन के अनुसार वार्ड को अधिक चिकित्सा उपकरणों और आवश्यक सुविधाओं से लैस किया गया है। आगामी श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। अमरोहा में भी पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा कि जनसंख्या में संतुलन समृद्ध समाज का आधार है। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पीलीभीत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। लखीमपुर खीरी के पलियां कला में शारदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। वहीं बिजनौर में भी भारी बारिश के कारण माल नदी उफान पर है। नदी का पानी हरिद्वार को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर आने के कारण गजरौला शिव के सामने वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के लिए भारी वर्षा की चेतावनी भी दी गई है। इस बुलेटिन

6:05 हो गए हैं और प्रोग्राम शाम अवध शुरू हो चुका है। नमस्कार, गुड इवनिंग और आपको मेरा प्यार भरा सलाम। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। ये खूबसूरत शाम जैसे ही आती है, दिन ढलते ही, अपने साथ लेकर के आती है बहुत सारे असाइनमेंट्स जो कि बचे हुए हैं दिन भर के, और उन असाइनमेंट्स के साथ ढेर सारे टास्क, और उसके साथ जुड़ा हुआ एक शब्द, कल। आज का जितना भी बच जाता है उसको हम शाम से लेकर के सुबह तक का टाइम स्किप करके कहते हैं कि ये जो बच गया है काम, ये सब हम कल करेंगे। और वो जो कल होता है ना, कहाँ से शुरू होता है? जब आपकी अगली सुबह आँख खुलती है तब से। लेकिन आपने नोटिस किया है कई बार, जैसे आज सुबह हमें काम मिला और बोला कि ये पूरा करना है, तो हम तब तो नहीं कहते कल, हम उस समय उस टास्क को कर लेते हैं, अच्छा अभी थोड़ी देर में करेंगे, दिन रहते कर लेते हैं। लेकिन शाम एक ऐसी खुशनुमा चीज़ है, खुशनुमा या कहें कि वक्त है, जब आप अपने आप से कहते हैं सब कुछ कल, आज के लिए बस इतना ही। दिन ढलते ही आप अपने बारे में थोड़ा सोचते हैं, और चाय पीने के लिए आप टाइट फिट बैठे कहीं बाहर किसी भी अनकंफर्टेबल जगह में नहीं, बल्कि चाय पीने के लिए आप आराम ढूंढते हैं। एक कप की चाय पीने में, एक प्याली चाय पीने में आप वक्त लगाते हैं, सुख से पीते हैं, मजा लेते हैं। यही है शाम, ढेर सारी बातें कहती है शाम। फिलहाल एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेजेंगे और उसके बाद आपसे बात करेंगे। आज शाम अवध में क्या क्या है आपके लिए खास?

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

6:13 हो गए हैं और प्रोग्राम शाम में अवध चल रहा है। आपकी अपनी शाम सुकून भरी, ठंडक भरी। और ये जो लखनऊ है ना, इसकी शामें कई बार, इस लखनऊ की शामें कई बार ऐसे भी गुलजार होती हैं। कैसे? जरूरी नहीं है कि हर कोई मूवी देखने जाता हो थिएटर में, लेकिन लाइव नाट्य मंचन देखने जरूर जाते हैं। अपने लखनऊ में कई सारे थिएटर हॉल्स में लाइव नाट्यों का मंचन किया जाता है और कलाकार, थिएटर के जो कलाकार हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और यकीन मानिए, ये किसी फिल्म से कम नहीं होता और अपनी आंखों के सामने आप उस अभिनय के रंग में उतरते हैं। ऐसी बातें मैं आपसे कर क्यों रही हूँ आज, क्योंकि आज शाम 7 बजे, अभी समय है 6:14 हुआ है, 7 बजे से गोमती नगर के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के प्रेक्षागृह में एक नाटक का मंचन होना है। जी हाँ, गोपाल सिन्हा जी के निर्देशन में जो है आशुतोष शुक्ल की चर्चित कहानियां ठेस अपरिचित पर आधारित और विशेष एक नाट्य रचना दृश्य का मंचन आज होगा 7 बजे। आप चाहें तो वहां तक जा सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। साथ ही ढेर सारी खबरें आप तक पहुंचानी हैं, लेकिन उन ढेर सारी खबरों को पहुंचाने के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, यानी कि डोज़।

और बिल्कुल ये जो अखियाँ हैं ना कुछ ढूंढती रहती हैं, और आते ही हमने आपसे कहा था कि शाम आते ही मन एकदम ठहर जाता है और आंखें कुछ खोजने सा लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया की तलाश में हैं अब हम। ये जो दिन था जब ढला तब से एक अलग दुनिया खोज रहे हैं हम। शाम के वक्त ऐसा लगता है। और फिर इसी शाम में सारी चीज़ें हम वाइंड अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं इन इस शाम के साथ आने के साथ साथ सारी चीज़ें, सारी परेशानियाँ, सारे काम, सारे टास्क, सारी चीज़ें, और तब यूज़ करते हैं शब्द, कहते हैं कल, कल सुबह फिर देखा जाएगा, बंद करो ये सब। लेकिन कई बार अक्सर पूरी रात भर रत जगा करके करने की कोशिश करते हैं, फिर भी ताकत तो दूसरे दिन ही आती है। दिल के कोने में दबी हुई कोई आवाज़ कहती कि भाई कल ही हो पाएगा। खैर, आज शाम 6:20 हुए हैं, मैं आपसे बात करूंगी वर्कआउट की, मैं आपसे बात करूंगी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की। तो आपने क्या सोचा है अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में? आप कितना काम करने वाले हैं, कब उठने वाले हैं, कब से वर्कआउट शुरू करने वाले हैं? क्योंकि आपका जो फिट शरीर है वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और आपको पता है इस समय प्रेजेंट टाइम में आपकी सबसे बड़ी पूंजी, आपको पता है, लग्जरी में गिनी जाती है अगर आप फिट हैं तो। फिट रहना इस समय एक लग्जरी है। अगर आपका शरीर फिट है, आपको कोई लाइफस्टाइल बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, आप ओबेसिटी के शिकार नहीं हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मैं इसलिए बोल रही हूँ, लोग तो सुबह वर्कआउट की बात करते हैं लेकिन मैं शाम में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये शाम है कई सारे टास्क को नोट करवाती है और कहती कल सुबह से करेंगे। कल सुबह का सपना लेकर अपनी आंखों में आज सोइएगा और कल से अपनी शरीर पर, अपनी हेल्थ पर काम कीजिएगा। और आपको पता है 1900 में आज ही एक ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी शार्लोट कपूर ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा। वो ओलंपिक की जो इंडिविजुअल स्पर्धा थी, स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। उन्होंने महिला टेनिस एकल फाइनल्स में फ्रांस की हेलेन वेपरो को हरवाया था। अब समझिए आज का दिन ये अपने आप में कितना बड़ा इतिहास लेके चल रहा है। आज ही दुनिया को पहली महिला ओलंपिक चैंपियन मिली थी। सोचिए कल से आप शुरू करें तो आप क्या नहीं कर सकते हैं वैसे।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। बार बार आपको याद दिलाते रहते हैं कि कहीं आप झीलों के शहर में तो नहीं खो जाते। हो सकता है कि कहीं खो जाए। खैर, 6:27 हुए हैं, आप तक कुछ खबरें पहुंचानी हैं। और पहली खबर ये है कि IIIT यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ ने MBA डिजिटल बिजनेस, जो आपके कोर्सेज हैं, उसमें एडमिशन के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है। आप अगर यहाँ अप्लाई आपने किया है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और साथ ही

आपको बता दें कि मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के हिसाब से जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको 30 जुलाई तक पहले सेमेस्टर की फीस, हॉस्टल और मेस का खर्चा छोड़कर यानी कि 77,000 रुपये जमा करना होगा। और इसके लिए दिए गए SBI लिंक पर जाकर सेमेस्टर फीस ऑप्शन यानी कि सेमेस्टर फीस पेमेंट का ऑप्शन चुनना होगा। फीस जमा होने के बाद उसकी रसीद वेबसाइट पर दिए गए ईमेल के माध्यम से भेजना होगा। अगर आपने IIIT में अप्लाई किया है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी के साथ ही नेशनल PG कॉलेज में भी कॉलेज के बैंक एंड फाइनेंस विभाग ने MWOC, BSI जो भी कोर्सेज हैं इसमें प्रवेश की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। और जो भी स्टूडेंट्स इसमें सिलेक्ट हुए हैं उनकी काउंसलिंग 11 जुलाई को सुबह 11 बजे से शुरू होगी, यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। और इस समय जो है फीस भी आपको जमा करनी होगी। बाकी सारी डिटेल्स आप इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, यानी कि 11 जुलाई से शुरू है, यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। इसके अलावा महिला स्नातकोत्तर विद्यालय राजाजीपुरम में भी UG और PG कोर्सेज में 30 जुलाई तक आपको एप्लीकेशन के माध्यम से आप अप्लाई करके सीधे एडमिशन ले सकते हैं। और महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम में आपको खबर दी गई है कि भाई कई सारी सीटें, यानी कि BA में 430, BSc बायो में 60, मैथ्स में 60, इस हिसाब से कई सारी सीटें खाली हैं। आप अगर चाहें तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है उन्हें तो कंग्रेचुलेट हमने कर ही दिया है।

6:00 ठीक 40 मिनट हुए हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शाम ए अवध, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। और आज एक दिन है खास, वो है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस है इसीलिए कुछ फैक्ट्स हमें अपने शहर के बारे में भी जानने और उनके उसके बारे में बात करना जरूरी है। अच्छा, अगर बात करें 2001 की जनगणना के हिसाब से तो लखनऊ की आबादी 2001 में 22 लाख थी और वाहनों की संख्या 5 लाख थी। समझ रहे हैं आप, 2001 में 22 लाख ही लोग थे और वाहनों की संख्या सिर्फ 5 लाख। आपको पता है ये आबादी इस समय बढ़कर कितनी हो गई है? 45 लाख। जी हाँ, लखनऊ में ये आबादी इस समय बढ़कर 45 लाख हो गई है और 2 RTO ऑफिसेस में वाहनों की संख्या आपको पता है 29 लाख दर्ज हो चुकी है। और साथ ही RTO कार्यालयों में हर महीने 15,000 नए वाहनों का पंजीकरण होते जा रहा है। आप समझ रहे हैं, लगभग 30 लाख वाहन हैं लखनऊ में। और उसके साथ ही अगर बात करें तो वार्ड इसमें 110 हैं, लेकिन हर वार्ड की आबादी 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और अगर जलकल विभाग की बात करें तो 141 से अधिक ओवरहेड टंकियां हैं, लेकिन सप्लाई कितने लोगों को करनी है लखनऊ में? 5,40,000 मकानों को शुद्ध पेयजल पहुंचाना है जलकल विभाग के पास, इतनी बड़ी चुनौती है। और 10,000 किलोमीटर पेयजल की लाइन और बिछानी है। और अगर बात करें तो 15 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, लेकिन 5 से 6 साल में इनकी संख्या 21 लाख से ज्यादा होने जा रही है। 2026 में यानी कि इस साल बिजली की खपत 22,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और 2032 तक खपत का अनुमान पीक सीजन में 3,000 मेगावाट तक जाना तय माना जा रहा है। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ दोस्तों, ये सब जानने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के बारे में विचार करने की ज़रूरत है। जैसे आप नहाने जाते हैं, पानी बहता चला जाता है और आप गुनगुनाते अपनी मस्त अदा के साथ नहाते जाते हैं। जिन साथियों के यहाँ सप्लाई का पानी आता है उनसे पूछिए जिस दिन सप्लाई नहीं होती है क्या बुरा हाल होता है, और उन साथियों से पूछिए जिनके यहाँ समरसेबल तो लगा हुआ है लेकिन उसमें से गंदा पानी आ रहा है। पानी बचाइए, और साथ में 30 लाख वाहन जब लखनऊ के शहर में सड़कों पर दौड़ रहे हैं तो आप यातायात नियमों का पालन करने के साथ साथ बेवजह वाहनों को सड़क पर मत उतारिए। एक एक किलोमीटर की दूरी के लिए, 500 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी के लिए वाहन सड़क पर मत उतारिए। ये आपसे हमारी बहुत ही हम्बल और प्यार से गुजारिश है। और इसके साथ आपने सुना ना, आबादी इतनी हो गई है, कितना कूड़ा होता है और हम प्रेशर डालते हैं उन सफाई कर्मियों के ऊपर, उन सारे कर्मचारियों के ऊपर जो उस ड्यूटी में लगे होते हैं, कितनी हैवी ड्यूटी है ये। तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें पानी भी बचाना है, हमें बिजली भी बचानी है और साथ में हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। वैसे ढेर सारी बातें इन्फॉर्मेशन हो गई है तो सोच रहे हैं कि खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेजा जाए। बहुत दिनों बाद सुन रहे होंगे आप ये। अब देखिए क्या वाइब।

6:49 हो गए हैं और ये रंग रारा रीरी करते हुए हम पहुंच गए हैं उस सफर पे जहां बहुत देर हो जाती नहीं नहीं नहीं नहीं ढेर सारा वक्त है हमारे पास, ढेर सारा तो नहीं कहेंगे वक्त है हमारे पास। तो एक खबर आपके लिए ये है कि भातखंडे विश्वविद्यालय ने जारी कर ली है मेरिट लिस्ट। जितने भी इस एकेडमिक ईयर यानी कि 2026-27 में अगर आपने एडमिशन ली है तो इसकी पहली मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। वैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा और नहीं भी दिया होगा, जिन भी कोर्सेज में आपने एडमिशन लिया है उस हिसाब से आप अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, आपका नाम आया कि नहीं आया। 2-3 जुलाई को आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था इसके एक हफ्ते बाद ही मेरिट लिस्ट आ गई है, जबकि जो अगले स्टेप की जो एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम आपका होना है वो 15 जुलाई तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा हाँ, डेट भी एक्सटेंड हो गई है। देखिए, एक एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद, मेरिट लिस्ट आने के बाद 15 जुलाई तक डेट भी एक्सटेंड हो गई है, और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है वो 15 जुलाई तक फीस सबमिट कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मेरिट लिस्ट में शामिल हैं उनका फीस जमा होने वाला है, और शुल्क जो है फीस जमा होने के बाद, अगर आपने फीस एक बार जमा कर दी तो वापस नहीं की जाएगी, ऐसा लिखा है यूनिवर्सिटी ने साफ साफ। बीपीए वोकल में 171, एमपीए में 29, बहुत सारे एडमिशन हुए हैं भाई, ढेर सारे। वैसे आपके पास अभी भी मौका है। ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी और मौसम का आनंद उठाते उठाते आपके खूबसूरत सा गाना सुनिए।

0: इंडिया द प्यार तुम्हारा।
1: बेशक इंडिया में प्यार दा फवारा है और ये खूबसूरत फवारा जो है फैलता रहे, बिखरते रहे और इस फवारे के छींटे आप तक भी आते रहें, यानी कि प्यार के फवारे के छींटे। खूबसूरत खुशनुमा शाम आपको मुबारक हो और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, गुनगुनाते रहें। ढेर सारी दुआएं आपको इसी दुआ के साथ और इसी मोहब्बत के साथ। प्रोग्राम शाम अवध को हमें वाइंड अप करना होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जाते जाते भी आपको एफएम रेनबो की शाम की झलक दिखला कर जाते हैं, मुझे अनुमति दीजिए। लेकिन अगला प्रोग्राम हेलो एफएम है, उसमें आपसे मुलाकात होगी। एफएम टॉप 10 समाचारों का जो बुलेटिन आएगा ना, उसके बाद आपसे मिलते हैं हेलो एफएम में। लेकिन जाते जाते जो झलक आपको दिखानी थी वो ये रही आपके रेडियो सेट पर।

नमस्कार, अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इन परियोजनाओं से होगा क्षेत्र का विकास, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। सीएम योगी ने कुशीनगर को भी दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, कुशीनगर बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में बन रहा सहभागी। अयोध्या में आज हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। चढ़ावा गबन मामले पर समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले पर आज भारतीय जनता पार्टी ने भी रखा अपना पक्ष। पार्टी जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी ने कहा, मंदिर राजनीति नहीं आस्था का है विषय। एसआईटी रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही। प्रदेश भर में कल मनाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से करेंगे अभियान की शुरुआत। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की तेज। वाराणसी और अमरोहा में पुलिस अधीक्षक ने यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण। विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुआ विविध कार्यक्रमों का आयोजन। पीलीभीत में निकाली गई जागरूकता रैली। सीएम योगी ने कहा, जनसंख्या में संतुलन ही है समृद्ध समाज का आधार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को लखनऊ एक दिवसीय दौरे पर होंगे। वे KGMU के दीक्षांत समारोह के साथ ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे के लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। रामपुर के पारंपरिक कारीगर विश्वकर्मा योजना से बनेंगे सशक्त। चयनित कारीगरों को मिलेगा 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक आधारित टूल किट। प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। बढ़ा नदियों का जलस्तर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। 7:20 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

0: ये एक फरमाइशी प्रोग्राम है जिसमें आप हमें कॉल मिलाते हैं सीधे हमारे स्टूडियो और ऑन एयर कॉल पर करते हैं अपने मनपसंद गानों की फरमाइश, और उसके लिए आपको हमारे स्टूडियो नंबर पर कॉल मिलाना होता है। दो नंबर है हमारे स्टूडियो के, 2238 845, 2238 852, दोनों नंबरों के पहले 0522 ये आपको कोड लगाना होता है। लेकिन हमारे स्टूडियो का जो एक नंबर है वही आज काम कर रहा है, 2238 845, 2238 845 ये नंबर आज हमारे स्टूडियो का काम कर रहा है। इस नंबर पर आप हमें कॉल करके ऑन एयर कॉल पर अपनी फरमाइश कर सकते हैं। लेकिन बिना देरी के हमें देखना होगा कि आज के प्रोग्राम के हमारे पहले कॉलर कौन बन गए हैं, ये तो देखना पड़ेगा। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
1: रिंकू बोल रहा हूँ मैडम, ग्राम नारायणपुर पोस्ट ऑफिस तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी।
0: जी रिंकू जी, कैसे हैं आप और कैसा है बाराबंकी का मौसम?
1: बादल छाए हैं, पानी बरसता है, बीच बीच
0: पानी बरसता है। आज भी बरसा है पानी?
1: जी हाँ आज भी बरसा है।
0: तो मतलब अभी तो ठंडक होगी बढ़िया?
1: मौसम तो बढ़िया है, 3 दिन से बारिश हो रही है ना देखो।
0: जी
1: 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी रुक रुक।
0: जी
1: कल तो कुछ ज्यादा ही बरसा है।
0: अच्छा कल बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कल ही बरसा मुझे लग रहा है।
1: कल ही बरसा
0: जी।
1: धान की रोपाई समय बढ़िया हो रही है इसी बारिश में?
0: हाँ वही हम आपसे पूछने वाले थे कि धान की रोपाई के लिए तो बारिश की बहुत जरूरत होती है।
1: ये बहुत जरूरत रहा
0: है। लेकिन जो बीच में पहले गेहूं के समय बारिश होती है वो खराब है?
1: वो तो खराब है, हो जाती है, फिर गेहूं की बर्बादी हो जाती
0: है। जी गेहूं की बर्बादी हो जाती है। इस समय धान के लिए पर्याप्त पानी मतलब हो पा रहा होगा?
1: हाँ इस समय पर्याप्त है।
0: रोपनी शुरू हो गई धान की रोपाई?
1: हमारे यहाँ तो हो गई है,
0: कई जगहों पर देर से भी होती है।
1: हाँ कहीं अब लग सब ही हो रही है, लेकिन कहीं कहीं पहले हो जाती है, पहले। हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में तो सब लगभग हो गई।
0: अच्छा
1: क्योंकि 25 जून से लगा लग गया था।
0: जी
1: तो सब लगभग लगा, काम खत्म कर दी।
0: हो गया काम खत्म?
1: सब काम खत्म।
0: चलिए बढ़िया। अब
1: इंजन के पानी से लगा हुआ है, पानी बरसा है।
0: जी
1: इंजन से सब ध्यान लाग दी।
0: जी तो पानी, अब जब ये धान आपने रोपाई कर ली तो इसके बाद इनमें घास छाना जाता है कि नहीं बीच में से? जो धान है अब ये सीधे आप मतलब रोपाई के बाद अब इसमें खेतों में क्या क्या काम होगा?
1: दवा पड़ेगी जैसे घास पास हो जाती है।
0: हाँ वही हम पूछ रहे थे कि घास जो है छानी जाएगी, राइट?
1: जी हाँ।
0: चलिए ठीक है,
1: दवाई भी पड़ती है, जब नहीं जाती तो कुछ छानी जाती है।
0: अच्छा
1: ये सब होता है। अरे मान चलो 1 महीने का काम है, मान चलो
0: 1 महीने का
1: जैसे दवा डाली थी नहीं जाते तो फिर छानी जाती है।
0: अच्छा
1: काम बड़ा हो जाता ना, जितना भी बारिश हुई उतना घास बढ़ाते हैं।
0: हाँ वही घास भी गेहूं के धान के साथ बराबर बढ़ती होगी।
1: हाँ
0: चलिए मवेशियों के लिए हो जाती होगी घास तो?
1: जी हाँ ये तो फायदेमंद तो है,
0: ये बस ये थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जो घास आप छान कर लाते होंगे वो दुधारू जितने मवेशी गाय भैंस जो भी होते होंगे उनके खाने के लिए तो बढ़िया हो जाता होगा।
1: दिक्कत होती है ना कि पानी में निकालना पड़ता है।
0: हाँ पानी में निकालना पड़ता है, ये
1: तो बड़ा है तो निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, और कोई बात नहीं है। हमारे
0: दूध देती है? अच्छा उनके लिए तो बढ़िया हो जाता होगा। आप बरसात के दिनों में काम करने के लिए जो बारिश वाले जूते आते हैं लंबे बूट ऊपर तक घुटने तक वाले, वो लिया करिए, ले लिया करिए, बहुत बढ़िया और सस्ते मिल जाते हैं बाजार में।
1: नहीं मैडम सब क्या जरूरत है, इतने लाती लोग सब यही सब ठीक रहा।
0: नहीं नहीं मतलब आपकी इच्छा हो तो, बाकी कई लोगों
1: लेकिन हमें चीज पसंद नहीं।
0: अच्छा अच्छा तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कई लोगों को पैरों में उंगलियों के बीच में वो होने लगता है ना कुछ पकने सा, हाँ तो उस चक्कर में हमने बोला कि
1: नहीं नहीं होती है, होती।
0: अच्छा
1: इससे कोई बचत है ना, सबके हो जाते।
0: अच्छा
1: क्योंकि पानी में जब रात दिन रही है तो ऐसा हो ना, तो
0: जी
1: रोपाई से जब पैर भीजे रहते हैं ना
0: जी
1: पैरों में भी हो जाती है।

0: हाँ, तो भी इंडिया में भी हो जाता है। तो
1: अच्छा ठीक है रिंकू
0: होता
1: जी, बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और हमारी दुआ है कि आपकी फसल अच्छी हो, आपकी मेहनत जो है सफल हो पूरी।
0: है। मैडम जी, आपको पहली बार बात हुई।
1: अच्छा, आप वैसे FM कब से सुनते हैं?
0: एफएम हम लगभग जब से चालू हुआ तब से सुने,
1: लगभग 20 सालों से, 25 सालों से।
0: हम 2000 से चलते हैं, 2000 में चल गए घर, हम
1: जी,
0: सुनते हैं तकरीबन
1: चलिए
0: 30-32 साल की उम्र है।
1: चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। आपकी पसंद का जो गाना आपने हमें बताया है, हम उसे ऑन एयर कर देते हैं। बाकी
0: और डेडिकेशन कर दो मैडम, ओंकार
1: बिल्कुल डेडिकेट कर दीजिए।
0: है, विनीत है सीतापुर से, सीमा
1: जी
0: रावत लखनऊ से है, कुमार
1: जी
0: यादव है लखनऊ से,
1: जी
0: और ममता है, रोहिणी मोहिनी रिंकी सिंह,
1: जी
0: आपको है और बाकी सभी सुनने वालों को।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, मतलब बात करके आपसे बड़ा अच्छा लगा, और दुआ है कि आपकी फसल बहुत अच्छी हो। इनकी पसंद का ये गाना आपकी रेडियो सेट पर, उसके बाद आपकी कॉल।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
2: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
3: चरक हॉस्पिटल दुबग्गा हरदोई रोड लखनऊ। कॉल 666-444-444।
4: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
5: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो FM और अगली जो कॉलर हैं हमारे साथ वो जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
6: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
5: जी। नाम बता दीजिए अपना।
6: साहिबा अंसारी, महेवा गंज, जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहे।
5: जी साहिबा जी, कैसी हैं आप और कैसा है आपके यहाँ का मौसम?
6: हम बहुत अच्छे हैं, हमारे वहाँ का मौसम भी।
5: कुछ गड़बड़ आ गई है, कुछ ग्लिच आ गई है और मुझे लगता है कि साहिबा जी का कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया। साहिबा जी, आपने जो गाने की फरमाइश की थी वो हम ऑन एयर कर रहे हैं, आपकी पसंद का ये गीत, और इसके बाद ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: अच्छी होती है प्रगति उतनी ही।
0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण अभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रगति होगी और इससे देश में समृद्धि आएगी।
1: स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, प्रगति उतनी ही तेज होगी। और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जिले के रामकोला विकास खंड के टिकुआटार में आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन को बेहतर बनाया है। श्री योगी ने कहा कि कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा।
1: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं अच्छे और नए एयरक्राफ्ट। कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा।
0: अयोध्या में आज श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट भवन, गेट नंबर 3, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम समेत अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उनकी टाइमलाइन भी तय की गई। वहीं कल होने वाली बैठक में 20 दीर्घाओं वाले राम कथा संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि

0: 20 जुलाई तक राम मंदिर के सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य है। उन्होंने मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है, एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। पौधरोपण महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार ने इस बार 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य तय किया है। इस अवसर पर जनसभा कर वो प्रदेशवासियों से पौधरोपण महायज्ञ में हिस्सेदारी करने का आह्वान करेंगे। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। पौधरोपण महायज्ञ के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पौधरोपण के इस लक्ष्य में गोरखपुर को 55,28,600 पौधरोपण की जिम्मेदारी मिली है। सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। पौधों के बेहतर विकास एवं उत्तर जीवित के लिए चिन्हित रोपण स्थलों पर एडवांस सॉइल वर्क के अंतर्गत गड्ढा खुदाई, टॉप सॉइल की व्यवस्था, पौधरोपण के स्थलों का विकास, पौध संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तथा अन्य तैयारियां पूरी है। कुल 27 विभागों के सामंजस्य से यह पौधरोपण किया जाएगा। इसमें गोरखपुर के वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पर्यावरण विभाग, पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे, गोरखपुर।
0: वहीं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस अभियान में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 20,00,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि श्री सिंह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से जनसंख्या संतुलन और परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। इसी क्रम में पीलीभीत जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीसी पंत ने एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी जनपद में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार ने आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर की जा रही तैयारियों को बारीकी से देखा और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 146 नवजोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार जनता के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। रामपुर जिले में आज एक ट्रक और कार की टक्कर में 4 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब टांडा क्षेत्र में एक कार मक्के से भरे ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार में 7 व्यक्ति सवार थे जिनमें से 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जौनपुर और सोनभद्र में 10 से 12 जुलाई 2026 तक आयोजित हो रही

पुलिस में उत्तर प्रदेश पुलिस वाराणसी जोनल बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में जौनपुर पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सात बजकर के 31 मिनट हुए हैं, आपका फिर से स्वागत है अपने प्रोग्राम हेलो FM में। जी हाँ, आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो और हम बिना देरी के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगले कॉलर हमारे साथ आज कौन जुड़ गए हैं। अब हेलो, जी नाम बता दीजिए।
4: जी अंसारी मेवागंज, जिला लखीमपुरखीरी से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
3: मैं बहुत अच्छी हूँ साजिया, आप कैसी हैं?
4: हम भी बहुत अच्छे हैं।
3: और लखीमपुर में क्या है मौसम, हाल चाल?
4: मौसम बादल छाए हुए हैं, बारिश हो नहीं रही है।
3: बारिश नहीं हो रही? आज बारिश नहीं हुई?
4: नहीं,
3: कल तो हुई होगी।
4: दीदी
3: जी,
4: ज्योति दीदी और प्रीति दीदी बहुत दिन से नहीं आ रही।
3: इसका तो मुझे पता नहीं है, मुझे पूछना पड़ेगा।
4: आपके उधर बारिश हो रही है?
3: हाँ, हमारे यहाँ बारिश हो रही है।
4: हमारे यहाँ बादल छाए हैं बहुत दिन से, बारिश हो ही नहीं रही।
3: अच्छा, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हो रही है, कल तो बहुत तेज बारिश हुई थी, आज भी सुबह बारिश हुई थी।
4: हमारा नहीं हो रही है।
3: चलिए हो जाएगी, बारिश का मौसम है, अब तो बारिश का ही सीजन चल गया है, तो बारिश तो होगी, आज नहीं कल आएगी। ठीक है साजिया, और बताइए, आपका गाना हमने निकाल दिया है, कोई बात आपको कहनी हो तो कहिए।
4: हम नाम भी लेना चाहते हैं और अपनी बात भी कहना चाहते हैं।
3: कहिए।
4: पहले हम अपनी बात कहना चाहते हैं, फिर नाम लेंगे।
3: जी कहिए।
4: ये कहना चाहते हैं कि हर पेड़ एक माँ के नाम, और अपने पेड़ जरूर लगाएं, और हम भी लगाते हैं, और 15 तारीख को हमारा बर्थडे है, हम भी लगाएंगे।
3: अरे वाह, 15 तारीख को आपका बर्थडे है। चलिए, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। लेकिन
4: नाम लेना चाहते हैं सबसे पहले आपको।
3: जी,
4: मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद फैज़ भाई, बाबू अंसारी भाई, सत्यम कुमार भाई, वकील अहमद भाई, अली जीशान भाई, वो हमें सुन रहे हैं सऊदी अरब से, और समा पर भी नती, गुलशा सदीकी अपा, साहिब आपकी, रिंकी दीदी, पिंकी दीदी, रोशनी दीदी, बबीता राज जी, और सभी सुनने वालों को जिनका फोन नहीं लगा।
3: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिया, अच्छा लगा आपसे बात करके।
4: कानपुर से।
3: जी ठीक है, आपकी पसंद का गाना हमने ऑन एयर भेजना।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: सात बजकर के 39 मिनट हो गए हैं और अगले कॉलर कौन जुड़े हमारे साथ ये हम देख लेते हैं। हेलो हेलो,
4: नमस्कार मैम, कैसी हैं आप?
3: नमस्कार जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? नाम बता दीजिए।
4: दिल से दिल की दूरी ना होती
3: जी,
4: दिल से दिल की दूरी ना होती, हमारे बीच का

0: कोई मजबूरी ना होती, आपसे मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी ना होती।
1: अरे वाह, लेकिन बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये आपने जो बोला है, ये दूरी तो है ही नहीं, हम लोग तो बात कर रहे हैं ऑन एयर कॉल पर।
0: जी जी शुक्रिया मैम।
1: बिल्कुल, ये तो कोई दूरी की बात है ही नहीं, आपसे तो बात हो रही है हमारी। आप कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैं सुल्तान नजर खाना सब्जी मंडी बरेली से आपका नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ।
1: जी, बरेली से। और कैसा है बरेली का मौसम? और क्या
0: बरेली का मौसम मैम इतना है कि बस थोड़ा सा पानी पड़ रहा है जरा सा, उसके बाद गर्मी बहुत हो जा रही है।
1: अच्छा, उमस है।
0: जी जी उमस बहुत है।
1: जी, तो पानी अभी तक अच्छी तरीके से दबा के पड़ा नहीं है।
0: जी जी जी, जब दबा के पड़ेगा तभी कुछ सी जमीन को ठंडक मिलेगी ना पानी से, तब तो थोड़ा सा हमको सुकून देगी। अभी जमीन सुकून नहीं दे रही है हमको अभी।
1: देगी देगी, जमीन सुकून देगी, थोड़े दिनों बाद देगी, बारिश का मौसम आ ही गया है अब।
0: जी
1: चलिए, आपकी पसंद का गाना तो हमने निकाला है, और कोई बात आप कहना चाहें?
0: जी मैम, हमें ऐसे मेम्बर से इतनी मोहब्बत है मैम कि हमें हमेशा ही सुनते रहते हैं। कुछ दिन पहले आपसे प्रोग्राम नहीं आ रहा था
1: जी,
0: तो अनवारुल दर से पूछा, उन्होंने लिंक दिया था उसके जरिए सुना, और लेकिन हमने पीछा नहीं छोड़ा अपने एफएम दिनों का।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी मोहब्बत के लिए हमारे एफएम के लिए।
0: क्योंकि आगे सारे आदेश जो है मैम
1: जी,
0: वो बिल्कुल घर की तरह ही बात करते हैं हम लोगों से, मेल पड़े जब या फिर वैसे समझाने का कोई प्रोग्राम आता है जैसे कि गुड मॉर्निंग लखनऊ में है
1: जी,
0: तो एक अच्छा लगता है अंदाज आपके यहाँ का बोलने का।
1: जी शुक्रिया
0: जी।
1: चलिए, आप कनेक्ट कर पाते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर। और ठीक है, आपकी पसंद का गाना हम सभी को सुनाएंगे, सभी श्रोता सुल्तान जी की पसंद का गाना सुनेंगे।
0: जी कुछ नाम अगर हो सके तो ले लूँ, वरना कोई दिक्कत नहीं, हम सुन लेंगे। आगे भी कोई दिक्कत चलेगा?
1: नहीं नहीं ले लीजिए, ले लीजिए, आप नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
0: हमारी आरजे अंजू मैम है, तरन्नुम मैम है, अनवारुल सर हैं, और हमारी चंद्रकला मैम है
1: जी,
0: और हमारे जो शाम को आती हैं प्रीति मैम
1: जी।
0: खास तौर से प्रीति मैम का तो जिक्र जरूर रहेगा क्यों उनका प्रोग्राम एकदम सुपर हिट रहता है।
1: अच्छा
0: जी,
1: चलिए, हम बिल्कुल सभी को आपकी बात पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी नमस्कार मैम।
1: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इनकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर हम भेजते हैं, आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं, और उसके बाद हो सकता है आपकी कॉल की बारी हो।

0: Nikola?
1: Nikola!
0: Wat hier kismet katale?
1: Tala!

0: 7:47 हो गए हैं और ये फरमाइशों का सिलसिला जारी है. हेलो एफएम प्रोग्राम में आपकी कॉल्स आती जा रही हैं और एक के बाद एक आपकी फरमाइशें हम सब सुनते जा रहे हैं. और बिना देरी के देखते हैं कि अगले जो श्रोता हैं जिनकी कॉल हमसे आज कनेक्ट हुई है वो कौन है. हेलो.
1: हेलो. हाँ बहन जी, मैं अशोक कुमार सैनी बोल रहा हूँ.
0: नमस्कार अशोक कुमार सैनी जी, कैसे हैं आप?
1: बहन जी बहुत बढ़िया हैं.
0: और आप, मैं तो आज आपको पहली बार अपने आप
1: पहली बार लगी मिलाते तो रोज हैं लेकिन लगता नहीं है फोन ना.
0: कब से सुनते हैं आप एफएम?
1: ये बहन जी हम जब तो 10 साल के वो संभाले हैं तब से. अब रेडियो पहले भारतीय चैनल चलता ना मीडियम शॉर्ट बस.
0: जी जी
1: वो सुनते थे
0: जी.
1: रेडियो तो मैं बहुत बड़ा शौकीन बहन जी.
0: जी अरे वाह अशोक जी, आपने बहुत शुक्रिया. आपको इतने लंबे समय से आप हमसे जुड़े हैं और सभी श्रोता देश विदेश से जहां से भी हमें सुन रहे हैं सब आपकी बात सुन रहे हैं और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. इतने लंबे समय से आप सुनते हैं, इतने अच्छे हमारे आप श्रोता हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया. और दूसरी बात, आपकी कॉल आज लगी है उसके लिए आपको बधाई.
1: जी तू कहाँ गई थी, तेरा मर जाए सांवरिया.
0: जी.
1: और कुछ लोग डेडिकेट करना चाह रहे हैं बहन जी.
0: जी बिल्कुल कीजिए अशोक जी.
1: इस समय हम जहाँ बैठे हैं भाई साहब की हमारी दुकान है राधेश्याम शर्मा
0: जी,
1: जो टीवी की दुकान है, टीवी रेडियो वगैरह रिपेयरिंग करते हैं.
0: जी.
1: और हमारे ओम प्रकाश भाई साहब बैठे हैं सामने.
0: जी.
1: और जितने लोग सुन रहे सबको डेडिकेट करना है गाना. और आपको बहन जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका. और हम सभी को, आपके जितने साथी हैं सभी को शुभकामनाएं देते हैं. और आपने जो डेडिकेट किया है वो भी सबका नाम आपने ले लिया है. और मिलाते रहिएगा कॉल, आपकी कॉल दोबारा लगेगी.
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल.
0: चलिए और कोई बात तो आपको नहीं कहनी?
1: बस भाई जी बस कुछ नहीं, बस गाना सुनाइए बहन जी आप.
0: चलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अशोक जी, आपकी पसंद का गाना आपके रेडियो सेट पर हम बिना देरी के पहुंचाते हैं. अशोक जी की पसंद का ये गाना सुनते हैं और उसके बाद आपकी कॉल की होगी बारी.

7:54 हो गए हैं और अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेलो एफएम फरमाइशी कार्यक्रम, और इसी गीत के साथ जो अगला आपके रेडियो सेट पर हम भेज रहे हैं, इसी गीत के साथ हमें भी दीजिए अनुमति, हम आपसे विदा लेते हैं प्रोग्राम हेलो एफएम से। फिर कभी किसी और दिन आपसे होगी मुलाकात। गुड नाइट, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास होगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रगति होगी और इससे देश में समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जिले के रामकोला विकास खंड के टिकुआटार में भी आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों के 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई। अयोध्या में आज श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट भवन, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम समेत अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उनकी टाइमलाइन तय की गई। वहीं कल होने वाली बैठक में 20 दीर्घाओं वाले रामकथा संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से प्रदेश व्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। पौधरोपण महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार ने इस बार 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर जनसभा कर सीएम प्रदेशवासियों से पौधरोपण महायज्ञ में शामिल होने का आह्वान करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि श्री सिंह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपद में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लखीमपुर खीरी के पलिया कला में शारदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

हवाएं, बादल, आसमान और चांद, इनकी ख्वाहिश हमेशा इंसान किया करता है, लेकिन ये सब इनकी पहुंच से, इनके कैद से दूर हुआ करती हैं। और इंसान के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, शिकायत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आप सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी FM 10 लखनऊ पर।

ये हसरतें जिनकी मुकम्मल मंजिल बड़ी धुंधली और बेसुवाद हुआ करती है, रास्तों की बेपनाह दरकार और वो रास्ते जिनके इंतजार के खार और हिजर के कंकड़ हमारे पैरों में बार बार चुभा करते हैं। मगर हम इस आस में कि सरगोशियों का संगीत हयात को यूं गुलजार करेगा शायद कि हयात जन्नत से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसी वजह से तो फरियाद किया करते, इसी वजह से तो उसकी नजर को याद किया करते, इसी वजह से ही तो जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल उसकी मोहब्बत को माना करते हैं।

ये दिलकशी ये शौकियाँ ये जुल्फों की बाजीगरी और लबों की अयारी सब महबूब की अदाएं हैं जिनकी गिरफ्त में दिल इस कदर महसूफ रहता है किसी बेड़ियाँ भी फूलों से और हाथों की हथकड़ियाँ भी जुल्फों के घेरों से बनाई गई हों और माशाल्लाह होश अगर होश की बात की जाए तो इसका कोई पता नहीं होता ये हर वक्त बेखबर बेहिसाब रहता है।

न जाने कैसा राबता है उनके नाम और दिल की धड़कनों का। हर बार जब कहीं किसी तरफ से वो नाम सुनाई पड़ता है तो दिल एक धक के साथ यूं सरपट भागता है और ऐसे बैठता चला जाता है जैसे जैसे समंदर के बीच कहीं फंस गया हो और इसे तैरना ना आता हो। सच में ऐसा लगता है जैसे जैसे दिल से इंतकाम ले रहे हैं।

ये दिलों की गहरी बातें अक्सर दिल के उजाले में, कहीं दिल की गहराई में, या फिर कहें दोस्तों यारों और कहकहों के बीच, सूरज की तेज रोशनी में कहीं मध्यम हुई रहती हैं। मगर न जाने क्यों शाम के गहराते ही एक टीस की माफिक शुरू होके भीगी काली रात में गहरी हूक बन जाती है, और फिर जबान और दिल के बीच पूरी रात एक गुफ्तगू चला करती है। बरसात की हर बूंद, ठंडी हवा के हर झोंके, खुलती बंद होती खिड़कियों के बीच कहीं कहीं जिंदगी ठहर सी जाती है। और धड़कने बेसाख्ता तेज हो जाया करती हैं। आप सुन रहे हैं सुनील को, प्रोग्राम आबशार में 7:15 AM लखनऊ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा।

0: वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा पर्यटन खेल आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं दोस्ती भी है वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है हवाएं हमारे साथ हैं समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ हैं इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे
1: मंजुमीना आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड न्यूजीलैंड
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों राजनीतिक दलों संवैधानिक विशेषज्ञों नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे नाव में 32 भारतीय पर्यटकों 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है एक रिपोर्ट
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची

0: मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ 8436789185523714 और 8433452014 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzone.com

newsonair.gov.in और हमारे News on AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। यह कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, शुरू हो चुका है प्रोग्राम रेनबो कैफे, और रेनबो कैफे में तमाम सारे गाने आपकी पसंद के बनने वाले हैं, और आपकी पसंद के साथ साथ अगर वो हमारी पसंद से मैच खा जाता है तो FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर भेजा गया आपका वो गाना हम सब मिलके सुनेंगे। फिलहाल तो जो है उसको इंजॉय करिए, और जो नहीं है उसको दफा कीजिए। दोस्त सुनील के साथ रेनबो कैफे का मजा लीजिए।

Chiama te, Deo. ताली भैया कह रहे हैं कि बारिश अब रुकना चाहिए, काले बादलों से रोशनी अब निकालना चाहिए, कविता लिखना सिर्फ मकसद नहीं है मेरा, कम से कम कपड़े वगैरह तो सूखना ही चाहिए।

कोई फुलौरी बिना चटनी बनाना चाह रहा है, और कोई दरवाजा खुला छोड़ के चला आया है, और बारिश का पानी अंदर घुस रहा है। जय हो। गुलफ्सा कृष्णकांत, ब्रजेश भाई, मोहम्मद साबिर, इंद्रपाल मिश्रा, बाबू अंसारी, रामराज, तालिब, विकास भाई, अरसद, नूर सुल्तान, राजा इंद्रपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त, आपका मेल मिल चुका है और आपके गाने भी मिल चुका है FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। ये है हमारा मेल आईडी जिस पे आप कर सकते हैं मेल और सुन सकते हैं अपनी पसंद का और मेरी भी पसंद का वही कॉमन गाना जो मेरी प्लेलिस्ट में भी है और तुम्हारे मन में भी है, समझे का? हमारा जो मेल आईडी है वो फटाफट नोट कर लीजिए और उसी नोट पे फटाफट कंपोज मेल में जाके हमें मेल टाइप कर दीजिए fmakashwani@gmail.com। समझे होगा?

तो भैया श्रेया कुमारी हैं जो कि रांची झारखंड से हैं और आलमबाग में रहती हैं और कह रही हैं कि अब बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है इस प्रोग्राम का और मैं झारखंड से हूं लेकिन नागपुरी गीत सुनना चाहती हूं और जो मेरी रिक्वेस्ट है वो है चांदनी रे तोहे मोर दिल में बस कहले। ओके हाँ जी श्रेया जी, आपकी जो पसंद है वो यहाँ पूरी हो रही है। विजयपाल जी, विनीत जी, वकील जी और साथ में भैया मोनू भाई, नमस्कार। अरे भैया, अरे बहुत तगड़ा, मतलब मैसेज बहुत तगड़ा किया, अच्छा रहा। एक लोग कह रहे हैं ताली भाई कह रहे हैं कि हम आज के प्रोग्राम रिकॉर्ड कर, अरे अरे भाई मतलब पूछ लेना रिकॉर्ड करने से पहले, समझो। अभिनीत भाई कह रहे हैं कि हम रामगढ़ चीनी मूल जिला मिल जिला सीतापुर रेनबो कैफे प्रोग्राम करने वाले सर जी को, सुनील भाई को नमस्कार। अरे थैंक यू सो मच विनीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब सुनते रहिए, मस्त होता हूँ हमें, हम सताए हुए हैं, अकेले रहने गम उठाए हुए हैं, खिलौना समझ कर खेलो हमसे, हम भी खुदा मनाए हुए हैं। सुनील भाई क्या हाल है, कैसे हो? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। हमारी तरफ बारिश हो रही है भाई, बारिश तो मतलब मानसून आए तो बारिश होगी नहीं, बस एंजॉय करो बारिश, समझो कि नहीं। ले ये वाला गाना सुनो फटाफट। अच्छा एक बात है, मेल थोड़ा कम आ रहा है तुम्हारा, मेल कम आ रहा है तो मतलब मेल करो ना भैया, एफ एम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे मेल करो रेनबो कैफे में, तो तुम्हारा गाना जो है बजाई, चाहे हरवाणी में हो, चाहे ना नागौरी हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे भोजपुरी, या तो जामला बजता ही है, समझो का।

0: लो भैया, तो अभी आ गया है भोजपुरी वाला पहला रैप, मतलब पहला रैप तो नहीं है लेकिन रैप तगड़ा है, समझोगा। हेलो प्रिया, समझोगा। अब तो अगर आपको भी हमको चाहे रैप सुने हो, चाहे भोजपुरी वाला रैप सुने हो, चाहे हिंदी वाला रैप सुने हो, चाहे हनी सिंह, तो मतलब चाहे जाऊँगा, मतलब आप कर जो पसंद है ना, सर आँखों पर, समझे। अच्छा आस्था, बस ठीक है, हमका मेल आ गया, कह रहे हैं कैसे हो आज, जोरदार गाने सुन रहे, मौसम भी बारिश का, जानकीपुरम से प्रोग्राम सुन रहे, मेरा गाना है। अच्छा ठीक है, आपका गाना है तो बहुत बढ़िया है। सुधांशु भाई, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बक्सी का तालाब। अरे वाह, एमके राज लखीमपुर से हमें मेल कर रहे हैं भाई। अच्छा ठीक है, बाबू अंसारी भाई कह रहे हैं देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से मैं मेल कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच डियर। अच्छा कमल पांडे जी, अरे बहुत पुराने हमारे श्रोता हैं भाई, हमारे मित्र हैं, मोहलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला उत्तर प्रदेश सीतापुर। सुधांशु भाई थैंक यू सो मच, मेल आईडी हमारा जानते हो, फिर से बता दे रहे हैं फिर, आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। देखो भैया हेलो पूछ रहे हैं, देखो इनका मतलब है कि नहीं प्रिया, समझ में नहीं आ रहा है।
1: हेलो

0: दूंगी, हाथों को पूरा तुड़वा दूंगी, खोपड़ी हमारा तो गरम कर दिया है।
1: हेलो, सही बोलो ना, प्रिया है?

0: लगता है तूने मुझे छीन लिया है, प्रिया का मोबाइल तूने छीन लिया है। बतिया हमारा कहे मानती नहीं, बढ़िया से मुझे पहचानती नहीं।
1: बोलेगा जादे, मरेंगे तबरा की कनपटिया झनझना जाएगा।

0: है प्रिया?
1: ये बताओ उसके लिए तूने क्या किया है?
0: अरे जिसे तुम बतिया रही हो मोबाइलिया हमारी ने दिया है, बोलिए ना प्रिया है।
1: हाँ तो लो बतिया लो अपनी प्रिया से। हेलो
0: प्रिया, ये सब कहाँ हो रहा है? तुम हंस रही हो, हमारा दिल रो रहा है।

खुशामदीद, कैसे हैं आप? बहुत दिन से आपका इंतज़ार कर रहे थे, थोड़ा जल्दी आया करिए, पॉसिबल हो तो हमारा जो गाना है वो प्ले कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें मिल गया। अमन जी और शिवराज जी हमें मेल कर रहे हैं, कहें भाई बरौली मालिक ज़िला बाराबंकी से, गुड इवनिंग सर जी, हमारे गांव में आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, और प्रोग्राम मैं सुनत रहा हूँ। अरे तो सुनत रहो ना भाई, ये प्रोग्राम महेंद्र भाई नमस्कार, नागौर राजस्थान से महेंद्र भाई आए। कितना यार भैया ऐसा, महेंद्र भाई इतना बढ़िया बढ़िया पोस्टर मेल में भेजते हैं, आय हाय यार जी सुनील आपके खूबसूरत इतनी तारीफें भेजते हैं भाई, आप मन एकदम गदगद हो जात भैया। महेंद्र देवन गांव रूड जिला नागौर राजस्थान से आप हम मेल कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका जो मेल है वो मुझे मिल चुका है ना। विजयपाल जी आपका बहुत अच्छा मेल है, झक्कास बता रहे हैं आप, और फिर हमें जो आप मतलब फरमाइश भेज रहे हैं और राजा जी दिलवा वाली भेज रहे हैं, तो राजा जी दिलवा तो भैया पहले से लगा है ना, पहले से मतलब आपके लिए पेश करने के लिए हम बेकरार है, लेकिन मेल बंद ना करो भैया, समझो मतलब हमारे मेल का मतलब हमारे प्रोग्राम का फ्यूल है आपका मेल, समझो कि राजा जी की दिलवा की तरह।

तो भाई जो रिमिक्स गाने हैं उनकी आप फरमाइश कर रहे हैं और हमारी प्लेलिस्ट में आपके रिमिक्स गाने हैं, और आपने कहा है कि भाई हमारी जो दोस्ती है वो भी रिमिक्स हो रही है इसलिए क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो जलंधर में ये प्रोग्राम सुन रहा है। अरे वाह भाई, देश दुनिया में आप जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हमारा प्रोग्राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग साथ में मज़े करते हैं। मनोज गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई हम गोसाईगंज लखनऊ से मेल कर रहे हैं और सही मिले लड़कियां। अच्छा ओके, आप ये गाना सुनना चाहते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल हम प्ले करते हैं आपका गाना। और आप लेकिन गाने मेल करते रहिए हमारी मेल आईडी पर। मेल आईडी है FM आकाशवाणी लखनऊ@gmail.com। होली चौक, उत्तम नगर, दिल्ली से जयराम खोरवाल साहब, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल जी, आप सबका मेल हमें मिल चुका है। ये फिर से खेसारी लाल की आवाज़ में ये गाना।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मानसून में महानगर में जल भराव किसी भी दशा में न होने पाए। अभियान चलाकर नालियों, बड़े नालों को अच्छे से साफ करा जाए। सफाई कार्य में नियमित पर्यवेक्षण किया जाए। सीएम योगी आज गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस

में प्रशासन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, जीडीए, नगर निगम, बिजली, सेतु निगम आदि विभाग के अधिकारी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय से पूरा किया जाए। अमरोहा में आज आवास आयुक्त एवं जनपद के नोडल अधिकारी बलकार सिंह की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ की उपस्थिति में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत 12 जुलाई को होने वाले वृहद वृक्षारोपण की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए नोडल अधिकारी ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान में सभी विभागों, सामाजिक संस्थाओं, स्कूली बच्चों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों, व्यापारियों, प्रबुद्धजन एवं आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गड्ढा खुदान और पौध उठान की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी विभागों से कार्ययोजना की जानकारी प्राप्त करते हुए अच्छे ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। डीएम ने अवगत कराया कि जिलों में 36,51,900 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर जोरदार शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा कि सपा का इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है, जबकि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान श्री राम को मिथक

36,51,900 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर जोरदार शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा कि सपा का इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है, जबकि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान श्री राम को मिथक और काल्पनिक साबित करने का कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा जात के नाम पर समाज को बांटने की साजिश रचकर विकास प्रक्रिया को बाधित करते हैं, इससे आमजन को सतर्क रहना होगा। सीएम योगी आज गोरखपुर में भटहट बांसथान फोर लेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मैनपुरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विकास विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित भव्य समारोह में 203 नव दंपतियों का विवाह संपन्न कराया गया। इसमें 14 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी उनके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार कराया गया। कार्यक्रम में

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने नव दंपतियों को शुभकामना देते हुए कहा कि योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सम्मान और सहयोग का माध्यम बनी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक विवाह पर 1,00,000 रुपए की सहायता दी जा रही है, जिसमें 64,000 रुपए वधू के खाते में, 21,000 रुपए उपहार और 15,000 रुपए आयोजन और खान पान पर खर्च किए जाते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

रूहानी इश्क की मध्यम लौ में पकता, सर्दियों की सुबह किसी झील के शिकारे पे रखी कांगड़ी से निकलते कहवे की माफिक लज्जतदार, खामोश निगाहों के पीछे छुपी कोई चिंगारी जो सुर्ख रोहे की शक्ल में आंखों में पड़ती नजर आ जाए, सर्द रातों में पश्मीने की माफिक जवां दिलों में हौले से मुकम्मल होते हुए किसी सुनहरे ख्वाब की ताबीर बताता। रेडियो प्रोग्राम रजनीकंदा सुनिए हर रात 10 से 12 100.7 FM रेनबो पर।

ये भीगी रातों की टीस, जिनमें सर्द हवाएं, झिंगुरों की आवाज और पत्तों से गिरती बूंदें धरती के साथ मिलकर अपना वजूद खो दिया करती हैं। कोई तो पैगाम देती होंगी ये इंसानी रूहों को, जो अक्सर इन बारिशों में अपने हम सफर का, अपने हम दम का तसव्वुर दिल में लाती हैं और उस तसव्वुर के साथ पूरी की पूरी रात बिता दिया करते हैं।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकांता सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी FM रेनबो लखनऊ पर। ये वादे जो हमेशा निभाने के लिए किए जाते हैं, कई बार बिना निभाए ही टूट जाया करते हैं।

वहम गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

ये इंतज़ार जिसकी मियाद कभी एक लम्हा तो कभी तमाम उम्र और उससे भी ज़्यादा हुआ करती है, तब खुशनुमा एहसास बन के ज़िंदगी को महका दिया करती है, जबकि महबूब का दीदार, उसके छुअन और उसकी नज़र इनायत एक तोहफे की माफिक मिले और बदन को खुशबू से भर दे और मन को आनंद से।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भटहट बांस स्थान फोरलेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा की सरकारों ने भारत की आस्था को अपमानित किया है। उनकी सरकारों में दंगे होते थे, पर्व त्यौहार प्रतिबंधित किए जाते थे, कांवड़ यात्रा रोकी जाती थी। सीएम योगी ने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा की डबल इंजन सरकार विरासत और संरक्षण के विकास विजन के साथ आगे बढ़ रही है, तो इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पचा नहीं पा रही। उन्होंने लोगों को विकास के लिए एकजुट रहने की सीख देते हुए कहा कि यदि हम जातियों में बंटें तो इसकी कीमत वर्तमान और भावी पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। जनपद उन्नाव में कल 12 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत एक ही दिन में 57 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए नोडल अधिकारी एवं प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पंधारी यादव ने जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की उपस्थिति में समीक्षा बैठक की। वहीं जनपद में इस वृक्षारोपण का कुल लक्ष्य 66,51,300 पौधे निर्धारित किया गया है। अमरोहा के हसनपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर हसनपुर व गंगेश्वरी विकास खंड के सभी धर्मों के 180 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सभी का उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, नवविवाहित दंपतियों को शुभकामनाएं दी। मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र जोड़े को सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान की गई। जनपद जौनपुर में कल 12 जुलाई को आयोजित होने वाले एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारियां पूरी गति से चल रही हैं। इस महाअभियान की बैठक लोक निर्माण विभाग में महानिदेशक मत्स्य नोडल अधिकारी पौधारोपण धनलक्ष्मी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन ने बताया कि जनपद को कुल 60,73,400 पौधरोपण का लक्ष्य आवंटित किया गया है और इसे 100% पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक अभियान आरंभ कर दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: रूहानी इश्क की मध्यम लौ में पकता, सर्दियों की सुबह किसी झील के शिकारे पे रखी कांगड़ी से निकलते कहवे की माफिक लज्जतदार, खामोश निगाहों के पीछे छुपी कोई चिंगारी जो सुर्ख रोहे की शक्ल में आंखों में पड़ती नजर आ जाए, सर्द रातों में पश्मीने की माफिक जवां दिलों में हौले से मुकम्मल होते हुए किसी सुनहरे ख्वाब की ताबीर बताता। रेडियो प्रोग्राम रजनीकांत, सुनिए हर रात 10 से 12 100.7 FM रेनबो पर।
1: इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा, कैसा कहते

जिनकी लहरें जिस्म जहां से टकरा कर इस संगमरमर को पिघलाकर छिछली पत्थरों से टकराती नदी की धारा में तब्दील कर दिया करता है। तो जानिए कि वही हम सफर है और उसके लिए दिल में जो एक अलग सी बात पैदा हो रही है शायद वही मोहब्बत है। और दिल इसका क्या, ये कब किस पे आ जाए कोई भरोसा नहीं।

जब नैनों से निकले तीर का निशाना सीधे जिगर को चाक कर दे तो दिल के टुकड़े होना तो लाजमी है ना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकांत सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी FM रेनबो पर।

ये जो जिंदगी की चाय है ना, इसमें जरा मोहब्बत की मलाई मार के देखिए, इसका स्वाद ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप हैं सुनील के साथ प्रोग्राम रजनीकांधा में 7.7 आकाशवाणी FM रेनबो लखनऊ पर।

नमस्कार, रात के 12 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय में नवनिर्मित बालक और बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया। बालक छात्रावास का नामकरण मुख्यमंत्री के गुरुदेव राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में हुआ, बल्कि बालिका छात्रावास राप्ती नाम से है। मुख्यमंत्री ने छात्रावास के उद्घाटन पर दोनों छात्रावासों के आवंटी चिकित्सक विद्यार्थियों और उनके कमरों की चाबी सौंपी। उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए इसे शीघ्रता से पूर्ण करने का निर्देश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में न तो विकास कार्य हो रहे थे, न ही जनता को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा था। तब यहां इंसेफ्लाइटिस बीमारी थी, पलायन और पिछड़ापन था। कमजोर, गरीब, महिला, किसान, नौजवान, किसी तक शासन की योजना नहीं पहुंच रही थी। जबकि अब डबल इंजन सरकार में तीव्रता से विकास हो रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विरासत और विकास का बेहतर समन्वय हो रहा है। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने आज दिल्ली स्थित दिल्ली जल बोर्ड के स्लज मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों और स्लज प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया का विस्तार से अवलोकन किया। उनके साथ नगर निगम लखनऊ के कार्यकारिणी उपाध्यक्ष एवं पार्षद दल के उपनेता सुशील तिवारी पम्मी तथा पार्षदगण उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि इस प्लांट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले स्लज का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण कर ईंटों का निर्माण किया जाता है। इससे अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण होने के साथ उसका उपयोग निर्माण कार्य में किया जा रहा है। और अब मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:20 पर, सूर्यास्त शाम 7:03 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का यह लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।